मानस खाने करे निवार श्री वगैन तिन गल ताग तिन कर ब्राह्मण पूरा नाद ओ ना पे आवे ओई साध कुड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल कने आहार शर्म धर्म का डेरा दूर लाल कूड़ है परपूर मथा टिका तिर तोती का खाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पैर होवे परवाण मलेश तां लै पूजे प्राण भाखिया कुठा बकरा खाना चौकी उत्तर किसै न जाना देखे चौका कड्डी कार उपर आए बैठे कूड़िया मत पिटे वे मत पिटे हो ना साडा फिटे तन फिटे फेड़ करे मन झूठा चुली परे कहो नानक सच्ची आई है सच होवे ता सच पाई अपने चित्ते अंदर सब

0: मन का सुत कलोभ है देवा सुत कूड़े की सुत वेखना परत्रे परतन रूप कले सुत कल पहला एतबा दिखाए नानक सयाद ने बदे जमपुर जाहे महला पहला
1: सब सूतक परम है।

अंदरों झूठे पैर बाहर दुनिया अंदर फैले अठ सट तीर्थ जे नावे उतरे नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदड़ते भले संसार तिनने हो लगा रब से देखने विचार रंग से रंग रोवे चुप पी कर जाहे परवाह नाही किसे केरी बार सच्चे ना पर खर्च मंगा जब देता खाहे दीवाने कोकल में कहा बातों में दल लेखा पेड़ छुटे नाम का जो तेल पोड़िया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श
1: साफ करके उस अगला सोने दे लड़ लगिए। आप प्रोग्राम दा आगाज कर दिया सैदा बेगम दे गाए इस सुफियाना कलाम दे नाल, कदी आमिल बिरहू सताई नू।

चार स्थानीय संतरे आंदा जांदा तकदा रही दरबार दी आवाज तुसी ए सुफियाना कलाम सुन रहे सी। मैं ते रखिया गुनाह नु लुका के लोका पाने कुंड कड्या। अहुन ज्योति नूरा ते सुल्ताना नूरा नु सुनिए।

तो आकाशवाणीजी सिंधी सर्विस बुधरा 9870 किलोमीटर से तंखा सवाय तो आकाशवाणीजी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन ईयर मोबाइल ऐप एंड डिफरेंट डिजिटल बुझ सकना प्रोग्राम शुरू थी चुका है डिटेल्स कुछ नित रहा थोड़ी देर में तो हमेशा भगत कराम साहब के बुधा तंखा कोई तबसरो पेश कह दो चाली चालीन ते अज प्रोग्राम पेश कह दो हर घर तिरंगा ऐप कुछ हुब वतनी गीत प्रोग्राम के आखिर में खास खास खबरों नशर कई वेंद यहां तक प्रोग्राम की तफसील आकाशवाणी की सिंधी सर्विस बुध रहा है भगत कलाम साहब जैसे सदाबर आवाज में कलाम बुधूँ

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधण हींअर पेश आहे प्रोग्राम हर घर तिरंगा।

अडाणा जी पंहिंजी वचनबद्धता पिण आहे। इहा कार्रवाई ॿुधाए थी असांखे असांजे दिलनि में, अवाम जे दिलनि में देशभक्ति आहे ऐं असांखे क़ौमी भारतीय क़ौमी झंडे बाबति सुजागी पिण आहे। करोड़े भारतवासी पंहिंजे घर जे मथां 9 खां वठी करे 15 ऑगस्ट हर साल तिरंगे खे फहिराईंदा आहिनि ऐं हिन प्रचार खे, हिन कैंपेन खे तमामु घणो सुभाइतो बणाईंदा आहिनि। असांजो भारतीय झंडो को फ़क़त हिकु निशानी कोन आहे, पर असांजे फ़ख्र ऐं मुल्क ॾांहुं असांजी ईमानदारी जी हिकु निशानी आहे। इहा असांजे जज़्बातनि में, माण्हुनि जे दिलो दिमाग़ में हिकु ख़ासि जाइ वालारे थी। भारतीय झंडो जंहिंखे तिरंगे सां सुञातो वेंदो आहे, सो असांजे आज़ादी जे हलचल में, हिन खां अलावा असांजे तैलीमदान ऐं पॉलीग्लॉट पिंगली वेंकैया जंहिंजे जनम थियो 2 अगस्त 1876 ऐं इंतकाल थियो 14 जुलाई 1903, तंहिं हिन क़ौमी झंडे खे तयारु कयो ऐं महात्मा गांधी बापू जी वटि आंध्र प्रदेश जे विजयवाड़ा में 1 अप्रैल 1921 में पंहिंजी यात्रा दौरान महात्मा गांधी खे सौंपियो। भारत जे क़ौमी झंडे खे संदसि अॼोके मौजूदा रूप में अख़्तियार कयो वियो 22 जुलाई 1947 में भारत जे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जे हिकु गॾिजाणी में। भारत जे आज़ादी ते, यानी कि 15 अगस्त ते, ऐं भारत जे लोकशाही ॾींहुं जमहूरी ॾींहुं यानी कि 26 जनवरी ते क़ौमी झंडे खे 21 तोपनि जी क़ौमी सलामी सौंपी वेंदी आहे, जेका ॾिना आहिनि नेशनल फ्लैग गार्ड्स। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अवाम खे सॾु ॾिनो आहे त हू हर घर तिरंगा मूवमेंट में हिसो वठनि ऐं शहरनि खे ज़ोर शोर सां इन तहरीक में हिसो वठण लाइ चयो आहे, त जीअं विकसित भारत ॾांहुं पंहिंजो योगदान ॾेई सघनि, इन मुल्कम इरादे खे पधरो करे सघनि। श्री मोदी चयो त तिरंगो असांजे भारत जी फ़ख्र जी निशानी आहे, असांखे हमेशह हिमथाईंदो रहंदो आहे ऐं हर हिकु शहरी खे मुल्क लाइ पंहिंजो बहितरीन योगदान ॾियणो आहे। श्री मोदी ख़ुशी ज़ाहिर कंदे चयो त हिन साल हर घर तिरंगा कैंपेन जो जेको मौज़ो आहे सो आहे वंदे मातरम, जेको पंहिंजा 150 साल क़ौमी तराने तौर पूरा करे रहियो आहे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सोशल मीडिया एक्स ते लिखियो त असांजो तिरंगो असांजो फ़ख्र आहे ऐं असांखे हमेशह पंहिंजे देश लाइ कुझु बहितरीन करण लाइ हिमथाईंदो रहंदो आहे। अचो त असीं हर घर तिरंगा मूवमेंट में ज़ोर शोर सां हिसो वठूं ऐं पंहिंजे मुहकम इरादे खे, यकमुश्त मुहकम इरादे खे हिकु विकसित भारत लाइ अॾण लाइ पधरो कयूं। मूंखे ख़ुशी आहे त हिन साल जूं जेके कोशिशूं आहिनि से वंदे मातरम लाइ आहिनि ऐं सो उन वक़्तु जॾहिं असां वंदे मातरम क़ौमी गीत जो 150 जनम उत्सव मल्हाए रहिया आहियूं। 150 सालनि खां वंदे मातरम असांजे मुल्क जे आत्मा खे ज़िंदाणींदो रहियो आहे। हिन आज़ादी ॾींहं ते साॻियो ई उत्साह हर घड़ी हर घर में भारत जे हर हिकु कुंड कुर्छ में ॾिसण अचणु घुर्जे। इहो सभु थींदो हर घर तिरंगा प्रचार ज़रिए, तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैलीस, तिरंगा कंसर्ट्स ऐं वसी सवत ते अवाम पारां वंदे मातरम खे ॻाइण ज़रिए। हिन साल इतिहास सूर्य पथ तिरंगा ज़रिए पाण खे दोहराए रहियो आहे त आलम भर में भारत पंहिंजो पाण में तिरंगे जो हिकु अलहदा जलसो मल्हाए रहियो आहे। भारतीय क़ौमी झंडे खे फहिराइण जे लाइ के क़ाइदा कानून आहिनि जिन खे नेशनल ऑनर एक्ट 1971 तहत आंदो वियो आहे। इन जा कुझु के साइलेंट फीचर्स आहिनि जेके तव्हां सां वंडिया था वञनि। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 तहत, जंहिंमें पोइ दुरुस्ती आंदी वई 3 डिसंबर 2021 में, असांजो क़ौमी झंडो पॉलिस्टर या वरी मशीन ज़रिए तयारु थियल हुअणु घुर्जे। क़ौमी झंडो हथ सां पिणु ठही सघे थो, जेको कॉटन, पॉलिस्टर, वूल या सिल्क खादी जो पिणु थी सघे थो। कोई बि आवाम जो माण्हू या खानगी इदारो, कोई तइलीमी इदारो, सभिनी ॾींहनि ते सभिनी मौक़नि ते क़ौमी झंडे खे फहिराए थो सघे ऐं क़ौमी झंडे खे शान मान सां, इज़त सां फहिराइणो आहे। क़ौमी झंडे जे हिकु ॿिए कानून में दुरुस्ती आंदी जंहिं तहत असांखे कई ॻाल्हियूं ध्यानु रखणियूं आहिनि, जंहिंमें असां पंहिंजो क़ौमी झंडो ॾींहुं राति फहिराए सघूं था। इन जी जेका शेप हूंदी सा रेक्टेंगुलर हूंदी, मुस्तक़िल हूंदी। इन खां अलावा इन जी जेका साइज़ हूंदी लेंथ टू द हाइट सा 3x2 जी हुअणु खपे। असां जिते बि क़ौमी झंडो फहिरायूं सो हिकु मुख्य इलाइक़े में

मुख पे जिते मन जो ध्यान वने एंड के इज्जत से रखनो आए चंगल टोटल ए खराब हालतन में झंडे के कोन फहराणो आए झंडे से गड बो को भी झंडो कोन रखनो आए तो नंबी तकरीर बुधी रहा हर घर तिरंगा अयर पेशन कुछ हुबवतनी गीत है।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस गृह हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे. वरी अवां सां मुलाक़ात थींदी सुभाणे सुबुह जो, यानी कि भारतीय वक़्त मुताबिक़ 6:30 बजे. तेसीं ताईं ॾींदा इजाज़त सदाई गॾु.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लुथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखने को मिल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
1: पक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा की पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं जिसमें पेपर लीक से इनकार किया गया था।
2: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने सच्चाई आई। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रहे। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनके दोहरे मानदंड हैं।
0: झारखंड में कई दौर की वार्ता और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। विद्यार्थी वर्ष 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी सीआईडी जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनु सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि लगभग 100 लोगों की हत्या की गई है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना और वायुसेना की बमबारी और गोलीबारी में कई नागरिक हताहत हुए और परिसंपत्ति का नुकसान हुआ। संगठन ने घायल नागरिकों को सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। संगठन ने सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सा पर दबाव डालने का भी आरोप लगाया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी डिजीलॉकर रिजल्ट पोर्टल के माध्यम से results.digilocker.gov.in पर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The Parliament has also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. Both Lok Sabha and Rajya Sabha gave their approval for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that Home Minister Amit Shah wrote a letter to the Lok Sabha Speaker Om Birla stating once again that he is open to having a detailed discussion on the several incidents that took place during the protest on the neat paper leak issue. Talking to reporters in the Parliament complex, the minister said, the government itself is saying that it is ready for a discussion and will provide answers, but the opposition does not want to hear the answers and is shying away from the discussion. Indian Railways has approved 153 crore rupees construction project of a four-lane road over bridge at Gairathpur Ahmedabad section of Western Railway. Indian Railways has also approved the provision of coverage version 4.0 on 660 kilometers of the Izzatnagar division of Northeastern Railway at an estimated cost of 295 crore rupees. In Kerala, music programs by armed forces bands will be held at three venues across the state today as part of the Independence Day celebrations. More details on this from our correspondent.
3: Naval and Air Force band will perform in Thiruvananthapuram, Kannur and Kochi today with the aim of fostering national unity through the power of music. Patriotic and popular songs will be performed against the backdrop of highly precise movements, coordination and discipline. The Air Force band will perform at Nishagandhi in Thiruvananthapuram, the Kochi Southern Naval Command band at Lulumal in Ernakulam and the Elimala Naval Academy band at Thalechowa in Kannur. The programs will begin at 6 p.m. today. Smidhi M. Pallurithi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: The Calcutta High Court has cancelled all other backward classes or OBCA and OBCB certificates issued under the revised rules introduced by the previous Trinamool Congress government in West Bengal. The court held that certificates issued under the earlier system have lost their validity. Those holding such certificates will now be treated as belonging to the general category. As part of the Har Ghar Tiranga campaign in Jammu and Kashmir, the Riyasi District Administration organized a Tiranga boat rally in the River Chenab with the aim of fostering patriotic spirit among the people. The campaign is gaining momentum ahead of Independence Day with patriotic rallies, cultural programs and a range of other activities being organized across the country. Pakistan Air Force carried out airstrikes in Balochistan's Surab district yesterday, killing more than 30 civilians, including women and children, and injuring dozens others. In a statement, Republic of Balochistan group claimed that Pakistani Army and Air Force carried out extensive bombing and firing in civilian areas of the Gudar locality of Surab and surrounding areas, causing casualties and damage to civilian property. The organization alleged that injured civilians were taken into custody by security forces and local residents and authorities were prevented from carrying out relief and rescue operations. India Meteorological Department has predicted the formation of a low pressure area over the North Bay of Bengal, leading to extremely heavy rainfall expected in Orissa and Gangetic West Bengal today. Weather Department said that heavy rainfall conditions are also likely to prevail over Karnataka, East Uttar Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu, Karaikal, Puducherry and Andaman and Nicobar Islands. And that is the end of this news bulletin.
4: Our आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। प्रातः के 7:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीतिका। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अल्पिता कामरा के गाए हुए भजन। संगत कलाकार हैं हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी, सितार पर अकील अहमद, सरोद पर दानिश असलम, तबले पर पशुपति नाथ।

अभी आप सुन रहे थे संगीतिका। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे अल्पता कामरा के गाए हुए भजन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी रेडियो सखी निधि वर्मा और लेकर आई हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

जी हाँ श्रोताओं, सावन तो आ चुका है और अपने साथ कई बीमारियां भी लेकर आता है, क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त के महीने में सभी को पता है कि सुबह में उमस से पसीना, दोपहर में लू जैसा मौसम और शाम को झमाझम बारिश। जी हाँ, शरीर भी बोलता है कि डिसाइड कर लो कि कौन सा मौसम चलना है, और इसी डिसाइड ना कर पाने की वजह से बीमारियां भी पार्टी करने लगती हैं, है ना दोस्तों, जैसे कि फ्लू, वायरल, डेंगू, पेट खराब और कई सारी चीजें हैं जो हमारे शरीर को परेशानी देती हैं। तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि इस गोलमोल मौसम में खुद को फिट कैसे रखा जाए।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीता भरी गुड मॉर्निंग और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी निधि वर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि अगस्त का महीना चल रहा है और इस महीने में हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ही कमजोर होती है, इसीलिए हमें बहुत सारी बीमारियां हैं बहुत जल्दी पकड़ती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पानी और खाने की। तो जी हाँ, इस महीने में बाहर का जो कटा हुआ फल होता है, ठेले वाला जूस होता है, बर्फ का गन्ने का रस होता है, मन तो करता है बहुत पीने का, पर फिर भी इससे टाइफाइड और फूड पॉइजनिंग होने का खतरा बना रहता है। इसलिए घर का उबला ताजा फल और उबला हुआ पानी पिए। फ्रिज में रखा बासी खाना भी आप हो सके तो अवॉइड करें, क्योंकि इसी मौसम में जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो सबसे ज्यादा बढ़ते हैं। और साथ में नींबू पानी और काला नमक अपने साथ हमेशा रखें। अब बात करते हैं मच्छर और उसके वायरस की। मच्छर अगस्त में बारिश के बाद जो गड्ढों में पानी रुकता है वहीं पर डेंगू और मलेरिया का अड्डा बन जाता है। तो क्या करना है, फुल बाजू के कपड़े पहने, घर में नेट, हफ्ते में एक बार कूलर और गमले को जरूर साफ करें। अगर आपको बुखार आ रहा है और दो दिन से ज्यादा आपको बुखार बना हुआ है तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं। वायरल बुखार भी बहुत चल रहा है, अगर एसी से निकलकर आप गर्मी में वापस जाते हो फिर एसी में जाते हैं तो शरीर भी कंफ्यूज हो जाता है कि आपको गर्म की जरूरत है या ठंडे की।

श्रोताओं, अगर बारिश के मौसम में आपका बाहर निकलना होता है या आप ऑफिस जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने आप को गीला ना रखें। अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तो अपने साथ बैग में एक एक्स्ट्रा सूती कुर्ता या कपड़े रखें, मोजे रखें। अगर पैर गीले हो जाते हैं तो तुरंत पहुंचें, क्योंकि इसमें फंगल इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। कोशिश करें कि हफ्ते में दो बार नीम वाले पानी से जरूर नहाएं, जिससे कि जो भी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है वो बचा रहेगा। अब बात करते हैं हमारे मूड और नींद की। जैसा कि आपको पता है कि मौसम बदलता है तो हमारा मूड भी चेंज होता है। जब मौसम अच्छा होता है, सुहाना होता है, तो हमें नींद भी काफी आती है। तो जब मौसम बदलता है तो कभी धूप होती है, कभी बादल, तो दिल भी हमारा वैसे ही करता है। इसलिए नींद पूरी लें। नींद 7 घंटे तो बनती है। रात को हल्दी वाला दूध और सुबह अदरक तुलसी की चाय पिएं, जिससे कि आपका पेट हल्का रहेगा। और कोशिश करें कि तला भुना खाना अभी ना खाएं, बिल्कुल हल्का खाना खाएं, जिससे कि आपकी दिनचर्या अच्छी बनी रहे। और कोशिश करें कि हफ्ते में एक दिन घर का खाना जरूर खाएं, ऑफिस का छोड़कर और बाहर का छोड़कर, और एक दिन 20 मिनट वॉक जरूर करें।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको छोटे छोटे से टिप्स दे देते हैं जो कि आप नोट कर लें कि अगर आपका गला खराब है तो नमक के पानी का गरारा करें, सिर दर्द है तो पुदीने का तेल माथे पर लगाएं और थकान है तो 10 मिनट का मैप लें, पेट खराब है तो दही चावल और ORS का घोल लें और सबसे जरूरी बात है हंसते रहें तो बीमारियां भी दूर भागती हैं। तो दोस्तों अगर अगस्त का महीना है भरोसा करना नहीं है, छाता भी रखो, पानी की बोतल भी रखो और दवा भी और अपना ख्याल भी, और मुझे जरूर बताइएगा कि ये टिप्स आपके काम आई या नहीं। तो गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम से अब मैं आपकी रेडियो सखी निधि वर्मा आपसे इजाजत लेती हूँ, जल्दी मिलूंगी किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।

0: सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपली के आरोपी पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया है।

0: पहले गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी विधाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
1: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने के लोकसभा के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने यह कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि संगठित धोखाधड़ी रैकेट ने इस परीक्षा में अनियमितताएं की।
2: इस कथित पेपर लीक के कुछ ही घंटों के भीतर पंजाब पुलिस ने फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर के 25 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करके एक अंतर्राज्यीय चीटिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। पुलिस ने 7 मुख्य साजिशकर्ताओं और 28 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया था जो इस मामले में सीधे तौर पर शामिल थे। पंजाब सरकार ये कहती आ रही है कि यह घटना पारंपरिक पेपर लीक के बजाय हाईटेक चीटिंग से जुड़ी है। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित पार्टी के नेतृत्व पर कथित पेपर लीक को मामूली चीटिंग का मामला बताने की कोशिश करने के लिए निशाना साधा है। विपक्षी पार्टी के नेता जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान हुआ। समूह ने सुरक्षा बलों पर घायल नागरिकों को हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। कुछ घायलों की मौत उपचार न मिलने के कारण हुई। ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान लेने तथा बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पिछले एक दशक में कबायली इलाकों में पाकिस्तान सेना के हवाई हमले और बमबारी में अनेक नागरिक मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान का अपने ही लोगों पर सैन्य बल इस्तेमाल का इतिहास रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश ने पाकिस्तान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की खामोशी पर सवाल उठाया है।
3: पाकिस्तान सुराब में वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आ रहा है, बलोच के साथ, पठानों के साथ, सिंधियों और कश्मीरियों के साथ। कितनी आश्चर्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो कि हर दूसरे देश में बोलता रहता है, पाकिस्तान पर आके चुप हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अब बलोच, सिंधी, पठान, कश्मीरी सारे एथनिक ग्रुप्स अब मिलकर आवाज उठाने लगे हैं एक दूसरे के साथ ताल मिला के। ये निश्चित रूप में एक आशा का किरण है।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है।
4: कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव, क्षेत्र में हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शनों में लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी।

0: गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज ओडिशा में तेज वर्षा होने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज और तेज होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके असर से उत्तरी ओडिशा, खासकर बालेश्वर, मयूरभंज और केंद्र में लगातार भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में बालेश्वर में लगभग 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भद्रक, अनुगुल, जाजपुर और ढेंकानाल जिलों में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच कोरापुट जिले के नंदापुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले डारे गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे।
3: अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक है, बल्कि कलाकारों के निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो के सम्मान में 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फेलोशिप के लिए चुने गए लोग और पुरस्कार विजेता भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजू के साथ ऋषि जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: झारखंड में 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुंच गया है।
4: 14वीं JPSC परीक्षा में कथित विसंगतियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह लामबंद हैं। इसी कड़ी में रांची में JPSC JSSC रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर गहन चर्चा की गई और छात्रों ने मांगे पूरी होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प दोहराया। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। भारतीय पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर झारखंड सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया और पूरे विवाद की CBI जांच कराने की मांग दोहराई। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
1: केरलम में आज 3 स्थानों पर सशस्त्र बल के बैंड संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ये संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
5: नौसेना और वायुसेना आज तिरुवनंतपुरम, कल्लूर और कोच्चि में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बैंड का प्रदर्शन करेगी। इसमें तालमेल और अनुशासन के साथ देशभक्ति और लोकप्रिय गानों का प्रदर्शन होगा। वायुसेना का बैंड तिरुवनंतपुरम के निशा गांधी में, कोच्चि सदर्न नेवल कमांड बैंड एर्नाकुलम के लुलू मॉल में और AG माला नेवल अकेडमी बैंड कल्लूर के थाजे चोबा में प्रदर्शन करेगा। ये कार्यक्रम आज शाम 6 बजे शुरू होंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है।
6: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान ने इस वर्ष जून में भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेली थी। दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भी खेली थी। भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी की थी और तब से दोनों टीमें विभिन्न प्रारूपों में नियमित रूप से परस्पर मैच खेलती रही हैं। समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद फरहत। संसद के मानसून सत्र में छात्रों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के शब्द सभी अखबारों ने प्रकाशित किए हैं। अमर उजाला लिखता है, संसद में हर मुद्दे पर जवाब दूंगा, विपक्ष बहस शुरू करे। पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप साबित, संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। लोकसभा जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जलते नोट सुलगते सवाल, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। लोकसत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: They will neither be intimidated nor be defeated, despite the use of disproportionate and unjustifiable force by Pakistan.
1: The Board of Control for Cricket in India, BCCI, and the Afghanistan Cricket Board, ACB, have confirmed that Afghanistan will host India for a three-match T20 international series at the Arun Jaitley Cricket Stadium in Delhi from 13th to 17th of next month. The series is part of Afghanistan's Future Tours program and will be played in India, where Afghanistan has hosted its home fixtures in recent years. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarah Mushtaba.
2: Thank you, Sarabjit. Most newspapers today open with details of proceedings in Parliament. Parliament passes NCDC, Kerala bills, Lok Sabha clears mines, minerals bill, FCRA bill sent to JPC amid opposition din, is the lead in the Asian age. Shah ready to debate student protest, notes the Tribune. Speaking at the release of former President Ramnath Kovind's autobiography, PM hails Kovind's journey from humble beginnings to the presidency, says the statesman. The Indian Express on its editorial page under the caption, "The Next Step to the Moon," talks about India-US partnership in space cooperation. The two space agencies, ISRO and NASA, have never worked so closely together, with NASA asking ISRO to join its moon base program, an ambitious project to establish a permanent research station on the moon, where astronauts can live, work and carry out experiments for extended periods of time. And finally, catching the Gen Z mode, Delhi police goes kuchu kuchu to warn against deadly mancha, mentions the pioneer. And with that, it's back to you, Sarabjit.
1: Thank you, Sarah. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Foreign Contribution Regulation Amendment Bill referred to Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. Calcutta High Court cancels all OBC certificates issued under revised rules introduced by previous Trinamool Congress government in West Bengal. Punjab Pharmacy Officers recruitment stayed by High Court over allegations of organized cheating. IMD predicts heavy rainfall in Odisha and Gangetic West Bengal due to formation of low pressure area over North Bay of Bengal. More than 30 civilians, including women and children, killed in Pakistani airstrikes in Surab district of Balochistan. And in cricket, BCCI confirms India versus Afghanistan T20 international series in September. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी. पहले इस वक्त की खास खास खबरें. गैर मुल्की अतियाज को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल मजीद जांच के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के सुपुर्द किया गया है. मगरबी बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने साबिका तृणमूल कांग्रेस सरकार के शुरू करदा नए जाब्तों के तहत जारी किए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट मनसूख कर दिए हैं. हाईकोर्ट ने मुनज्जम धोखाधड़ी के इल्जामात के तनाजुर में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर्स की भर्ती पर रोक लगा दी है. भारतीय मौसमियात महकमे ने शिमाली खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने के तनाजुर में ओडिशा और गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल में शदीद बारिश की पेशगोई की है. बलूचिस्तान के सूरात जिले में पाकिस्तानी फजाई फौज के हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 30 से ज्यादा आम शहरी मारे गए हैं. और क्रिकेट में बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान टी20 सीरीज होने की तस्दीक की है. अब खबरें तफसील से. पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मजीद जांच के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी जेपीसी के सुपुर्द करने के लिए मंजूरी दे दी है. मजकूरा बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक 2010 के एक्ट में मजीद तरमीम करना है. इस बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात के इस्तेमाल को और ज्यादा शफाफ और जवाबदेह बनाना है. उमूर दाखिला के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने यह बिल वसीतर सलाहो मशविरे की खातिर जेपीसी के पास भेजने के लिए लोकसभा में एक तहरीक पेश की. जेपीसी दोनों ऐवानों के अरकान पर मुश्तमिल होगी. इस कमेटी में लोकसभा के 21 अरकान होंगे, जिन्हें स्पीकर मौसूफ नामजद पारित करेंगे। इसके अलावा राज्यसभा से 10 अरकान भी इसमें शामिल होंगे, जिन्हें चेयरपर्सन नामजद करेंगे। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट मौसमी सरमा के इजलास के पहले

0: हफ्ते के आखिरी दिन ऐवान में पेश कर देगी। इधर राज्यसभा ने भी गैर मुल्की एहतियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर गौर खौज की खातिर मुश्तरक पार्लियामानी कमेटी के लिए अपने 10 अरकान को नामजद करने की तहरीक मंजूर कर ली है। आज पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आखिरी दिन है। यह इजलास गुज़श्ता महीने की 20 तारीख को शुरू हुआ था। राज्यसभा में आज कानून और मादनियात के फरोख और उन्हें मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर गौर खौज और इसे मंजूर किया जाना है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज प्राइवेट मेंबर के कामकाज पर भी गौर खौज होना है। मगरबी बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने साबिका तृणमूल कांग्रेस सरकार के शुरू करदा ओबीसी ए और ओबीसी बी जुमरों के तहत जारी किए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट मनसूख कर दिए हैं। जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस अनुज सिंह पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच ने कहा कि रियासत में अब ओबीसी ए और ओबीसी बी का कोई जुमरा नहीं है। अदालत ने कहा कि साबिका निजाम के तहत जारी किए गए सर्टिफिकेट अब काबिल कबूल नहीं रह गए हैं। फैसले के मुताबिक इस तरह के सर्टिफिकेट रखने वाले अफराद को अब आम जुमरे का तसव्वुर किया जाएगा। ओबीसी तनाजा साल 2010 के बाद उस वक्त शुरू हुआ था जब उस वक्त की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने ओबीसी तबकों को दो जुमरों ओबीसी ए और ओबीसी बी में बांट दिया था। साल 2024 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 66 तबकों को ओबीसी फहरिस्त में शामिल किए जाने को रद्द कर दिया था और नए सिरे से सर्वे कराने का हुक्म दिया था। 2026 में बीजेपी सरकार के इख्तदार में आने के बाद उसने ओबीसी ए और ओबीसी बी जुमरों को खत्म कर दिया था और वाहिद ओबीसी जुमरा शुरू किया था। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साबिका इंतजामिया के चैलेंज को भी वापस ले लिया था। कानूनी चैलेंज वापस लिए जाने के तनाजुर में पहले जारी किए गए सर्टिफिकेट की कानूनी एतबार से कोई बुनियाद नहीं रह गई थी और इस पस मंजर में बुध के रोज हाईकोर्ट का यह हुक्म सामने आया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती में पेपर लीक के इल्जामात के मामले पर 454 फार्मेसी अफसरों के ओहदों के लिए तकर्रुर के अमल पर रोक लगा दी है। इसके लिए इम्तिहान पिछले महीने की 19 तारीख को हुआ था। फरीदकोट की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने इन ओहदों के लिए इश्तेहार दिया था। इस केस की अगली समाअत अब 17 सितंबर को होगी। तफसील हमारे नामा निकार से।
1: इम्तिहानात के मामले पर सियासी तूफान के तनाजुर में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का यह हुक्म इल्तवा सामने आया है। आला तकनीक के पेन कैमरों और दीगर आलात के जरिए मुबैना पेपर लीक के चंद घंटों के अंदर पंजाब पुलिस ने तीन जिलों फरीदकोट, कोटकापुरा और फिरोजपुर में इम्तिहानात के 25 मराकज पर कार्रवाई के बाद एक बैन रियासती चीटिंग रैकेट का पर्दाफाश करने का दावा किया। पुलिस ने साजिश रचने वाले 7 बड़े मुलजिमों और 28 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया जो इस केस में सीधे मुलव्वस थे। छानबीन से मालूम हुआ कि धोखाधड़ी के इस रैकेट के तहत उम्मीदवारों से इम्तिहान में पास होने की गारंटी के लिए 3.5 लाख रूपये से लेकर 13 लाख रूपये तक वसूल किए जा रहे थे। इस ओहदे के लिए तकरीबन 7,000 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया था। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने इल्जाम लगाया है कि पंजाब सरकार ने जुलाई में हेल्थ साइंसेज की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के जेरे एहतमाम कराए गए फार्मेसी ऑफिसर्स भर्ती इम्तिहान में मुबैना पेपर लीक मामले पर अवाम को गुमराह किया है। नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस इम्तिहान पर रोक लगा दी है और यह सवाल करते हुए सख्त रायजनी की है कि यह इम्तिहान पहले क्यों नहीं रोका गया और आया यह इम्तिहान नए सिरे से कराया जाना चाहिए या नहीं।
2: पंजाब की सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी और झूठ परोस रही थी, जबकि पेपर लीक हुआ था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने, छात्रों के सामने जो दिन रात परिश्रम कर रहे थे उनके सामने सच्चाई आई है।
0: झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी के 14वें इम्तिहान में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ उम्मीदवारों की तरफ से एहतजाज जारी है। उम्मीदवार इस इम्तिहान में हुई मुबैना बेजाबतगियों की गैर जिम्मेदाराना जांच और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। इस सिलसिले में रांची में जेपीएससी, जेएसएससी रिफॉर्म फोरम की मीटिंग मुनक्किद की गई जिसमें इस तहरीक की मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर किया गया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सऊदी जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में एजाज दिए जाने की एक खसूसी तकरीब में 115 फनकारों को 2024 और 2025 के संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप और अवार्ड्स अदा करेंगी। इस मौके पर सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत और सकाफत के वजीर मुमलिकत राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: अकेडमी अवार्ड देने का सिलसिला 1952 से जारी है। ये एजाज न सिर्फ उम्दा कारकर्दगी और कामयाबी के आला तरीन मयार की अक्कासी करते हैं बल्कि इनके जरिए उम्दा इन्फरादी काम और अहम रोल को तस्लीम भी किया जाता है। अकेडमी फेलोशिप के एजाज के तहत 3 लाख रूपये दिए जाते हैं जबकि अकेडमी अवार्ड एक ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम के साथ साथ 1 लाख रूपये पर मुश्तमिल होता है। फेलोशिप और अवार्ड के लिए मुंतखब किए गए अफराद मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से ताल्लुक रखते हैं और इस तरह वो पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। दिल्ली से ऋषु जायसवाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: केरलम में यौम आजादी की तकरीबात के हिस्से के तौर पर आज रियासत में 3 मकामात पर मुसल्ला अफवाज की जानिब से मौसीकी से मुतालिक प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: बहरिया और फजाइया के बैंड मौसीकी के जरिए मुल्क की यकजहती को फरोग देने के मकसद से आज तिरुवनंतपुरम कन्नूर और कोची में अपने फन का मुजाहरा करेंगे। फजाइया का बैंड तिरुवनंतपुरम में निशा गांधी में, कोची जनूबी बहरी कमांड का बैंड अर्नाकुलम के लुलु मॉल में और एजीमाला नेवल एकेडमी बैंड कन्नूर के ताजवे चोवा में अपने फन का मुजाहरा करेगा। इन प्रोग्रामों का आगाज आज शाम 6 बजे किया जाएगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलुरुति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: यौम आजादी से कबल पूरे मुल्क के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा मुहिम से लोगों में हुब्बुल वतनी का मजबूत जज्बा पैदा हो रहा है। पूरी रियासत में तिरंगा रैलियों और कई दीगर प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है। तफसील हमारे नामा निगार से।
4: यौमे आजादी से कबल मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा मुहिम में तेजी आ रही है। ये मुहिम 9 अगस्त से 17 अगस्त तक मुनक्किद की जा रही है। इसका आगाज वजीर आला डॉ मोहन यादव ने भोपाल में एक तिरंगा रैली के साथ किया था। इसके बाद रियासत भर में तिरंगा रैलियां, बाइक रैलियां और साइकिल रैलियां मुनक्किद की जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेला, नुमाइश और सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। स्कूल और कॉलेज रंगोली, पेंटिंग, मजमून नवेसी और हुब्बुल वतनी के नगमों के मुकाबलों का इनेकाद करके बच्चों और नौजवानों को इस मुहिम में शामिल कर रहे हैं। लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों, दुकानों और इमारतों पर कौमी परचम लहराने के लिए कहा गया है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: भारतीय मौसमियात महकमे ने शिमाली खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने के तनाजुर में ओडिशा और गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश और कहीं कहीं इंतहाई तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में भी कल तक मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान के सूराब जिले में पाकिस्तानी फजाई फौज के हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 30 से ज्यादा आम शहरी मारे गए हैं, दर्जनों लोग जख्मी भी हुए हैं। एक बयान में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ग्रुप ने दावा किया है कि पाकिस्तानी फौज और फजाइया ने सुराब के गुदर मोहल्ले और आसपास के सिविलियन इलाकों में शदीद बमबारी और फायरिंग की जिससे जानो माल का काफी नुकसान हुआ। मजकूरा तंजीम ने इल्जाम लगाया है कि मकामी लोगों और हुकाम को बचाव और राहत कार्रवाई अंजाम देने से रोका गया। उसने दावा किया है कि अस्पतालों को फौजी अहलकारों ने घेर लिया है और डॉक्टरों पर दबाव डाला गया। इलाके में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। मस्कुरा ग्रुप ने बैनुल अक्वामी बिरादरी से अपील की है कि वो इस वाकये का नोटिस ले और बलोच लोगों की जिंदगी और बुनियादी हकूक के तहफ्फुज के लिए मुदाखलत करे। अपनी खसूसी सीरीज पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के आइंदा एपिसोड में आज हम विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से गुफ्तगू करेंगे जो दुनिया की पहली हमा निस्वा फौजी बहरी मुहिम का हिस्सा थी जिसके दौरान उन्होंने समंदरी रास्ते से दुनिया का चक्कर मुकम्मल किया। इस बातचीत को

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है उद्योग पत्रिका।
1: नमस्कार, उद्योग पत्रिका में आप सबका स्वागत है।
2: जैसा कि हमारे सुनने वाले जानते हैं कि हम अपने इन साप्ताहिक पत्रिका कार्यक्रमों के माध्यम से उन तक नई नई जानकारी, नए नए विषयों पर नए नए विशेषज्ञों द्वारा पहुंचाते रहते हैं। आज इस पत्रिका कार्यक्रम में हमने शामिल किया है वर्तमान समय की जो गंभीर, चाहे अध्ययन के क्षेत्र हों, चाहे चुनौतियों के क्षेत्र हों, मैनेजमेंट स्किल के क्षेत्र हों, AI का क्षेत्र है, इस सब के बारे में हम बातचीत करेंगे। खास करके हम देखेंगे कि जो AI और जनरेटिव AI है वो किस तरह से बिजनेस स्कूलों को भी प्रभावित कर रहा है। और जब हम बिजनेस स्कूल की बात करते हैं, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड एंड स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो पढ़ने के बाद इसकी इम्प्लायबिलिटी क्या है, रोजगार के अवसर क्या मिलते हैं, और रोजगार के ज्यादा अवसर मिलने के लिए जरूरी होता है कि शिक्षा संस्थान और उद्योग के बीच में जो है सहयोग बढ़े। जो प्रबंधन शिक्षा का भविष्य है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में कैसा होगा, इन सब बातों पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर हिमाद्री दास। डॉक्टर हिमाद्री दास महानिदेशक हैं इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के। इससे पहले डॉक्टर दास MDA गुरुग्राम के निदेशक भी रह चुके हैं। 25 वर्षों से अधिक का इनका एक अकादमिक और कारपोरेट क्षेत्र का अनुभव है। डॉक्टर हिमाद्री दास जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: आपके माध्यम से अपने सुनने वालों के लिए जानना चाहेंगे कि जैसे मैनेजमेंट एजुकेशन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन सबके लिए आई थी, इस कब को लेके मैनेजमेंट एजुकेशन का उससे जुड़े हुए जो लाभ हैं अध्ययन करने वालों के लिए, उसका परिदृश्य किस तरह से बदल रहा है या बदल सकता है?
3: मैनेजमेंट एजुकेशन का लाभ तो ये है कि जितने हमारे बिजनेसेस चलते हैं, चाहे इंडिया हो, इंडिया के बाहर हो, वहाँ पे ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स चाहिए MBA के प्राइमरीली, जो बिजनेस चला सकते हैं। तो इसमें जो चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि जो बिजनेस लैंडस्केप है वो पूरा टेक्नोलॉजी से डिसरप्ट हो रहा है। तो पहले एक तरीके से काम चलता था जहां पे सेट प्रॉब्लम्स लोग सॉल्व करते थे और उसके लिए जो ट्रेनिंग मिलती थी बिजनेस स्कूल्स में, वो ट्रेडिशनली किसी ने कोई प्रॉब्लम डिफाइन करके दिया, उसको स्टूडेंट ने सॉल्व किया, उसके नंबर आए, फिर उसको ग्रेड मिला, फिर इंटरव्यू करने आया जो, वो भी वैसी क्वेश्चन पूछा और उसको नौकरी मिली। कॉन्टेक्स्ट वही था। तो अभी क्या हो गया है कि AI और जेनरेटिव AI आने पे और बाकी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, बिजनेस लैंडस्केप ही पूरा बदल गया और बदल रहा है हर रोज। तो इसीलिए बिजनेस स्कूल्स जो है उनको बहुत जरूरी है कि वो अपने जो MBA ग्रेजुएट्स है उनको कंटेम्प्रेरी रखे विद एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना भी AI से आसान हो जाए, बट प्रॉब्लम डिफाइन करना और प्रॉब्लम को फ्रेम करना वो मुश्किल है, क्योंकि चीजें इतनी फास्ट बदल रही है। जो कल जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है और कल परसों का प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं रहेगा। तो MBA ग्रेजुएट उसको तैयार करना पड़ेगा बिजनेस स्कूल में कि वो प्रॉब्लम को समझे कैसे, चेंजिंग प्रॉब्लम को, और उसको कैसे स्ट्रक्चर करे, कैसे फ्रेम करे, और वो फ्रेम अगर ठीक तरह कर पाएगा तो उसका सोल्यूशन

0: उसको एआई निकालने में हेल्प करेगा, पर एआई प्रॉब्लम को स्ट्रक्चर नहीं कर सकता, वो प्रॉब्लम को फ्रेम नहीं कर पाएगा। वो जिसके पास डोमेन नॉलेज है बिजनेस का, वही फ्रेम कर पाएगा। एआई सहायता करेगा, हेल्प करेगा उसको जल्दी से जल्दी एक्यूरेटली सॉल्यूशन देने के लिए। अगर वो बिजनेस एग्जीक्यूटिव को या एमबीए स्टूडेंट को वो सॉल्यूशन पसंद नहीं आया तो वो रीफ्रेम करके उसी प्रॉब्लम को दोबारा पूछ सकते हैं। तो इसमें एक इटरेटिव प्रोसेस होगा जिसमें जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम की डेफिनेशन में द ह्यूमन बीइंग उसको फॉर्मुलेट करेगा और एआई के माध्यम से वो उसको सॉल्व करने में जल्दी से जल्दी सहायता लेगा।
1: ये तो आपने बताया कि जो एआई किस तरह से उपयोगी होगा। आप खुद भी आईआईटी दिल्ली के एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, साथ ही आपने एमबीए किया है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया अमेरिका से, पीएचडी भी आपने की है। अब जब हम संस्थानों के महत्व की बात करें तो किस तरह से, अगर जो बड़े मैनेजमेंट स्कूल है वो सारे लोग तो नहीं जा पाते हैं, तो अगर हम बात करें कि इन जनरल मैनेजमेंट स्टडी में, तो आने वाले वर्षों में मैनेजमेंट शिक्षा जो है अधिक तकनीकी आधारित हो जाएगी, जैसा कि आपने कहा एआई सब के यूज से, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे यहाँ स्टार्टअप और इंटरप्रेन्योरशिप का एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है जिसमें रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, उसमें बिजनेस स्कूल किस तरह से अपनी भूमिका निभा सकते हैं या निभा रहे हैं?
0: पहले तो मैं बोलूंगा ये कि एआई यूज करने वाले को टेक्नोलॉजी समझने की जरूरत नहीं है, वो टूल है। जिसने एआई का मॉडल बनाया, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे क्लॉड हो, चाहे गूगल जेमिनी हो, चाहे हमारा अपना सर्वम एआई हो इंडिया का, तो वो जो बनाता है वो टेक्निकल आदमी है, जो यूज करता है वो टेक्निकल भी नहीं है। यूज करने वाले के लिए वो टूल है। जैसे कि किसी जमाने में कैलकुलेटर होता था, जब कैलकुलेटर पहले पहले आया तो उसने भी धमाल मचा दिया, तो ये भी वैसे ही है। तो इसमें स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और आसान हो गया अभी, बिकॉज ऑफ एआई एक टूल के माध्यम से उसको यूज करने से वो जल्दी से जल्दी गो टू मार्केट कर सकता है, वो जल्दी से जल्दी जो कहते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना सकता है मार्केट के लिए। सो इसमें उल्टा एआई आने से जिसके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है वो भी जल्दी से जल्दी टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशंस भी निकाल सकता है, क्योंकि वो जैसे आजकल प्रोग्रामिंग अगर कोई नहीं भी आता किसी को, वो भी कोई ऐप बना सकता है, क्योंकि वो एआई के माध्यम से वो कोड जनरेट कर सकता है जो पहले उसको खुद लिखना पड़ता था। तो इसमें तो मेरे ख्याल से और डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है ऑफ एबिलिटी टू डू ए स्टार्टअप और बिकम एंटरप्रेन्योर, इसमें तो फायदा हुआ है सबको।
1: बात करते हैं रोजगार के अधिक से अधिक सृजन करने के लिए, एक तो रिसर्च करना भी जरूरी है मार्केट का, दूसरा होता है कि जो बिजनेस इंडस्ट्रीज है उनके साथ कोलैबोरेशन की भी जरूरत होती है। तो आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल के महानिदेशक हैं, आपके स्कूल में किस तरह से इस चीज पर ध्यान दिया जाता है और किस तरह से लोगों को प्लेसमेंट करने में आसानी होती है, ताकि वो अन्य जो छोटे या टीयर टू थ्री स्टेज के जो बिजनेस स्कूल है वो उसको अपने एज ए रूल अपना सकते हैं?
0: इसमें एक बहुत, मैं फॉर्मूला तो नहीं बोलूंगा, पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि कोई भी बिजनेस स्कूल, चाहे वो टीयर वन हो, टीयर टू हो, टीयर थ्री हो, वो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है नौकरी के लिए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अट्रैक्टिव होना चाहिए कि उसको पैसा देकर हायर करे। तो इसके लिए जो मेन चीज जरूरत है कि स्टूडेंट्स को ये वाले स्किल्स देने जो एम्प्लॉयर मांगता है। अगर मैं उसको 10 साल पुराने तरीके से पढ़ाऊंगा और वो स्किल्स अभी नहीं चाहिए एम्प्लॉयर को, तो उसको नहीं लेगा। जबकि वो, मैं टीयर टू या टीयर थ्री भी हूं, अगर मैं उसको स्किल्स इस तरह दूंगा जो एम्प्लॉयर उसको पहले दिन से काम में लगा पाए, तो एम्प्लॉयर उसको लेगा। तो इसके लिए जो हमने किया है आईएमआई में, और जो करने को तो कोई भी कर सकता है, दैट हमने अभी रिसेंटली इसी साल करिकुलम को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म किया है। कैसे किया? प्रोफेसर्स ने बैठ के नहीं डिसाइड किया कि क्या पढ़ाना चाहिए। हमने एम्प्लॉयर्स के जो सीनियर लोग हैं, जो हायर करते हैं, उनसे डिस्कशंस करके कई महीनों तक पता किया है कि उनको कौन से स्किल्स चाहिए जो पहले नहीं चाहिए होते, अभी चाहिए होते और आजकल मिलते नहीं है। तो फिर हमने करिकुलम को उसके मुताबिक रिवर्स इंजीनियर किया है कि जो एम्प्लॉयर को जो स्किल्स चाहिए उसको हम वही स्किल्स के साथ तैयार करके स्टूडेंट्स को बनाएंगे। तो ये तो कोई अगर टीयर टू या टीयर थ्री वाला इंस्टीट्यूट भी करे, इस अप्रोच ले, तो फिर एम्प्लॉयर बोलेगा कि हम तो यहां से लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि इनके स्किल्स जो हमको चाहिए वही है। तो मेन जो चीज है ना, आपको बोलना बड़ा आसान है कि आप एकेडमी इंडस्ट्री कोलैबोरेशन करो, पहले पैर बढ़ाना पड़ेगा एकेडेमिया को, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को जाना पड़ेगा इंडस्ट्री के पास, बोलना पड़ेगा हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, आप बताओ आपके क्या प्रॉब्लम्स है, क्या स्किल्स चाहिए, उसके मुताबिक हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। तो इसमें जो पहला मूव है ना, वो हमेशा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को लेना चाहिए। अगर वो सोचेगा कि इंडस्ट्री हमारे पास आएगा तब हम बात करेंगे, फिर बात कभी बनेगी नहीं, कि वो तो कस्टमर है, वो तो खरीदेगा ना, मतलब स्टूडेंट्स हायर करेगा, एम्प्लॉय करेगा। तो आपका इंटरेस्ट में है कि आप अपने स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबल बनाओ, तो आप उनके पास जाके पूछोगे कि आपको क्या चाहिए बताइए, हम वैसे ही बना के देंगे।
1: जो नए स्किल्स की जरूरत होती है उसी हिसाब से इंस्टीट्यूट अपने छात्रों को तैयार करेगा,
0: उसी तरह पढ़ाना है, करिकुलम उसी तरह बनाना है।
1: इसीलिए भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस किया है। कई बार कंपनी कंपनियां कहती है कि उनके यहाँ नौकरी तो है, लेकिन इस नौकरी के लिए जिस तरह की निपुणता की जरूरत है, स्किल की जरूरत है, उस तरह के बच्चे छात्र छात्राएं उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने बताया कि किस तरह से एकेडमिक कोलैबोरेशन के तहत कंपनी के जो है एम्प्लॉयर के रिक्वायरमेंट जान के अपने इंस्टीट्यूट में तैयार करना। एक हमारे यहाँ एक रैंकिंग की बात होती है, इंस्टीट्यूट के रैंकिंग की बात होती है, दूसरा क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग भी है। तो अगर हम वैश्विक शिक्षा हब में जाएं, हमारा देश की अगर हम तुलना करें, तो इसमें मैनेजमेंट संस्थानों की क्या भूमिका है, वर्तमान में क्या स्थिति है, और खास करके जब हम देखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड जितने सारे इनोवेशन है उसमें काफी परिवर्तन आ रहा है, तो इसमें क्या 2030-35 तक क्या कोई मैनेजमेंट एजुकेशन में भी बड़े बदलाव की आशा है या होनी चाहिए?
0: नहीं, बड़े बदलाव तो जरूरी है, अगर वो नहीं करेगा बदलाव तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। पर आपने कहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत प्रोग्रेस हो रहा है, पेटेंट्स बन रहे हैं, पर पेटेंट का मतलब क्या है कि मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसको अपने नाम पे कर दिया है, पर उसको कमर्शियलाइज भी तो करना है। तो मैनेजमेंट स्कूल का काम है कि इनके साथ काम करे, इंजीनियरिंग एंड साइंस कॉलेजेस के साथ, उनका जो नई चीजें निकल रहा है फ्रॉम ए साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, उसको वो जल्दी से जो कहते हैं गो टू मार्केट मार्केट ले जाए। तो उसमें बिजनेस मॉडल्स चाहिए, उसमें कैश फ्लोज देखने हैं, उसको मोनेटाइज कैसे करना है। तो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का काम है कि जो साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस से जो निकलता है उसको जल्दी से कमर्शियलाइज करके गो टू मार्केट ले जाए इन ए प्रॉफिटेबल वे, कि मुनाफा भी हो। तो इसलिए तो जुगलबंदी तो है।
1: निश्चित रूप से जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन बेस्ड कोई प्रोडक्ट आता है, निश्चित रूप से उसको एक प्रोडक्ट के रूप में, मतलब इनोवेशन के बाद जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है तो प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में आता है। एक सस्टेनेबिलिटी की भी बात करते हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर में एक रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप की भी बात होती है। प्रायः लोग कहते हैं कि लीडरशिप का मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप, लेकिन कॉर्पोरेट क्षेत्र में लीडरशिप कितना महत्वपूर्ण है, खास करके कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए, इस क्षेत्र में लीडरशिप के लिए क्या क्या क्वालिटी या एजुकेशन एक्सपेक्ट किया जाता है?
0: सबसे पहले तो कॉर्पोरेट लीडर को एम्पैथी होना चाहिए अपने एम्प्लॉयज के लिए और बाकी कम्युनिटी के लिए। वो सिर्फ पैसा तो बनाना है, उसका तनखा मिलती है पैसे बनाने के लिए कंपनी के लिए, पर उसके साथ साथ एम्पैथी भी चाहिए अपने लोगों के लिए, एम्प्लॉयज के लिए और कम्युनिटी के लिए, नहीं तो वो कंपनी कभी सर्वाइव नहीं करेगा लॉन्ग टर्म। दूसरी चीज है उनके पास एक विजन होना चाहिए ग्रोथ के लिए। कॉर्पोरेट लीडरशिप में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस जैसा काम चल रहा था चलता रहे, उसको ग्रोथ चाहिए। अगर ग्रोथ होएगा तभी तो जीडीपी बढ़ेगा। अगर सारे कंपनीज ग्रो कर रहे हैं तो तभी देश का जीडीपी बढ़ेगा। तो इसमें लीडर का रोल है कि ग्रोथ माइंडसेट विद ए लॉन्ग टर्म विजन और साथ में एम्पैथी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज एंड कम्युनिटी।
1: इसीलिए शायद यही कारण है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वो ज्यादा सफल हो रही है निसफल नेतृत्व के कारण ही, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा अपने एम्प्लॉई फ्रेंडली भी हो रहे हैं, उनके लिए इनकरेजिंग माहौल भी बना के रखते हैं। आपका जो है एक कॉर्पोरेट सेक्टर का भी एक्सपीरियंस है, साथ ही आपका एकेडमिक लीडरशिप भी है, आपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एक नेतृत्व वाले पद पे काम किया है, इन दोनों के अनुभव से आप नए लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ताकि वो भी उनका लाभ उठा सके, या एक सबक जिसको कहता है कि अपने एक्सपीरियंस के दौरान कैसा होना चाहिए?
0: मेन मैसेज मेरा है कि टेक्नोलॉजी जितना मर्जी आए, टेक्नोलॉजी तो अडॉप्ट करना है विद ओपन आर्म्स, तुरंत अडॉप्ट करना है, देर नहीं करना, रिजिस्ट नहीं करना, पर साथ में लोगों को भी साथ लेते हुए चलना। सिर्फ टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं चलेगा, लोग अगर साथ में ना हो, अगर लोग का विजन अलाइन ना हो, जो आपके एम्प्लॉयज है, आपके टीम मेंबर्स है, आपके कोलीग्स है, जब तक सबका विजन अलाइन ना हो, आप 1000 टेक्नोलॉजी यूज कर लो, आपके गोल्स नहीं मीट होंगे। आपको मंजिल तभी मिलेगा जब सारे लोग एक साथ अलाइंड हो, सब लोग एक ही दिशा में चल रहे हैं, और उसमें टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करेगा जल्दी चलने में। टेक्नोलॉजी आपको जल्दी चलने में हेल्प करेगा, पर अगर गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आप जल्दी जाओगे गलत डायरेक्शन में तो फायदा क्या? तो लोगों को साथ में लेके चलना है टेक्नोलॉजी के साथ साथ।
1: बहुत अच्छा है, लक्ष्य एक होना चाहिए और कार्य करने की जो प्रणाली है वो एक होनी चाहिए, तभी एक डिसिप्लिन पे में चल के सफलता मिल सकती है, एक एम्प्लॉई को भी, व्यक्ति को भी और एक संस्थान को भी। अंत में अगर हम बात करना चाहेंगे कि जो कोई MBA करना चाहता है, वो तरह के कोर्सेज हैं, HR में ऐसा कहा जाता है कि कम अपॉर्चुनिटीज हैं, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड आगे हैं, जैसे डेटा एनालिटिक्स है, बिजनेस एनालिटिक्स है, फिनटेक और मार्केटिंग का तो एक पुराना ये है। ऐसी स्थिति में अगर कोई छात्र MBA करना चाहता है तो उसे विषय के सिलेक्शन में और एक अच्छे संस्थान के सिलेक्शन में किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए?
0: मेरा तो व्यू ऐसा है और मैं हमेशा सबको ये बोलता हूँ कि जिसमें वो छात्र का इंटरेस्ट है उसमें करना चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट किसमें बड़ा है या तनखा किसमें ज्यादा है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म होता है। उसने मिनिमम 30 साल नौकरी करनी, करियर बनाना है। अगर वो ऐसे जगह घुसता है जिसको उसमें मजा ही नहीं आता, पहले 5 साल तो वो पैसे का मजा लेगा, उसके बाद तो वो बर्न आउट हो जाएगा, बोर हो जाएगा, उसको सुबह उठ के काम पे जाने का दिल ही नहीं करेगा। तो उसको ऐसा कोई लेना चाहिए, चाहे वो HR हो, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स हो, चाहे वो AI हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो फाइनेंस हो, हो, ऐसा चीज जो उसको सचमुच इंटरेस्ट हो। अगर इंटरेस्ट होगा वो उसमें सफल होगा, अपने मैनेजर्स को इम्प्रेस करेगा, उसको तरक्की मिलेगी, उसकी ग्रोथ होगी। अगर वो ऐसे किसी चीज में घुसता है जहां पे अपॉर्चुनिटी बहुत है और वो खुद उसको मजा नहीं आ रहा है, उसका परफॉर्मेंस सफर करेगा तो उसको बॉस बोलेगे तो अच्छी तरह काम नहीं करता है, उसको तरक्की नहीं होगी, करियर ग्रोथ नहीं होगा। तो ये लोग मेरे ख्याल से

0: ख्याल से गलत करते हैं कि सोचते हैं कि ये पढ़ने से ज्यादा मौका है, वो पढ़ने से कम मौका है। अगर आप पसंद का चीज पढ़ोगे उसमें ऑटोमेटिकली अच्छा करो, फिर मौका ही मौका है। इकोनॉमी इतना ग्रो कर रहा है इंडिया में, हम इंडिया में बहुत फॉर्चुनेट है, इकोनॉमी इतना तेज ग्रो कर रहा है, तो हाई ग्रोथ इकोनॉमी में एक्सीलेंस का एक वैल्यू मिलेगा। जिसमें भी आप एक्सीलेंट हो उसमें आपको वैल्यू मिलेगा ही लॉन्ग टर्म।
1: बहुत अच्छा, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए जो जल्द से जल्द अपने करियर में काफी ऊंचाई पे पहुंचने के साथ साथ काफी सेटिस्फाइड जॉब आर्थिक दृष्टि से लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ध्यान चाहिए कि जॉब सेटिस्फेक्शन भी देखना है, साथ ही ये भी देखना है कि उनका अपना रुझान किस फील्ड का है, और ताकि वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सके, न कि अपनी जो इच्छा है उसको बदल के सिर्फ लालच में आके दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं, फिर उनका परफॉर्मेंस भी खराब होता है, लॉन्ग टर्म में आपने बताया कि उसका नुकसान होता है, बहुत अधिक फायदा नहीं होता है। डॉक्टर हिमाद्री दास जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने अपने जो अनुभव है कॉर्पोरेट और एकेडमिक क्षेत्र के उसके अनुभव साझा किए, आपने मैनेजमेंट स्कूल में किस तरह की शिक्षा है, किस तरह से परिवर्तन की जरूरत है, किस तरह की पार्टनरशिप की जरूरत, आपने कही कि स्किल रिक्वायरमेंट के लिए तैयारी की जाती है, साथ ही आपने ये भी बताया कि किस तरह से विषय के चुनाव करने में और अपना कैरियर आगे बढ़ने में एक संयम की जरूरत पड़ती है, सेटिस्फेक्शन साथ लेके चलना पड़ता है। इन सब जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
3: उद्योग पत्रिका, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 होने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: नजर डालते हैं आज की मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। अब से चंद ही लम्हों में सुबहगाही प्रोग्राम में आप सुनेंगे हमद और नाते रसूल। 9:45 पर आज सवेरे प्रोग्राम होगा। खबरें 9:50 पर नशर होंगी और 10 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम शमे फरोजा। 10:05 पर हुस्ने गजल प्रोग्राम में गैर फिल्मी गजलें नशर होंगी और 10:30 पर आप सुन सकते हैं प्रोग्राम चर्चा का विषय है। 11 बजे हर घर तिरंगा का खसूसी प्रोग्राम और उसके बाद कुछ नगमाए हो बुलवतनी। 11:30 पर एक फीचर नशर होगा तहरीक आजादी और उर्दू। दिन में 12 बजे खबरें नशर की जाएंगी और 12:10 से आप सुनेंगे प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। दौरानी प्रोग्राम 12:40 पर तारीख साज प्रोग्राम होगा। आलमी खबरें दिन में 1 बजे नशर होंगी और 1:15 पर आज की पहली मजलिस खत्म हो जाएगी। ये थी एक नजर इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम सुबहगाही।
1: उर्दू सर्विस के सामने की खिदमत में मैं डॉक्टर माजिद देवबंदी आदा पेश कर रहा हूं। हमदे बारी ताला पेश करता हूं, समाप्त फरमाएं।

0: अमदुबारियत आला और नाते रसूल अभी आपने सुनी, पेश कर रहे थे डॉक्टर माजिद देवबंदी। प्रोग्राम था सुबह का ही, ये आकाशवाणी है मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर उर्दू सर्विस की नशरियात आप सुन रहे हैं। अब पेश है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: And now when we flip the pages of history, what is the most important dates that are coming up? I have a date in 1784, so let's share that. Well, on this day in 1784, the East India Company was appointed as the centralized regulatory authority through India by Pitt's India Act, which was accepted in British Parliament in England then.
2: और 1956 की अगर बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग लोकसभा विधेयक में पारित हुआ था आज ही की तारीख, उस तारीख को। वर्ष 2008 में विश्व की प्रमुख इस्पात कंपनी टाटा स्टील ने वियतनाम में संयुक्त रूप से इस्पात परिसर के निर्माण के लिए वहां की दो प्रमुख कंपनियों के साथ समझौता भी किया था।
1: तो मुकेश आगे बढ़ते हैं और फिर लेट्स रिमेम्बर सम ऑफ द पर्सनालिटीज हु हैव देयर बर्थ और डेथ एनिवर्सरीज।
2: जी, इस कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं भवेंद्रनाथ सैकिया के बारे में। आज उनकी पुण्यतिथि है। वे भारतीय उपन्यासकार, लघु कथा लेखक और फिल्म निर्देशक थे। उनकी कई कहानियों का अंग्रेजी, बंगाली, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, मराठी, गुजराती सहित कई अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है। उनके बारे में एक दिलचस्प बात यह है सायरा कि उन्होंने आकाशवाणी के लिए भी कई नाटक लिखे। आकाशवाणी द्वारा उनके कोलाहल, दुर्भिक्षा और इतिहास नाटकों को राष्ट्रीय नाटकों के रूप में लिया गया। भूपेन्द्रनाथ सैकिया द्वारा लिखित एक लघु कहानी पर आधारित असमिया फिल्म श्रृंखल द क्वेवर 17 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई। उन्हें 1976 में साहित्य अकादमी और वर्ष 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और आज पुण्यतिथि है भीकाजी रुस्तम कामा अथवा मैडम कामा की। उनका जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई में हुआ। उनका नाम क्रांतिकारी आंदोलन में विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिन्होंने विदेश में रहकर भी भारतीय क्रांतिकारियों की भरपूर सहायता की। भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जिन्होंने लंदन, जर्मनी और अमेरिका का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में उन देशों में माहौल बनाया। वे जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए सुविख्यात हैं। उस समय जैसा हम देखते हैं आज श्रोताओं, तिरंगा वैसा नहीं था। मैडम भीकाजी कामा ने भारत का पहला झंडा जो फहराया था उसमें हरा, केसरिया और लाल रंग के पट्टे थे। उन्होंने वंदे मातरम और मदन तलवार नामक दो क्रांतिकारी पत्रों का प्रकाशन भी अनिवार्य किया था। प्रकाशन उन्होंने इन दोनों पत्रों का किया था।
1: And well, Hitchcock had a string of successful films, including Rebecca, Foreign Correspondence, Suspicion, Shadow of a Doubt, and Notorious. In fact, Rebecca won the Academy Award for Best Picture, with Hitchcock being nominated as Best Director. He also received the Oscar nominations for Lifeboat, Spellbound, Rear Window, and Psycho. Other notable films include Rope, Strangers on a Train, Dial M for Murder, To Catch a Thief, Trouble with Harry, and Vertigo, among others. So that's how we pay tribute to the great filmmaker. And now coming back to our country, Mukesh, हम लोग आज birthday है एक बहुत ही कहते हैं उस अदाकारा की जिन्होंने बहुत सालों तक rule किया, especially during the black and white era. Today's Vaijayanti Malla's birthday. And of course, we all know that she, apart from being a great dancer, she was a very successful actress and considered the first female superstar of Indian cinema. She successfully transitioned from a child actor to one of the highest paid and leading actresses of the 50s and the 60s. Her performances were noted for integrating Indian classical dance with dramatic acting, helping her establish herself as one of Hindi cinema's finest actresses and dancers.
2: जी, और अगर हम वैजयंती माला की ही जो बात कर रहे हैं, इसमें वो दक्षिण सिनेमा से हिंदी सिनेमा में सबसे पहले सफल होने वाली भारतीय अभिनेत्री रहीं। अपने अभिनय और कला के दम पर वैजयंती माला ने ऐसे मानक स्थापित किए जिस पर चलकर आज की नायिकाएं खुद को सफल बनाने की कोशिश करती हैं।

0: श्रोताओं, वैजयंती माला ने संगम, साधना, सूरज, प्रिंस, मधुमती, गंगा जमुना, आम्रपाली जैसी हिट फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। वर्ष 2024 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया।
1: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी। ये आकाशवाणी है, अब आप नीतिका त्यागी से खबरें सुनिए। गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने के मुतालिक तमीमी बिल मजीद जांच के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के सुपुर्द किया गया है। मगरबी बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने साबिका तृणमूल कांग्रेस सरकार के शुरू करदा नए जाब्तों के तहत जारी किए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट मनसूख कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने मुनज्जम धोखाधड़ी के इल्जाम के तनाजुर में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर्स की भर्ती पर रोक लगा दी है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शिमाली खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने के तनाजुर में ओडिशा और गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल में शदीद बारिश की पेशगोई की है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में पाकिस्तानी फजाई फौज के हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 30 से ज्यादा आम शहरी मारे गए हैं। और क्रिकेट में बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान टी20 सीरीज होने की तस्दीक की है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मजीद जांच के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी जेपीसी के सुपुर्द करने के लिए मंजूरी दे दी है। मजकूरा बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक 2010 के एक्ट में मजीद तरमीम करना है। इस बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात के इस्तेमाल को और ज्यादा शफाफ और जवाबदेह बनाना है। उमूर दाखिला के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने यह बिल वसीकर सलाह मशवरे की खातिर जेपीसी के पास भेजने के लिए लोकसभा में एक तहरीक पेश की। जेपीसी दोनों ऐवानों के अरकान पर मुश्तमिल होगी। इस कमेटी में लोकसभा के 21 अरकान होंगे जिन्हें स्पीकर मौसूफ नामजद करेंगे। इसके अलावा राज्यसभा से 10 अरकान भी इसमें शामिल होंगे जिन्हें चेयरपर्सन नामजद करेंगे। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट मौसम सरमा के इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन ऐवान में पेश कर देगी। इधर राज्यसभा ने भी गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर होरो खौज की खातिर मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के लिए अपने 10 अरकान को नामजद करने की तहरीक मंजूर कर ली है। आज पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आखिरी दिन है। यह इजलास गुज़श्ता महीने की 20 तारीख को शुरू हुआ था। राज्यसभा में आज कानून और मादनियात के फरोग और उन्हें मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर गौर खौस और इसे मंजूर किया जाना है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज प्राइवेट मेंबर के कामकाज पर भी गौर खौस होना है। मगरबी बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट में साबिका तृणमूल कांग्रेस सरकार के शुरू करदा ओबीसी ए और ओबीसी बी जुमरों के तहत जारी किए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट मंसूख कर दिए हैं। जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस अनुज सिंह पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच ने कहा कि रियासत में अब ओबीसी ए और ओबीसी बी का कोई जुमरा नहीं है। अदालत ने कहा कि साबिका निजाम के तहत जारी किए गए सर्टिफिकेट अब काबिल कबूल नहीं रह गए हैं। फैसले के मुताबिक इस तरह के सर्टिफिकेट रखने वाले अफराद को अब आम जुमरे का तसव्वुर किया जाएगा। ओबीसी तनाजा साल 2010 के बाद उस वक्त शुरू हुआ था जब उस वक्त की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने ओबीसी तबकों को दो जुमरों ओबीसी ए और ओबीसी बी में बांट दिया था। साल 2024

0: क्रिकेट में बीसीसीआई और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक की है कि अफगानिस्तान भारत के साथ 3 टी20 मैचों की सीरीज की मेजबानी करेगा। ये सीरीज अगले महीने की 13 से 17 तारीख तक होगी। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। ये सीरीज अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के टूर प्रोग्राम का हिस्सा है और ये मैच भारत में खेले जाएंगे, जहां अफगानिस्तान ने हालिया बरसों में मैचों की मेजबानी की है। और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल मजीद जांच के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के सुपुर्द किया गया है। मगरबी बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने साबिका तृणमूल कांग्रेस सरकार के शुरू करदा नए जाब्तों के तहत जारी किए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट मनसूख कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने मुनज़्ज़म धोखाधड़ी के इल्जाम के तनाजुर में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर्स की भर्ती पर रोक लगा दी है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शिमाली खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने के तनाजुर में ओडिशा और गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल में शदीद बारिश की पेशगोई की है। बलूचिस्तान के सूराब जिले में पाकिस्तानी फजाई फौज के हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 30 से ज्यादा आम शहरी मारे गए हैं। और क्रिकेट में बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान टी20 सीरीज होने की तस्दीक की है। ये सीरीज अगले महीने की 13 से 17 तारीख तक होगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश खिदमत है अखबार ज़री का प्रोग्राम शम्मे फरोज़ा।
1: दुनिया में हर चीज को अपना वजूद बाकी रखने के लिए एतदाल और तवाज़ुन की जरूरत होती है। अगर चीजों में मौजूनियत न हो तो हर चीज का हुस्न मान पड़ जाता है। मिसाल के तौर पर पेड़ पौधों को लीजिए, एक जिम्मेदार माली हसब मौका और हसब जरूरत उनकी तराश खराश करता रहता है। अगर वो कांट छांट न करे तो बाग का सारा हुस्न खराब हो जाए। हमारी इस दुनिया का हुस्न इंसानों की आपसी मोहब्बत और ताल्लुक में है। अगर ये मोहब्बत और ताल्लुक खत्म हो जाए तो दुनिया जहन्नम बन जाएगी। इस मोहब्बत और ताल्लुक का सबसे अहम नतीजा ये सामने आता है कि इंसान एक दूसरे के हुकूक पूरी तरह अदा करने लगता है। हुकूक का अदा करना इसलिए जरूरी होता है कि हर इंसान को उसके मकाम और मर्तबे और उसके रिश्ते नाते के मुताबिक एजाज और इकराम से नवाजा जा सके। हर इंसान, चाहे वो बड़े से बड़ा हुक्मरान हो या माशरे का सबसे गरीब फर्द हो, हर एक इंसानी बुनियादों पर अपना एक मखसूस मकाम और मर्तबा रखता है। उसकी ख्वाहिश होती है कि उसकी इज्जत नफ्स और खुददारी के मुताबिक उसको मकाम दिया जाए। किसी भी इंसान का ये मुतालबा गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंसानियत के लिहाज से सबका अपना एक मकाम है। आज हम दुनिया में जो इंतशार देखते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान ने एक दूसरे के हुकूक मानने शुरू कर दिए। हर शख्स ये तो चाहता है कि उसके हुकूक पूरे तौर पर अदा किए जाएं, लेकिन दूसरे के हुकूक अदा करने को वो तैयार नहीं होता। हालांकि हमेशा से दुनिया का ये उसूल चला आ रहा है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसके लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल जरूरी होता है। आप कभी गौर कीजिए कि दुनिया भर में आवाम अपने हुक्मरानों से और हुक्मरान अपने आवाम से क्यों परेशान रहते हैं? ऑफिस का बॉस अपने मुलाजिमों से और मुलाजिम अपने बॉस से क्यों शाकी रहते हैं? घरों में शोहर बीवी, सास बहू, भाई बहन, बाप बेटे को एक दूसरे से गिला शिकवा क्यों होता है? वजह साफ है कि सब लोग दूसरे से तो अपने हुकूक की अदाई का मुतालबा करते हैं, लेकिन अपने ऊपर आयद होने वाले दूसरों के हुकूक को अदा करना नहीं चाहते। सच पूछिए तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। इस सूरत हाल के नतीजे में घरों, दफ्तरों, खानदानों, मुल्कों और पूरी दुनिया में इंतशार है, जिसकी वजह से सब एक दूसरे से कटे हुए हैं। खुदा ने हमें हर एक के हुकूक मसावी तौर पर अदा करने का हुक्म दिया है। कुरान करीम में हर इंसान पर दूसरे इंसानों के हुकूक गिनाए गए हैं। ये हुकूक ऐसे मुतवाजिन और मोतदिल हैं कि अगर इंसान सही तौर पर इन्हें अदा करने लगे तो किसी को किसी से कोई शिकायत न रहे और ये दुनिया जन्नत का नमूना बन जाए। सवाल ये है कि सबसे पहले कौन अपने हुकूक अदा करने के लिए आगे बढ़ेगा? याद

0: इस गजल के साथ ही आज का हुस्ने गजल प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है प्रोग्राम चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर एमएसएमई मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ आनंद श्रीवास्तव की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार। जब किसी शहर के एक गली में वर्कशॉप का शटर उठता है, जब किसी गांव में एक छोटा कारखाना शुरू होता

0: तो सिर्फ मशीनें नहीं चलती, देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन भी चलती है। देश की जीडीपी में 30% से अधिक की हिस्सेदारी और करोड़ों हाथों को रोजगार देने में एमएसएमई सेक्टर का कोई सानी नहीं है। लेकिन क्या हो जब एक छोटा उद्यमी काम करने के बाद अपनी मेहनत के पैसे के लिए वर्षों इंतजार करे? इन्हीं अड़चनों को जड़ से समाप्त करने के लिए संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ है एमएसएमई डेवलपमेंट अमेंडमेंट। बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि 20 वर्षों के बाद अमेंडमेंट बिल की जरूरत क्यों पड़ी?
1: आनंद जी, 2006 में जैसे आपने बताया, सबसे पहले ये एक्ट बना था एमएसएमई क्षेत्र के लिए और कि ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस किए जाते हैं, और इस पीरियड में टेक्नोलॉजी का भी बहुत स्वीपिंग चेंजेस आए, और उसके साथ साथ कई ऐसे प्रोविजंस थे जो कि रिडंडेंट और ऑब्सोलीट लगने लगे। इसी के चलते ये चेंजेस इस बार लाए गए हैं, और जैसे आपने कहा 3 अगस्त को राज्यसभा से और 7 अगस्त को लोकसभा से हमारा एमएसएमई बिल पारित हुआ है।
0: 90 दिन एक समय सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन फैसिलिटेशन सेंटर्स के पास अभी भी हजारों की समस्याएं पेंडिंग है।
1: देखिए, एमएसएमई क्षेत्र के अंदर पेमेंट्स का डिले होना एक बहुत बड़ी चुनौती हमेशा से रही है। छोटे सप्लायर्स हैं, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम श्रेणी के सप्लायर्स हैं, और उनके लिए लिक्विडिटी बहुत क्रिटिकल रहती है। उनके लिए वर्किंग कैपिटल समय से उपलब्ध हो ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसी से वो खरीदारी करके अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि पेमेंट्स में विलंब हो जाता है। इसी के चलते प्रावधान पहले एक्ट में किया गया था कि डिलेड पेमेंट्स को कैसे एड्रेस किया जाए। हालांकि मीडिएशन, आर्बिट्रेशन के भी प्रावधान थे, लेकिन ये देखने में आ रहा था, पिछले वर्षों में अनुभव ये किया जा रहा था कि इसमें उसके बावजूद, इन प्रावधानों के बावजूद विलंब हो रहा था। तो इस नए संशोधन के अंदर एक तो ये तय किया गया है कि हर चीज की अपनी समय सीमा हो, और उस मीडिएशन और आर्बिट्रेशन शुरू करने से पहले प्रयास ये हो कि जो सप्लायर है और जो ऑर्डर प्लेस करता है, उन दोनों के बीच में अगर म्यूचुअल नेगोशिएशन और डिस्कशन से भी मामला सुलझ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि जो कंपनी ऑर्डर प्लेस करती है छोटे सप्लायर के ऊपर, उनका भी बड़ा लंबे समय तक एक रिश्ता बन जाता है आपस में, तो वो चाहते भी नहीं कि कोई डिस्प्यूट हो, और प्रयास भी सबसे पहले यही होता है कि उसको आपसी बातचीत से सुलझा लिया जाए। लेकिन अगर वो निपटारा नहीं हो पाता और किसी वजह से उसमें डिस्प्यूट का फॉर्म ले लेता है, तो मीडिएशन के लिए समय निर्धारित किया गया कि वो 90 दिन के भीतर भीतर किया जाए, और अगर मीडिएशन में भी उसका सोल्यूशन नहीं निकला तो 30 दिन के अंदर अंदर उसके लिए आर्बिट्रेशन में मूव किया जाएगा, और आर्बिट्रेशन में आने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर अवार्ड अनाउंस किया जाएगा। तो ये जो समय सीमा है इसको एक्ट में ही निर्धारित किया गया है। प्रयास ये है कि बहुत ज्यादा विलंब इन डिस्प्यूट्स के अंदर भी ना हो। आपका कहना सही है, जो एमएससीएफसीज हैं जहां पर फैसिलिटेशन काउंसिल्स के अंदर ये डिस्प्यूट्स आती हैं, उनमें कई समय तक कई बार डिलेज भी हो जाते हैं क्योंकि प्रोसेस उनके लंबे होते हैं, तो प्रोसेस को भी सरल किया गया है। क्योंकि अब प्रावधान किया गया है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, तो एक ODR पोर्टल है हमारा जो पिछले साल हमने लॉन्च भी किया था, उसमें हमारा जो सेलर और परचेजर दोनों उस पर रहेंगे और पहले प्रयास करेंगे कि आपसी बातचीत से हो जाए, नहीं होगा तो उसी के माध्यम से मीडिएशन के लिए जाएगा, और ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकेगी। अपने घर के एंटरप्राइज के कम्फर्ट में बैठ करके कहीं फिजिकली दूर जाने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया हो पाएगी, और आर्बिट्रेशन का काम भी ऑटोमेटिकली वहीं से फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूं इस समय सीमा को निर्धारित करने से इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में और आसानी होगी, और जो पेमेंट्स समय से नहीं हो रही थी वो समय से होने लगेंगी, डिलेज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे।
0: थोड़ी चर्चा अगर ट्रेड्स की कर लें इस बिल पर, ट्रेड्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, उसको बहुत अहमियत दी गई है। आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए हम बता दें कि मान जाइए कि आपने ए साथ आपकी डील हुई, वो डील 25 करोड़ रुपए की है। ट्रेड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपने वहां पर अपनी इन्वॉइस जेनरेट की, किसी दूसरी कंपनी को लगता है कि वो 24 करोड़ रुपए आपको अभी तत्काल दे सकती है, बायर के पैसे 2 सालों के बाद आएंगे तो उसको 25 करोड़ मिल जाएगा, लेकिन हमने अपना पैसा लगाया है तो हम 24 करोड़ में अगर सेटल होना चाहें तो वो हम सेटल हो सकते हैं। ये ट्रेड्स की खासियत है इनवॉइस सेटलमेंट के लिए, इसको कैसे प्रभावी बनाया जा रहा है इस बिल के माध्यम से?
1: देखिए, ट्रेड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी के लिए विन विन सिचुएशन है, सप्लायर के लिए, परचेजर के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, तीनों के लिए। और जैसे आपने बड़े सरल रूप से बताया, ये जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है 2017 में RBI ने शुरुआत की।

0: थी और शुरुआती दौर में इस पे ट्रांजैक्शन बहुत कम होती थी। रादर मैं ये कहूंगा 2021-22 में भी हम तकरीबन 40,000 करोड़ के करीब ट्रांजैक्शन कर पा रहे थे, जो पिछले वर्ष में 2025-26 में बढ़कर के 3.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया। और ज्यादा से ज्यादा कंपनीज हमारी ऑनबोर्ड कर रही हैं ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर। इस नए संशोधन के अंदर जितने हमारे केंद्रीय उपक्रम हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, उनके लिए अनिवार्य किया गया है कि जितने भी एमएसएमई से संबंधित पेमेंट्स हैं उनको ट्रेड्स के माध्यम से इन्वॉइसेस को वहां पर रेज किया जाए, ताकि उनकी पेमेंट्स ट्रेड्स के माध्यम से की जा सके। तो इसके चलते काफी आराम हमारे एमएसएमईज को मिलेगा, क्योंकि कई बार उनको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता था, उसके चलते वो आगे रॉ मटेरियल की खरीद नहीं कर पाते थे, तो उसमें उनको आसानी होगी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें बेझिझक आगे बढ़ेंगी। तो अभी तक ट्रेड्स का एक्ट के अंदर प्रावधान नहीं था, अब उसकी एक बाकायदा स्टैट्यूटरी बैकिंग है और जो एक सिर्फ नोटिफिकेशन से चल रहा था उसका एक्ट में प्रावधान किया गया। सीपीएसईज को मैंडेट दिया गया कि वो इस पर ऑनबोर्ड भी हो और इसके माध्यम से करें, और उसके साथ साथ वो उसकी पब्लिक डिस्क्लोजर भी करेंगी कि हमारे इन इन एमएसएमई से संबंधित जो इन्वॉइसेस थी वो रूट की गई ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस पीरियड के दौरान, तो वो भी करना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रहेगा।
1: एक छोटा सा सवाल और उठता है कि बड़े कॉरपोरेट्स घरानों को ट्रेड्स तक लाने के लिए क्या एमएसएमई मंत्रालय के पास कोई योजना है या उस पर काम किया जा रहा है?
0: देखिए, जहां तक केंद्रीय उपक्रम है उनके लिए तो अब एक्ट में ही प्रावधान हो गया। हमारे 291 इस समय केंद्रीय उपक्रम है और ये सब उपक्रम अब ट्रेड्स के माध्यम से ही करेंगे। जहां तक प्राइवेट इंडस्ट्री है, 250 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले उपक्रमों को भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो ट्रेड्स के माध्यम से करें, और स्टेट गवर्नमेंट्स को इस नए संशोधन के अंदर प्रावधान ये किया गया है कि वो भी चाहें तो अपने स्टेट के जो उपक्रम हैं उनको भी मैंडेटरी कर दें ट्रेड्स के माध्यम से ऑपरेट करने के लिए। तो मैं ये समझता हूं पूरा इकोसिस्टम जब इसका बेनिफिट उठाएगा तो हमारे एमएसएमईज के लिए ये व्यवस्था बहुत बेहतर हो जाएगी और लिक्विडिटी क्रंच जो अक्सर वो फेस करते हैं उससे उनको छुटकारा मिलेगा।
1: एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल जहन में आ रहा है कि कोई भी जो उद्यमी है, अगर उसने बायर के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट की है और उसके पक्ष में वो निर्णय आता है, लेकिन बायर चूंकि मजबूत होता है, उसके पास आर्थिक ताकतें ज्यादा होती हैं, वो कोर्ट में उस मामले को ले जाता है और फिर वो मामला काफी लंबा खींचता है। जो छोटा उद्यमी है जिसने अपना पैसा लगाया है, जिससे उम्मीद है कि काम पूरा होने के बाद उसको पैसे मिलेंगे, उसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उसकी वो सैलरी दे पाएगा, जो रॉ मटेरियल्स लाया उसका भुगतान कर पाएगा, ऐसे में जो कोर्ट में लंबा मामला खींच रहा है, क्या इस बिल में उसके लिए प्रावधान है?
0: इसके लिए भी बड़ा प्रभावी प्रावधान किया गया है। अगर कोई डिक्री या अवार्ड को अपील के अंदर चैलेंज किया जाता है तो उस अवार्डेड राशि का 75% अनिवार्य है कोर्ट के पास जमा करवाना। अब उस राशि में से कोर्ट्स को ये एम्पावर किया गया है कि अवार्डेड अमाउंट का 50% राशि वो उसको तुरंत जारी करवा सकते हैं एमएसएमईज के फेवर में, अगर कोई अपील 6 महीने से ज्यादा पेंडिंग है। एक समय सीमा आ गई 6 महीने की, अगर 6 महीने से ज्यादा कोई अपील लंबित रह जाती है तो कोर्ट्स 50% राशि अवार्डेड अमाउंट की उस एमएसएमई को तुरंत जारी कर देंगे, ताकि विलंब अगर होता भी है तो भी 50% राशि तो उसको मिली गई फैसला होने तक, बाद में बाकी भी मिल जाएगी। ये नया प्रावधान इस संशोधन में लाया गया है।
1: एक और प्रावधान किया गया है उद्यम पंजीकरण पोर्टल का, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। जो लोग एमएसएमई से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए किस तरीके से ये सहायक होने वाला है?
0: देखिए, इसमें मैं सबसे पहले तो ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि उद्यम पोर्टल पर या अन्य कहीं पर पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है, पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है। यही प्रावधान एक्ट में भी किया गया है और उद्यम पोर्टल पर ये ऑनलाइन प्रोसेस है, बहुत ही सरल प्रक्रिया है इसकी। इसमें उद्यम पोर्टल हमने लॉन्च किया था 2020 के अंदर और धीरे धीरे फॉर्मलाइजेशन काफी हुई, क्योंकि पहले अक्सर ये देखा जाता था कि एंटरप्राइजेस इनफॉर्मल क्षेत्र में तो कई साल काम करते थे लेकिन फॉर्मल इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं बनते थे, शायद इस बात से भी घबराते हो कि कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाएगा और परेशानी आने लगेगी। तो सरकार ने बड़े प्रयासों के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्री के ऊपर कंप्लायंस बर्डन भी कम किया, इसके भी चलते प्रेरित हुई एंटरप्राइजेस कि हम फॉर्मल रूप से अपना पंजीकरण करवाएं, और मैं ये समझता हूं इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई पिछले कुछ वर्षों में। 1.65 करोड़ हमारे एंटरप्राइजेस फॉर्मल इकोसिस्टम में थे आज से 4 साल पहले, और आज हमारी संख्या 9 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। तो ये तभी संभव हो पाया जब उनको लगा कि ये इससे उनको लाभ मिलेंगे, सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं और बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उसका भी वो लाभ उठा पाएंगे, तो आगे बढ़कर के हिस्सा ले रहे हैं इसमें। अब

0: फील्ड में हमारे बहुत अच्छा एंगेजमेंट रहा सभी एमएसएमई एसोसिएशन के साथ, इंडस्ट्री के लोगों से, उन्हीं से ये फीडबैक लेकर के उन्हीं के सुझावों के आधार पर ये प्रस्ताव तैयार किया गया। और अब चूंकि बिल पारित हो गया है, आने वाले समय में हम एमएसएमई के साथ डायरेक्टली एंगेज करके उनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी डिसेमिनेट करेंगे और एसोसिएशन के माध्यम से भी हम उन तक ये सारे प्रावधान जो नए हैं उसके बारे में उनको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे ताकि वो पूरा इसका लाभ उठा सके।
1: सचिव साहब, एक और यहाँ पर एक जो पेज समझ में आता है वो ये है कि जो रिकवरी का मामला है उसमें ज्यादा हिस्सेदारी राज्यों की होती है, ऐसे में एमएसएमई मंत्रालय राज्यों के साथ किस तरीके का संगठनात्मक समन्वय की स्थिति बना रहा है जिससे रिकवरी थोड़ी फास्ट हो सके?
0: या आर्बिट्रेशन के बाद कोई अवार्ड होता है तो उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए उसको एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू भी घोषित किया जा सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने नॉर्मली जो जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर होते हैं उनको अधिसूचित किया गया होता है एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पर रिकवर करने के लिए। वो प्रावधान भी पहली बार इस एक्ट में किया गया है ताकि कोई अमाउंट अगर ड्यू है तो वो अनरिकवर्ड ना रह जाए।
1: एक और इसमें व्यावहारिक बदलाव किया गया है, पहले अगर कोई उद्यमी जो है वो छोटी मोटी गलती कर देता था या चूक कर देता था उसके लिए जेल या जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन इसमें उसको हटाकर वार्निंग की व्यवस्था की गई है। क्या इससे वो जो इंस्पेक्टर राज वाला कॉन्सेप्ट था उसको समाप्त करके एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों को आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस देने की सोच है?
0: देखिए, डीक्रिमिनलाइजेशन और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसके आधार पर पूरी केंद्र सरकार में आप देख ही रहे हैं सभी एक्ट्स के अंदर बदलाव लाया जा रहा है। हमारा जो ये एक्ट है इसमें जेल का प्रावधान तो खैर नहीं था लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस जरूर था क्योंकि उसमें कन्विक्शन बेस्ड पेनल्टी थी कि कोर्ट के माध्यम से कन्विक्शन होगा और फिर उस पर पेनल्टी लगेगी। उसको अब सरल कर दिया गया है, उसमें ग्रेडेड फाइन जो ग्रेडेड पेनल्टी का प्रावधान किया गया है और वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर उसका डिसीजन लिया जा सकता है, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई पहले कोई जानबूझकर गलती नहीं करता, किसी कारणवश नासमझी की वजह से कोई लैप्स होता है तो पहले इंस्टेंस पर वार्निंग देने का प्रावधान है, दूसरे इंस्टेंस पर पेनल्टी लगेगी वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर 1000 से 50,000 के बीच में, और अगर उसके बाद भी वो करता है तो पेनल्टी का अमाउंट बढ़ जाएगी। लेकिन कन्विक्शन के लिए कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, इसीलिए हमने डेवलपमेंट कमिश्नर को एडजुडिकेट करने के लिए अधिकृत किया है और अगर उसमें भी अगर कोई अपील करना चाहे तो वो सचिव के पास अपील भी कर सकता है, उसके लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। तो मैं ये समझता हूं ये पूरा जो इकोसिस्टम है ये ट्रस्ट के आधार पर काम करने के लिए बनाया गया है।
1: एक और व्यवहारिक सवाल जहन में आ रहा है कि जब भरोसा दिया जा रहा है और आपने शुरू में भी कहा कि चूंकि 20 वर्षों में तकनीक बहुत बदल गई इसलिए इस संशोधन बिल की जरूरत आन पड़ी, आज का जमाना एआई का जमाना है, क्या इस बिल में तकनीक को लेकर या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे समस्याओं को सुलझाने को लेकर भी कोई प्रावधान है या कोई चर्चा है?
0: देखिए, जो हमारा ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का पोर्टल है वो नया पोर्टल बना, बहुत ही रोबस्ट है और उसमें सारा जो प्रक्रिया है वो उस पोर्टल के माध्यम से हो रही है। उसमें एआई भी मदद करेगा ड्राफ्ट करने में भी कि आपने कोई डिस्प्यूट है उसको ड्राफ्ट करना है, वो भी एआई भी मदद करेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली मीडिएशन के अंदर आर्बिट्रेशन के अंदर भी एआई का इस्तेमाल किया जाएगा और ये सारी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से होगी जो कि मैं ये समझता हूं टेक्नोलॉजी के अच्छे यूजेज को दर्शाता है। और जो एमएससीएफसीज हैं हमारी जो फैसिलिटेशन काउंसिल्स है उनके कार्य में भी और ज्यादा एफिशिएंसी आएगी क्योंकि वो भी अपने पुराने फैसलों का अध्ययन कर पाएंगे, सब तरह के केसेस का एक साथ निपटारा करना भी उनके लिए सरल हो पाएगा। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग पोर्टल के अंदर किया जा रहा है, उसके साथ ही जो उद्यम पोर्टल है उसमें भी टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया गया है। आज हम बड़ी सरल रूप से बता पाते हैं कि हमारे कितने माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, कितने स्मॉल हैं, कितने मीडियम हैं, किस सेक्टर में कितने हैं, किस राज्य में, किस जिले में, और कितने महिलाओं के हैं, ये सारी जो सेग्रीगेशन है ये सारा जो एनालिसिस है ये हम कुछ सेकंड्स के अंदर कर पाते हैं और ये एनालिसिस हमें मदद करता है नीतियां निर्धारित करने में, नई योजनाओं को प्लान करने में। तो मैं ये समझता हूं टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये चीजें और सरल होती जा रही हैं।
1: आकाशवाणी से युवाओं का एक बड़ा वर्ग हमेशा से जुड़ा रहा है, उनके जहन में जरूर एक सवाल उठ रहा होगा कि अब तक बहुत सारे हाथों को रोजगार देने का काम किया है एमएसएमई ने, क्या इस नए बिल से रोजगार के अवसरों में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है?
0: देखिए, हमारे देश में एमएसएमई का रोजगार में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कृषि के बाद ये दूसरा क्षेत्र गिना जाता है रोजगार के टर्म्स में, तकरीबन

0: 32 करोड़ से 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। मैं ये समझता हूं आने वाले समय में हमारे एमएसएमई जो हैं ग्लोबल वैल्यू चेन का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहे हैं, और ये तभी संभव है जब उनमें कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस आएगी, उनमें इनोवेशन रहेगी। तो नवाचार में सबसे ज्यादा योगदान युवा पीढ़ी का रहता है। हमारी एमएसएमई चैंपियंस योजना के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम इनोवेशन के लिए हमारी युवा पीढ़ी को इंसेंटिवाइज करें, उनको प्रेरित करें, और वो अपनी क्वालिटी को भी इंश्योर कर पाएं, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस ला पाएं, और अलग अलग प्रोडक्ट चेन के अंदर किस प्रकार से वो एक इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण हिस्सा बन पाए, टीयर टू और टीयर थ्री वेंडर से बढ़ करके पूरी वैल्यू चेन संभाल पाए और स्केल अप करें अपने एंटरप्राइज को। आज भी हमारे एमएसएमई क्षेत्र में 98% माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं। तो हमारा प्रयास है फॉर्मलाइजेशन होने के बाद स्केलिंग अप करें, माइक्रो बढ़ करके स्मॉल बने, स्मॉल बढ़ करके मीडियम बने, मीडियम के बाद लार्ज एंटरप्राइजेस बने। तो ये स्केलिंग करने में इनोवेशन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, और मैं ये समझता हूं हमारी युवा पीढ़ी आज के समय में बहुत इसमें रुचि भी रखती है। पहले वेज एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान रहता था, अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बजाय इसके कि रोजगार ढूंढने, वो खुद रोजगार देने के लिए तैयार है और स्कूल कॉलेज के अंदर ही प्रयास करने लगते हैं कि किस प्रकार से अपना एंटरप्राइज खोलें और लोगों को रोजगार दे पाए।
1: आपने भी बात की एक सपने की, उस आपकी बात में एक सपना छिपा था कि छोटे से बड़े स्तर तक अपने कारोबार को लेकर जाने की। आपने बात की कि ग्लोबल स्तर पर अपने प्रोडक्ट की अहमियत को बनाने की, लेकिन इसमें एक जो बड़ी भूमिका है वो आपके स्किल सेट की होती है, कौशल विकास की होती है। क्या एमएसएमई जो दूर दराज के छोटे शहर हैं, गांव हैं, वहां के उद्यमियों को स्किल बढ़ाने के लिए, उनको और बेहतर बनाने के लिए किसी कार्यक्रम पर, किसी योजना पर काम कर रहा है?
0: आपने बिल्कुल सही कहा, जो स्किल अपग्रेडेशन है बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, खासतौर पे युवाओं के लिए। और हमारे मंत्रालय की दो मुख्य योजनाएं हैं इसको लेकर के। एक तो टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं, हमारे 55 टेक्नोलॉजी सेंटर्स देश भर में बन रहे हैं, और इसमें से 35 ऑलरेडी फंक्शनल हैं, कुछ बाकी अभी बन रहे हैं। इनमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज की ट्रेनिंग और स्किल अपग्रेडेशन दिया जाता है, और हाल ही में इसमें ऐड की गई हैं रोबोटिक्स, एआई, आईओटी, इस तरीके की टेक्नोलॉजीज जिसमें हमारे सक्षम बन रहे हैं युवा। उसके साथ ही साथ हमारी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट योजना भी है, जिसके माध्यम से वोकेशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती है पूरे देश भर के अंदर, और हम दूसरे जो मंत्रालय हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, उनके साथ कन्वर्जेंस करके भी हम कौशल विकास की ओर विशेष ध्यान देते हैं।
1: इस बिल में क्लासिफिकेशन की भी थोड़ी चर्चा है, इस बारे में भी बताएं।
0: देखिए, पहले क्लासिफिकेशन में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के अंदर अंतर रखा जाता था, और अब वो खत्म हो गया 2020 के अंदर, जब हमने कहा कि चाहे वो एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग में लगा हो या सर्विसेज में कार्यरत हो, उसके क्राइटेरिया सिमिलर होंगे। और उसी से ट्विन क्राइटेरिया लाया गया इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का। पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट आधार रहता था, अब कितना निवेश किया गया प्लांट एंड मशीनरी में और कितनी उसकी टर्नओवर है, इन दोनों क्राइटेरिया को ध्यान में रख करके क्लासिफिकेशन की जाती है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम के अंदर। तो अब इसको बकायदा एक्ट के अंदर प्रावधान किया गया, चूंकि ये पहले सरकार की नोटिफिकेशन के माध्यम से तो किया गया था, लेकिन अब ये एक्ट का हिस्सा बन चुका है कि ये ट्विन क्राइटेरिया को फॉलो करके क्लासिफिकेशन की जाएगी। उसकी सीमा कितनी होगी वो समय समय पर सरकार निर्धारित करती रहेगी। जैसे आप जानते हैं 2025 के अंदर पिछले वर्ष ही इसकी जो सीमा है उसको भी बढ़ाया गया था। आज के समय में 125 करोड़ तक के निवेश और 500 करोड़ तक का जो टर्नओवर है वो एमएसएमई क्षेत्र को डिफाइन करता है, तो इसमें पिछले वर्ष ही बढ़ोतरी की गई थी। तो मैं ये समझता हूं आने वाले समय में और ज्यादा एंटरप्राइजेज फॉर्मल इकोसिस्टम का हिस्सा बन पाएंगे डेफिनेशन में बदलाव आने के कारण।
1: सचिन साहब, कोई अगर बैंक से लोन लेता है एमएसएमई के तहत, लोन तो बहुत आसानी से मिल जाता है कानूनी प्रक्रिया के तहत, लेकिन अगर वो 6 महीने या निर्धारित समय में वो वापस नहीं कर पाता है, तो जो क्रेडिट पॉलिसी बनाई गई है इस बिल में, उसके लिए भी क्या कोई प्रावधान है, उसमें भी कोई जोड़ घटाव किया गया है क्रेडिट पॉलिसी को लेकर?
0: देखिए, एमएसएमई क्षेत्र में क्रेडिट सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, और क्रेडिट इन्फ्यूजन इस क्षेत्र में काफी बढ़ा भी है। 2014 में तकरीबन 10 लाख करोड़ का क्रेडिट था इस क्षेत्र को, जो आज के समय में तकरीबन 38 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है, और ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने क्रेडिट गारंटी को बड़ा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस दी, और क्रेडिट गारंटी के माध्यम से जब बैकिंग मिली बैंक्स को, तो उनका भी विश्वास और बेहतर हो गया, और बैंक्स ने यह भी अनुभव किया कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगातार गिरते आए हैं इस क्षेत्र के अंदर। हमारा परसेप्शन पहले ही रहता था कि जो छोटा उद्योग है

0: वो शायद डिफॉल्ट करेगा, लोन वापस नहीं कर पाएगा। लेकिन फॉर्चुनेटली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कमी आई पिछले वर्षों में, और ये जब बैंकों ने अनुभव किया तो वो और ज्यादा प्रेरित हुए क्रेडिट बढ़ाने के लिए। तो मैं ये समझता हूं कि क्रेडिट का आने वाले समय में और ज्यादा भूमिका बढ़ेगी और बैंक्स जो हैं प्रेरित होंगे और बेहतर रूप से क्रेडिट उपलब्ध करवाने के लिए हमारे उद्यमियों को।
1: एक थोड़ा अलग सा सवाल जहन में आ रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को भारत में जीआई टैग्स भी मिले हैं, बहुत सारे शहरों की अपनी खासियत है, जैसे हम बनारस की बात करें तो वहां बनारसी साड़ियों की खासियत है, कहीं का दाल काफी फेमस है, कहीं के मसाले बहुत फेमस हैं। क्या मंत्रालय का कोई यूनिट उन छोटे शहरों में जहां कुछ विशेष चीजें बनती हैं वहां पर किसी को सिलेक्ट करता है, या वहां कोई कैंप का आयोजन करता है कि यहां की ये खासियत अगर आप इसको लेकर कुछ करना चाहते हैं, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भी बात है, वोकल फॉर लोकल की भी बात है, अगर आप इसको लेकर कोई उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो मंत्रालय आपको विशेष योगदान देगा या आपको सपोर्ट करेगा?
0: देखिए, डीपीआईटी जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जीआई टैग को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो जीआई टैग जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें अपना आवेदन करने के लिए और जीआई सर्टिफिकेशन लेने के लिए अगर एमएसएमईज सामने आते हैं तो उसमें हम लोग भी अपने एमएसएमई चैंपियंस स्कीम के तहत उनको इंसेंटिव्स प्रदान करते हैं, और इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ वर्षों में। बिकॉज कुछ साल पहले तक शुरुआती दौर में तो बहुत ही कम जीआईस थे, लेकिन पिछले सालों में आज हम करीब 800 के करीब जीआईस ऑलरेडी देश में रजिस्टर्ड हैं, और आने वाले समय में भी हमने एमएसएमई चैंपियन स्कीम में ये प्रावधान रखा है कि जीआई लेने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें हम लगभग 100% इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं अपने मंत्रालय के माध्यम से।
1: ये जो बिल आया है, क्या इसमें कोई नेशनल डैशबोर्ड बनाने की भी कोई पहल की गई है जिससे कि रियल टाइम जो लोकेशन है मामलों के निपटान की उसको लेकर कोई प्रावधान है जो कि आसानी से बायर भी देख सके, उद्यमी भी देख सके?
0: देखिए, जैसे मैंने आपको ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल के बारे में बताया, ये एक ऐसा पोर्टल रहेगा जो कि देश भर में बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा और ये इंटीग्रेटेड पोर्टल रहेगा। तो इसमें बायर और सेलर दोनों रहेंगे और साथ ही साथ एमएससीएफसीज भी इसमें ऑपरेट करेंगे। तो मैं ये समझता हूं ये प्लेटफॉर्म इतना उपयोगी सिद्ध होगा कि जो डिस्प्यूट्स हैं उनमें काफी कमी आने की संभावना है, ये हमारी सोच है।
1: 2047 भारत विकसित भारत बने, ये सपना प्रधानमंत्री का है और हर भारतीय चाहता है कि जब हम आजादी के 100 वर्ष पूरे करें तो एक विकसित भारत का निर्माण हो सके। ये जो बिल है और एमएसएमई, चूंकि हमने कार्यक्रम के शुरू में ही बताया कि 30% जीडीपी में उसकी हिस्सेदारी 30% से थोड़ी ज्यादा ही है, क्या लगता है इस बिल के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है?
0: देखिए, मैं ये समझता हूँ विकसित भारत 2047 के संदर्भ में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका और अधिक बढ़ेगी आने वाले सालों में। आपने सही कहा कि आज के समय में भी जीडीपी में 31% हमारा योगदान है और निर्यात में 48% है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 45% है। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि ये तकरीबन 40% जीडीपी का बन जाएगा, एक्सपोर्ट्स भी हम 60% के करीब पहुंचेंगे। तो इन प्रयासों को ध्यान में रखकर, इस विजन को ध्यान रख करके ही हम अपनी योजनाओं को भी और बेहतर रूप से इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयासरत हैं। आने वाले समय में हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो एमएसएमईज हैं वो स्केल अप करें और कॉस्ट कॉम्पिटेटिव हों ताकि वो ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बन सकें, और उसके लिए हम उनकी प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के हों, बेहतर गुणवत्ता के हों, तभी वो ग्लोबल मार्केट्स में पहुंच पाएंगे, उसमें भी उनको हम सहायता प्रदान करेंगे। और साथ ही जो प्रोसेसेस हैं वो सस्टेनेबल हो, कम लागत के हों, कॉस्ट कॉम्पिटेटिव हो, उसकी ओर भी हमारी कुछ स्कीम्स हैं एमएसएमई चैंपियंस के तहत जिसको अब हम और आगे प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट करें।
1: आपको बहुत सारे छोटे उद्यमी या फिर मध्यम उद्यमी सुन रहे हैं या वैसे युवा भी सुन रहे हैं जो भविष्य में एमएसएमई से जुड़ना चाहते हैं, क्या संदेश देंगे उन्हें आप?
0: देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि ये क्षेत्र और आगे बढ़े, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस हैं वो ये विजन रखें कि किस प्रकार से अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे, स्केल अप करें, और जो युवा सोच रहे हैं कि अब आगे बढ़कर के भविष्य में क्या करना है वो बजाय इसके कि नौकरियां ढूंढने, बेहतर है कि अपना खुद का एंटरप्राइज स्थापित करने के लिए इनोवेशन लेकर के आएं और प्रयास करें और रोजगार प्रदान करें, बजाय इसके कि रोजगार ढूंढने, रोजगार प्रदान करें। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा युवा पीढ़ी से।
1: ये नया भारत है, नए भारत में नई संभावनाएं होती हैं और उन संभावनाओं को संभव बनाना जीवन की भी सच्चाई है और साथ ही साथ सरकार का भी दायित्व बन जाता है। सरकार ने समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए और खासकर ऐसे एमएसएमई क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए इस बिल में कई प्रावधान किए हैं, उस पर विस्तार से चर्चा की हमारे साथ भरत खेड़ा ने, और उम्मीद है कि एमएसएमई क्षेत्र आने वाले

0: वर्षों में और तरक्की करेगा। भूजी, आकाशवाणी में बात करने के लिए और विस्तार से इस अमेंडमेंट बिल पर अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद आनंद जी।
2: अभी आप सुन रहे थे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर एमएसएमई मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ आनंद श्रीवास्तव की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: चर्चा का विषय है। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम चर्चा का विषय है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। तिरंगा सिर्फ तीन रंगों में सिमटा हुआ एक परचम नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों के फख्र, खुददारी और हुब्बुल वतनी की पहचान है। जब भी तिरंगा आसमान में लहराता है, हर हिंदुस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। और जब यही तिरंगा हर घर की छत पर लहराता है, तो पूरा मुल्क एक लड़ी में बंधा हुआ नजर आता है। यौमे आजादी के मौके पर मुल्क एक बार फिर हुब्बुल वतनी के रंग में रंगने के लिए तैयार है। इसी जज्बे को घर घर पहुंचाने के लिए मरकजी हुकूमत ने 9 अगस्त से मुख्तलिफ प्रोग्रामों और इकदामात का आगाज किया है। इनमें हर घर तिरंगा मुहिम सबसे नुमाया है। एक ऐसी मुहिम जिसमें तिरंगे को महज एक कौमी अलामत से आगे बढ़ाकर हर हिंदुस्तानी के जज्बाती रिश्ते का हिस्सा बना दिया है। हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया था। इसका मकसद था कि लोग तिरंगे को अपने घरों तक लाएं और यौमे आजादी के मौके पर इसे लहराकर मुल्क के प्रति अपने एहतराम और अहद का इजहार करें। इस मुहिम के पीछे एक इंतहाई जज्बाती ख्याल कार फरमा है। अब तक हमारा कौमी परचम ज्यादातर सरकारी और इदारा जाती तकरीबात का हिस्सा रहा है। हर घर तिरंगा मुहिम ने इस रस्मी रिश्ते को एक जाती और जज्बाती रिश्ते में बदलने की कोशिश की। जब तिरंगा घर घर पहुंचा, तो ऐसा महसूस हुआ जैसे मुल्क के हर खानदान का रिश्ता कौमी फख्र से मजीद गहरा हो गया हो। ये मुहिम हुब्बुल वतनी के जज्बे को मजबूत करने के साथ साथ लोगों को हिंदुस्तानी कौमी परचम की तारीख, इसकी अहमियत और इसकी अजमत से वाकिफ कराने का भी जरिया बनी है। इस साल हर घर तिरंगा मुहिम का इनकाद खासतौर पर अहम है। ये मुहिम वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के मौके पर वक्फ की गई है। मुल्क के कौमी गीत वंदे मातरम में मादरे वतन के तई मोहब्बत, कुर्बानी और ईसार का जो जज्बा पोशीदा है, उसे इस बार हर घर तिरंगा मुहिम के साथ जोड़ा गया है। मुहिम के पांचवें एडिशन के तहत मुल्क भर में कई रंगारंग प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। इनमें तिरंगा यात्राएं, तिरंगा रैलियां, तिरंगा कॉन्सर्ट्स और वंदे मातरम की इज्तमाई गायकी खास तौर पर काबिले जिक्र हैं। गुज़श्ता 4 वर्षों में हर घर तिरंगा एक सरकारी पहल से आगे बढ़कर एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले और समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इस मुहिम को पूरे जोशो खरोश और गर्मजोशी के साथ अपनाया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्रामों में आवाम की शिरकत ने इस तहरीक को मजीद वसी और मुअसर बनाया है। आज तिरंगा सिर्फ सरकारी इमारतों या अवामी तकरीबात तक महदूद नहीं है, वो मुल्क के करोड़ों घरों तक पहुंच चुका है और हर घर में लहराता हुआ तिरंगा मुल्क के कई एहतराम

इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम दे रहा है। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत एक और मुनफरिद पहल शुरू की गई है, सूर्य पथ तिरंगा। मरकजी वजीर सकाफत और सियाहत गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुज़श्ता हफ्ते नई दिल्ली में इस पहल का ऐलान किया। सूर्यपथ तिरंगा को एक अलामती आलमी तिरंगा रैली के तौर पर पेश किया गया है। इसका रास्ता सूरज के तुलू होने की समत की पैरवी करेगा। हिंदुस्तान के मशरकी सिरे पर वाके उस हिंदुस्तानी मिशन या पोस्ट से जहां सबसे पहले सूरज तुलू होता है, कौमी परचम को बाकायदा तौर पर लहराया जाएगा। इसके बाद यह सिलसिला मशरक से मगरिब की जानिब आगे बढ़ेगा। गोया तिरंगा दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सूरज की रोशनी के साथ साथ सफर कर रहा हो। इस पहल के जरिए दुनिया भर में मौजूद हिंदुस्तानी मिशनों और बैरूनी मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी बिरादरी को भी यौम आजादी की तकरीबात से जोड़ा जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए मुल्क के अवाम से हर घर तिरंगा मुहिम में पूरे जोश व खरोश के साथ हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि तिरंगा हिंदुस्तान के फख्र की अलामत है और हर शहरी के लिए मुल्क की तामीर में अपना बेहतरीन किरदार अदा करने की मुसलसल तहरीक है। वजीर आजम ने इस बात पर भी खुशी का इजहार किया है कि इस साल की हर घर तिरंगा मुहिम वंदे मातरम के 150वें साल के नाम वक्फ है। हिंदुस्तान का कौमी परचम सिर्फ एक परचम नहीं है, ये हिंदुस्तान की आजादी की कहानी है, ये हमारे जाबाजों की कुर्बानियों की याद है, ये मुल्क के फख्र इत्तेहाद और सालमियत की अलामत है। ज़ाफ़रानी रंग हिम्मत और कुर्बानी के जज्बे का पैगाम देता है। सफेद रंग अमन और सच्चाई की अलामत है। सब्ज रंग खुशहाली और तरक्की की उम्मीद को जाहिर करता है और इन तीनों रंगों के दरमियान मौजूद अशोक चक्र हमें मुसलसल आगे बढ़ते रहने की तहरीक देता है। हिंदुस्तानी कौमी परचम जिसे हम प्यार से तिरंगा कहते हैं, अवाम के जज्बात और कौमी शऊर में एक खास मुकाम रखता है। कौमी परचम की मौजूदा शक्ल मशहूर मुजाहिद आजादी, माहिर तालीम और कई जबानों के आलिम पिंगली वेंकैया ने डिजाइन की थी। पिंगली वेंकैया की पैदाइश 2 अगस्त सन 1876 को हुई थी और उनका इंतकाल 4 जुलाई सन 1963 को हुआ। उन्होंने 1 अप्रैल सन 1921 को विजयवाड़ा में महात्मा गांधी से मुलाकात के दौरान कौमी परचम का डिजाइन पेश किया था। इसके बाद 22 जुलाई सन 1947 को दस्तूरसाज असेंबली के इजलास में हिंदुस्तान के कौमी परचम को इसकी मौजूदा शक्ल में इख्तियार किया गया। यौम आजादी और यौम जमहूरिया जैसे कौमी त्योहारों पर तिरंगे को पूरे एहतराम और वकार के साथ लहराया जाता है। आज हर घर तिरंगा सिर्फ एक मुहिम नहीं है, ये उस जज्बे का जश्न है जो हमें अलग अलग जबानों, सकाफतों और रवायात के बावजूद एक कौम के तौर पर जोड़ता है। जब किसी घर की छत पर तिरंगा लहराता है तो वहाँ सिर्फ एक परचम नहीं लहराता, वहाँ हिंदुस्तान का फख्र लहराता है। आइए इस यौम आजादी पर तिरंगे को अपने घर लाएं, इसकी अजमत को समझें और मुल्क की तामीर में अपने किरदार का अहद करें, क्योंकि तिरंगा हमारा फख्र है, तिरंगा हमारी पहचान है और तिरंगा ही हमारे मुल्क के तई हमारे एहतराम और अहद की शान है। हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा और हर हिंदुस्तानी के दिल में हिंदुस्तान के लिए अटूट मोहब्बत और फख्र।

हमारा प्यारा।

हर घर तिरंगा। अभी आपने ये खसूसी प्रोग्राम सुना, तहरीर नवीन कुमार की थी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब सुनते हैं कुछ फिल्मी नगमे।

0: आप सुन रहे थे प्रेमी नगमे, ये आकाशवाणी है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी हैं। अब सुनिए डॉक्टर खलीक अंजुम का तहरीर करदा फीचर तहरीक आजादी और उर्दू।
1: सामीन, हम आपकी खिदमत में अदबी निशस्त के तहत एक मुजाकरा लेकर हाजिर हुए हैं जिसका उन्वान है तहरीक आजादी और उर्दू। और इस मुजाकरे में जो हजरात शिरकत फरमा रहे हैं उनके आजमाए गिरामी ये हैं: डॉक्टर खलीक अंजुम, प्रोफेसर सदीकुर रहमान किदवाई, प्रोफेसर असलम परवेज और सहाफी जनाब महदूद सिद्दीकी, और निजामत के फरायज हम अंजाम दे रहे हैं कमाल जाफरी। तो आइए आज के मौजूद तहरीक आजादी और उर्दू पर गुफ्तगू के लिए सबसे पहले हम जनाब सदीकुर रहमान किदवाई साहब से गुजारिश करते हैं कि वो इस सिलसिले में रोशनी डालें।
2: जाफरी साहब, तहरीक आजादी के बारे में एक तो तसव्वुर यह है कि ये 20वीं सदी में जब गांधी जी आए और मुख्तलिफ और तहरीका की अफजा हुई तब से शुरू हुई, लेकिन दरअसल तहरीक आजादी हिंदुस्तान में तो उस वक्त से है जब से के मगरब की अलगार शुरू हुई और उसका रद्द अमल हमारे मुल्क में अरब की शक्ल में जाहिर होना शुरू हुआ। तो हम देखेंगे कि सियाज़-उद-दौला की वफात से लेकर जिस किस्म की शायरी हमारे यहां हुई और जो याददाश्तें हमें मिलती हैं, जो मखतूतात मिलते हैं, उन सब से ये जाहिर होता है कि हमारा अदीब और शायर हर जमाने में बाहोश और इस खतरे से जो बाहर से आ रहा था उससे चौकस था, उसके बारे में उसे पता था कि आइंदा क्या कुछ हो सकता है। चुनांचे उसने बहुत कुछ लिखा, यानी जुड़त जैसा शायर जो आशिकाना कलाम के लिए मशहूर है और रंगीनी बयान के लिए मशहूर है, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ रवाइयां और कतात लिख रहा था। और किसी का भी नाम लें आप, सबके यहां या तो बहुत वाज तौर पर नए किस्म के साम्राज्य के खिलाफ कुछ आवाजें उठ रही थी या मौज तहनशी के तौर पर उनकी रस्मी शायरी के अंदर भी कुछ एहतियाज की लहरें, कुछ बेतमानी के आसार सब नुमाया थे जो बहुत मेच्योर होते हैं 1857 के आसपास, जब 19वीं सदी में दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है और बादशाह बराए नाम रह जाते हैं बहादुर शाह जफर, और यहां के एडमिनिस्ट्रेशन पर अंग्रेजों का मुकम्मल कब्जा हो जाता है, यानी गालिब गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें बहादुर शाह जफर भी नहीं आजाद करा सकते। तो ये जो सूरत हाल थी इससे लोगों को एहसास हुआ कि अब हमारी गर्दन पूरी की पूरी एक दुश्मन के हाथ में आ गई है और हमें उससे निकलना है। चुनाचे इसी के साथ साथ ऐसी तहरीकात शुरू हुई जो आजादी की तहरीकात के ही सिलसिले में इस्लामी तहरीकात जिन्हें हम कह सकते हैं, जिसमें हिंदुस्तानियों को पहली बार इस बात से आगाह कराने की कोशिश की गई कि हमें तुम्हारे तौर तरीके, तुम्हारे चाल चलन और तुम्हारे रस्म रवाज, तुम्हारे अकायद, ये सब के सब अब आज की दुनिया में कुछ पुराने हो चुके हैं और अगर आज की दुनिया में तुम्हें रहना है और बड़े से बड़े दुश्मन से जो मगरिब से आ रहा है मुकाबला

हमारे यहाँ 19वीं सदी में जो सरसैयद तहरीक शुरू हुई, अब खुद सरसैयद तहरीक को कितने परेशानियों का सामना उठाना पड़ा और कितनी मुखालफतों का सामना उठाना पड़ा खुद अपने ही लोगों के हाथों। उसके बाद फिर अंग्रेजों के साथ एक सिलसिला शुरू हुआ 1903 में, जब बाकायदा बहादुर शाह आलम सानी को पेंशन खार बना के बिठा दिया गया। और उसके बाद बहादुर शाह जफर की जो शायरी, उनके जमाने वली अहदी की जो शायरी है, दीवान अव्वल जो सबसे जखीम उनका दीवान है, अगर बहादुर शाह

0: ये वो प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल थी, मौजूद थी।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने
0: रिसाले। लेकिन हमारी जनता जो है जिसका फोक लिटरेचर इतना जबरदस्त है, प्रिंटेड लिटरेचर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो अगर आप आवामी गीतों की तरफ जाएं, अगर आप कहावतों की तरफ जाएं, अगर आप नाटकों की तरफ जाएं, तो हर जमाने में आपको इतना इनकलाबी अदब मिलेगा कि जो तहरीरी शक्ल में शायद आपको उतना न मिले। तो लिहाजा मैं उर्दू तक ही अपने आप को महदूद नहीं रख सकते, बल्कि अदब का दामन तो बहुत फैला हुआ है और उसी अंदाज से उसी नुक्ते नजर से खुद 1857 पे फोक लिटरेचर जो है वो बहुत बड़ा
2: बहुत
0: है, जो कि अनपढ़ लोगों की जबान से वजूद में आया है। तो ऐसी सूरत में आप देखें, अच्छा फिर आजादी से मुराद सियासी आजादी तो है ही, उसके अलावा जितनी दबी कुचली कौमें और सेक्शन हमारे यहां है, मतलब औरतों की आजादी का किस्सा, दलितों की आजादी का किस्सा, देहात में एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ प्रेमचंद के ने जो कुछ लिखा, अगर इसके लातादाद ऐसे एवेन्यूज हैं, ऐसी जगह हैं कि जहां आजादी जिनकी तरफ पहले कभी ख्याल गया ही नहीं था लोगों का, वो 20वीं सदी में और उसके बाद आया। तो लिहाजा आजादी अदब ने दरवाजे खोल दिए इजहार
2: और वो ये कि जिस जमाने में अखबारों की ज्यादा अहमियत नहीं थी और लोगों तक नहीं पहुंच रहे थे और बात पहुंचानी थी, तो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर के दीवारों पर 1857 के बारे में हाथ से लिखे हुए इश्तहार चिपकाए जाते थे और बाद मस्जिदों में पर चिपकाए जाते थे, ऐसी जगह पर जहां लोग जाकर पढ़ सके। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तानी इससे वाकिफ हो गए थे कि अगर आपको अपनी बात लोगों को पहुंचानी है तो तहरीर तौर पर कुछ इसकी पहले अखबार के इश्तहार निकाले, फिर उसके बाद अखबार निकले बाकायदा, मगर लोगों तक पहुंचने के तरीके जो थे वो हो गए। फिर इसके बाद देखिए आप कि 20वीं सदी में बेशुमार किताबें नसर में भी और नजर में भी बेशुमार किताबें,
3: देखिए इकबाल हों या हम जिगर तक आ सकते हैं, जिगर की गिरफ्तारी इकबाल की करते हैं इसलिए कि मुशारे में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ
2: गालिब को उर्दू खतूत रह गया था। 1857 आजादी के मामले में
3: काम भी
2: गालिब के खतूत और गालिब की दस्तमूज किताब है, बड़ी अहम किताब है। यानी आप ये देखें कि 1857 की तारीख अगर आप लिखें तो गालिब के खतूत को नहीं आप इग्नोर कर सकते, और इसी तरीके से आप गालिब के जो दस्तमू है उसे इग्नोर नहीं कर सकते। वहां सवाल इल्जाम लगा लेगा तो हम गालिब पर बहुत से इल्जाम लगा सकते हैं।
3: सरदार के शेर पे हम इस मुजाकरे को खत्म करना चाहते हैं कि वाकई हमारी तहरीक आजादी और उर्दू का बहुत बड़ा हाथ रहा चुके, उर्दू गंगा जमनी तहजीब की नुमाइंदगी करती है और आज भी इस कदर अवामी जबान है कि इसका मुशायरों के जरिया
2: जी बिल्कुल बिल्कुल
3: अवाम में बहुत ज्यादा
2: बिल्कुल
3: इनकलाबी कैफियत पैदा हो जाती है, और हम आजादी और उर्दू की हिमायत में दाग का वो शेर पढ़ सकते हैं जो जबान आम है कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दार, सारे जहां में धूम हमारी जबां की। सामीन हम आपको बताएं कि आज के मौजू तहरीक आजादी उर्दू पर जो दानिश्वर हिस्सा ले रहे थे उनके असमा गिरामी हैं डॉक्टर खलील अंजुम, प्रोफेसर सदीकुर रहमान खिलवाई, प्रोफेसर असलम परवेज और मशहूर सहाफी जनाब मौजूद सिद्दीकी, और निजामत के फरायज हम अंजाम दे रहे थे कमाल जाफरी। इसी के साथ ये मुजाकरा इख्तिताम पजीर होता है।
4: अभी आप सुन रहे थे फीचर उनवान था तहरीके आजादी और उर्दू, शुरुआत थे डॉक्टर खलीफ अंजुम, प्रोफेसर सिद्दीकुर रहमान कदवाई, डॉक्टर असलम परवेज और कमाल जाफरी। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं।

0: یا کاشفانی که اردو سرویس اب خبری نشو کی زنگی
1: आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। बलूचिस्तान के सुराब जिले में पाकिस्तानी फजाई फौज के हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 30 से ज्यादा आम शहरी मारे गए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में एहतजाज की हिमायत में अवामी एक्शन कमेटी ने आज दुनिया भर में रहने वाले कश्मीरियों से मुजाहरे करने की अपील की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुरमुज पर अमरीका का पूरा कंट्रोल है। क्रिकेट में बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान टी20 सीरीज होने की तस्दीक की है। और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मर्दों का सिंगल्स फाइनल दो अमरीकी खिलाड़ियों ब्रेंडन नाकाशिमा और बेन शेल्टन के दरमियान खेला जाएगा, जबकि खवातीन सिंगल्स के फाइनल में अमरीका की कोको गॉफ और पोलैंड की इगा श्वातेक आमने सामने होंगी। अब खबरें तफसील से। बलूचिस्तान के सुराब जिले में पाकिस्तानी फजाई फौज के हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 30 से ज्यादा आम शहरी मारे गए हैं, दर्जनों लोग जख्मी भी हुए हैं। एक बयान में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ग्रुप ने दावा किया है कि पाकिस्तानी फौज और फजाइया ने सुराब के गुदर महल्ले और आसपास के सिविलियन इलाकों में शदीद बमबारी और फायरिंग की, जिससे जान माल का काफी नुकसान हुआ। मस्कुरा तंजीम ने इल्जाम लगाया है कि मकामी लोगों और हुकाम को बचाव और राहत कार्रवाई अंजाम देने से रोका गया। उसने दावा किया है कि अस्पतालों को फौजी एहलकारों ने घेर लिया है और डॉक्टरों पर दबाव डाला गया। तंजीम ने कहा है कि कुछ लोगों की मौत बरवक्त इलाज न होने की वजह से हुई। इलाके में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ग्रुप ने बैन अल-अक़वामी बरादरी से अपील की है कि वो इस वाकये का नोटिस ले और बलूच लोगों की जिंदगी और बुनियादी हकूक के तहफ्फुज के लिए मुदाखलत करे। गुज़श्ता दहाई के दौरान पाकिस्तान की फौज ने कबायली इलाकों में बार बार फजाई हमले किए हैं और तोपखाने से गोलाबारी की है, जिससे आम शहरी मारे गए। इंसानी हकूक के आलमबरदार ग्रुपों ने अंधाधुंध तरीके से किए गए इन हमलों की नुक्ताचीनी की है, जिनमें बीसियों लोग हलाक हुए और हजारों लोग बेघर होकर रह गए हैं। हालिया दिनों में पाकिस्तान ने अफगान इलाकों को भी निशाना बनाया है और उसके फजाई हमलों में कई बेकसूर अफगान अफराद मारे गए, कई मकान तहस नहस हो गए और सैकड़ों कुनबे बेघर हुए। खुद अपनी आबादी के खिलाफ फौजी ताकत का इस्तेमाल पाकिस्तान की तारीख रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में सरकार की शह पर फैलाई जाने वाली दहशतगर्दी को दुनिया के सामने लाने के लिए अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर में रहने वाले कश्मीरियों से आज मुजाहिरे करने की अपील की है। इस तरह पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में जारी एहतजाज बैन अल-अक़वामी शक्ल इख्तियार करने जा रहा है। मस्कुरा कमेटी ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो रैलियां मुनाकिद करें और बकौल उसके खत्ते में पाकिस्तानी सरकार की जानिब से ताकत के इस्तेमाल पर दुनिया की तवज्जो मबजूल कराएं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में सूरत हाल अब भी कशीदा है। वहां मुजाहिरीन पाकिस्तानी फोर्सेज के जेर साये निशाना बनाकर की गई हलाकतों और बेकसूर अफराद को लापता किए जाने और सप्लाई निजाम में रुकावटों के तनाजुर में कराए गए हालिया मुतनाज़े इंतखाबात पर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरकर्दा लीडर सरदार शाबिर ने दावा किया है कि तकरीबन 100 अफराद मारे जा चुके हैं। खत्ते में पिछले दो महीने से ज्यादा अरसे से एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी है, जिनमें लोग मुख्तलिफ मुतालबात करते रहे हैं। लाइबेरिया की वजीर खारजा सारा बेसलोव नायंती आज सुबह भारत के दो रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गईं। वो आज कौमी राजधानी के हैदराबाद हाउस में वजीर खारजा डॉ अजय शंकर से मुलाकात करेंगी। वजारत खारजा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह दौरा भारत और लाइबेरिया के दरमियान गर्मजोशाना और करीबी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने का मौका फराहम करता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुरमुज पर अमरीका का पूरा कंट्रोल है। साथ ही उन्होंने ये इंदिया भी दिया है कि अमरीका कलीदी अहमियत

0: करने की अपील की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आदनाई हुरमुज पर अमरीका का पूरा कंट्रोल है। क्रिकेट में बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान टी20 सीरीज होने की तस्दीक की है। इसके साथ ही यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात जारी हैं। पेशा खिदमत है, प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा।

यशोदास हेमलता और बंसी सेन गुप्ता की आवाजों में यह नगमा था दुल्हन वही जो पिया मन भाई फिल्म से। अब सुनिए दुनिया फिल्म का नगमा, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की हैं।

हाथ में कैसे ये खल्ला ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह गोरी के हाथ में गोरी के हाथ में जैसे ये चल्ला जैसे ये चल्ला ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह

ना चूने न दूंगी।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को आपने सुना फिल्म थी मेला। अब सुनिए किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर को, फिल्म है जुगनू।

0: वाली उम्र है।
1: छोड़ो बहाना।
0: ना ना ना।
2: प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में फिल्म है क्रांति।

0: आप सुन रहे हैं फिल्मी दो गानों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। हमारा ये प्रोग्राम अभी जारी रहेगा। वक्त हुआ है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है भारतेंदु हरीशचंद।
1: 19वीं सदी में अजीम दानिश्वरों की एक ऐसी ताबनाक कौशिकुरा नमोदार हुई जिसने अपने अपने रंग से मुल्क और कौम की खिदमत की। इसी तरह की एक तारीखी शख्सियत का नाम भारतेंदु हरीशचंद्र है जिन्होंने अदब के रास्ते पूरी हिंदुस्तानी कौम को एक लड़ी में पिरोने का नुमाया कारनामा अंजाम दिया। वो एक अजीम समाजी मसले थे और अवामुन्नास के जहनी उफुक को कुशादा करने के लिए उम्र भर कोशा रहे। उनके हम असरों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन और मधुसूदन दत्त वगैरह शामिल थे। सेठ अमीचंद के खानदान से ताल्लुक रखने वाले भारतेंदु का जन्म 1850 में बनारस के अग्रवाल खानदान में हुआ और उन्होंने बनारस में ही वफात पाई। उस दौर में बनारस की बड़ी अहमियत थी। ये मशहूर तीर्थ स्थान था और मुख्तलिफ मकामात के कलाकार यहाँ आते थे। भारतेंदु बहुत ज्यादा ज़हीन तबा और ज़ुद्दहुस्न इंसान थे। उन्होंने

अगरचे सिर्फ 35 बरस की उम्र पाई, मगर इस अरसे में उन्होंने हिंदी अदब की जिस तरह खिदमत की, उसकी वजह से उन्हें जदीद हिंदी के मेमार का दर्जा हासिल है। तुलसीदास के बाद हिंदी अदब के बनाने संवारने में उन्हीं का नाम लिया जाता है। उन्होंने जबान को सादा बनाने और सादगी के सहारे उसे मकबूल आम बनाने में नुमाया काम किया। बिलुमूम उन्हें नाटककार की हैसियत से शोहरत हासिल हुई, लेकिन हिंदी सहाफत में भी उनका अहम मकाम है। उन्होंने बहुत से सफरनामे, सवा नहीं खाके और तारीखी नौयत के मजामीन लिखे। उन्होंने 3000 से ज्यादा भक्ति गीत लिखे। वो पहले हिंदुस्तानी शायर थे जिन्होंने खड़ी बोली का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ब्रज भाषा मान पड़ गई। भारतेंदु ने तकरीबन 18 नाटक लिखे। इनमें से बहुत से नाटक तवाजाद हैं और बहुत से वो हैं जो उन्होंने संस्कृत, बंगाली और अंग्रेजी से लिए हैं। उन्होंने विलियम शेक्सपियर के मशहूर ड्रामे मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी तर्जुमा दुर्लभ मंदु के नाम से किया। उन्होंने पोर्शिया का हिंदुस्तानी नाम पोर्शी रखा, शाइलॉक का हिंदुस्तानी नाम शेला कुसु रखा और बसानियों का नाम वसंत रखा। संस्कृत या प्राकृत के चंद ड्रामों का भी उन्होंने हिंदी तर्जुमा किया। इनमें सत्यहरीश चंद्र, चंद्रावली, मुद्रा राक्षस, रत्नावली और धनंजय विजय वगैरह खसूसियत से काबिले जिक्र हैं। बनारस में उस दौर की जिंदगी बड़ी बेफिक्री की थी। बनारस में बसने वाले ये नहीं जानते थे कि कुछ फासले पर कलकत्ता में क्या वाकयात हो रहे हैं। उसी दौर में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की बुनियाद डाली। उन इनकलाब आफरी ख्यालात ने हिंदुस्तान की माशरती जिंदगी बदल कर रख दी। सन 1848 में लॉर्ड डलहौजी की आमद पर एक दूसरा ही दौर शुरू हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब का इलाहा कर लिया था और अंग्रेजों के कदम मजबूती से जमने लगे थे। कलकत्ता से आगरा तक टेलीग्राफ लाइन बिछा दी गई, पहली रेलवे लाइन बिछाई जाने लगी थी। कलकत्ता से दिल्ली तक सड़क बनाने की इब्तदा हो चुकी थी। दरियाई रास्तों से नकलो हमल शुरू की गई थी। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में यूनिवर्सिटियों का कयाम भी अमल में आने वाला था। हिंदू बेवा औरतों की दोबारा शादी का कानून बन चुका था। लोग मगरबी तर्ज जिंदगी की तरफ आने लगे थे। हरीशचंद्र ने इन तमाम तब्दीलियों को भाप लिया था, चुनाचे उन्होंने लड़कियों की तालीम के हक में आवाज उठाई। उस दौर के लिहाज से ये एक इनकलाबी कदम था। उन्होंने अंग्रेजी तालीम को हासिल करना जरूरी समझा। उन्होंने सितारा हिंद राजा शिव प्रसाद और नंद किशोर से अंग्रेजी पढ़ी। उन्होंने उर्दू और फारसी की तालीम भी हासिल की। वो एक अच्छे नसर निगार थे। उनके उर्दू मजामीन 55 पैगम्बर और खुशी मयारी नसर के नमूने हैं। उन्होंने उर्दू में कानून ताजीरात शोहर लिखा। ये एक तंजिया तहरीर है। इसके बारे में लखनऊ से शाये होने वाले हिंदुस्तानी अखबार ने लिखा कि इस जहीन तबा मुसन्निफ ने इंतहाई चाबुक दस्ती और इजहार बयान पर कुदरत के साथ उन औरतों के किरदार को बयान किया है जिन्होंने अपने अपने शोहर के बारे में शुबहात होते हैं। ये मजमून इंतहाई दिलचस्प है। अब हम बाबू हरीशचंद्र से दरख्वास्त करेंगे कि वो औरतों के लिए भी एक ऐसा ही जाब्ता तहरीर करें। बाबू हरीशचंद्र ने हिंदी में बहुत कुछ लिखा है। हमारी ख्वाहिश है कि उनकी हिंदी तसानीफ का उर्दू में तर्जुमा हो। उर्दू में उनके नाटकों को तर्जुमा करके उर्दू ड्रामे की दुनिया में एक कमी को दूर किया जा सकता है। उर्दू में नील देवी और सत्य हरीशचंद्र जैसे ड्रामों की कमी है। हरीशचंद्र बहुत सी रिवायात से जुड़े होने के बावजूद खुला जहन रखते थे। आज की इस्लाम में वो सेक्युलर मिजाज के इंसान थे। वो तमाम मजाहिब की वहदत और एहतराम में यकीन रखते थे। उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ तबकों को जोड़ने की कोशिश की। आखिरी दौर की उनकी तहरीरों से पता चलता है कि वो तमाम हिंदुस्तानियों को यही सबक देते थे कि वो भले ही हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों या ईसाई, लेकिन पहले वो खुद हिंदुस्तानी कहें और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा लें। इसी तरह वो मजहब को सियासत से अलग मानते थे।
हरीशचंद्र ने हिंदी ड्रामों में अपने दौर की सामाजिक बुराइयों को बेनकाब किया और बहुत से इस्लाही पहलुओं पर जोर दिया। मसलन बरतानवी हुक्मरानों के जरिए मुल्की वसाइल का इस्तेहसाल, रजवाड़ों की बदइंतजामी और तानाशाही, उन्होंने अपने हम असरों को अपने ख्याल से मुतासर किया। चुनाचे प्रताप नारायण मिश्र

0: बद्रीनाथ चौधरी और बालकृष्ण भट्ट ने भी असरी मसाइल पर बहुत कुछ लिखा। इस तरह हरीशचंद्र महज एक इनकलाबी शख्सियत ही न थे, बल्कि उन्होंने दानिश्वरों का एक ऐसा ताइफा भी तैयार किया जिसने मुल्क कौम की दिलोजान से खिदमत की। उनकी ज़ात गिरामी हमारे लिए मिसाले राह है।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम तारीख साज। आज का मौजू था भारतेंदु हरीश चंद्र। तहरीर जनाब आदिल सिद्दीकी की थी और रावी थे इकबाल वारसी। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मेरी सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम के तहत अब सुनिए कुछ और फिल्मी नगमे।

के और तुलसी कुमार की आवाजों में ये नगमा अभी आपने सुना, फिल्म थी रेडी। अब सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक को, फिल्म का नाम है चमत्कार।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में ये नगमा था चमत्कार फिल्म से। इसके साथ ही आज का मिले सर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज पर दस्तयाब है। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप हमें सुन सकते हैं। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
1: अब आप फैसल खान से आलमी खबरें सुनिए। बलूचिस्तान के सुराब जिले में पाकिस्तानी फिजाई फौज के हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 30 से ज्यादा आम शहरी मारे गए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में एहतजाज की

हिमायत में अवामी एक्शन कमेटी ने आज दुनियाभर में रहने वाले कश्मीरियों से मुजाहरे करने की अपील की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब नए हुरमुज पर अमरीका का पूरा कंट्रोल है। क्रिकेट में बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान टी20 सीरीज होने की तस्दीक की है। और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मर्दों का सिंगल्स फाइनल दो अमरीकी खिलाड़ियों ब्रैंडन नाकाशिमा और बेन शेल्टन के दरमियान खेला जाएगा, जबकि खातिन सिंगल्स के फाइनल में अमरीका की कोको गॉफ और पोलैंड की इगा स्वीटेक आमने सामने होंगी। अब खबरें तफसील से। बलूचिस्तान के सोराब जिले में पाकिस्तानी फिजाई फौज के हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 30 से ज्यादा आम शहरी मारे गए हैं, दर्जनों लोग जख्मी भी हुए हैं। एक बयान में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ग्रुप ने दावा किया है कि पाकिस्तानी फौज और फिजाइया ने सोराब के गुदार मोहल्ले और आसपास के सिविलियन इलाकों में शदीद बमबारी और फायरिंग की, जिससे जानोमाल का काफी नुकसान हुआ। मुस्कुरा तंजीम ने इल्जाम लगाया कि मकामी लोगों और हुकाम को बचाव और राहत कार्रवाई अंजाम देने से रोका गया। उसने दावा किया कि अस्पतालों को फौजी अहलकारों ने घेर लिया है और डॉक्टरों पर दबाव डाला गया। तंजीम ने कहा है कि कुछ लोगों की मौत बरवक्त इलाज न होने की वजह से हुई। इलाके में इंटरनेट खिदमत मुअत्तल कर दी गई है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ग्रुप ने बैन अल-अक़वामी बिरादरी से अपील की है कि वह इस वाकये का नोटिस ले और बलूच लोगों की जिंदगी और बुनियादी हकूक के तहफ्फुज़ के लिए मुदाखलत करे। गुज़श्ता दहाई के दौरान पाकिस्तान की फौज ने कबायली इलाकों में बार बार फिजाई हमले किए हैं और तोपखाने से गोलाबारी की है, जिससे आम शहरी मारे गए हैं। इंसानी हकूक के अलमबरदार ग्रुपों ने अंधाधुंध तरीके से किए गए इन हमलों की नुक्ताचीनी की है, जिनमें बीसियों लोग हलाक हुए और हजारों लोग बेघर होकर रह गए हैं। हालिया दिनों में पाकिस्तान ने अफगान इलाकों को भी निशाना बनाया और उसके फिजाई हमलों में कई बेकसूर अफगान मारे गए हैं। कई मकान तहस नहस हो गए हैं और सैकड़ों कुंबे बेघर हुए। खुद अपनी आबादी के खिलाफ फौजी ताकत का इस्तेमाल पाकिस्तान की तारीख रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में सरकार की शह पर फैलाई जाने वाली दहशतगर्दी को दुनिया के सामने लाने के लिए अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर में रहने वाले कश्मीरियों से आज मुजाहरे करने की अपील की है। इस तरह पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में जारी एहतजाज बैन अल-अक़वामी शक्ल इख्तियार करने जा रहा है। मुस्कुरा कमेटी ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वह रैलियां मुनाकिद करें और बकौल उसके खित्ते में पाकिस्तानी सरकार की जानिब से ताकत के इस्तेमाल पर दुनिया की तवज्जो मबजूल कराए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में सूरत हाल अब भी कशीदा है। वहां मुजाहरीन पाकिस्तानी फोर्सेज के जेर साए निशाना बनाकर की गई हिलाकतों और बेकसूर अफराद को लापता किए जाने और सप्लाई निजाम में रुकावटों के तनाजुर में कराए गए हालिया मुतनाजे इंतखाबात पर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरकर्दा लीडर सरदार शबीर ने दावा किया है कि तकरीबन 100 अफराद मारे जा चुके हैं। खत्ते में पिछले दो महीने से ज्यादा अरसे से एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी है, जिनमें लोग मुख्तलिफ मुतालबात कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब नए हुरमुज पर अमरीका का पूरा कंट्रोल है। साथ ही उन्होंने इंडिया भी दिया कि अमरीका कलीदी अहमियत की हामिल इस आबी गुजरगाह पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखना चाहता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान अमरीकी कार्रवाई के तनाजुर में मुअसर जवाबी कार्रवाई करने की अपनी सलाहियत खो चुका है। उन्होंने इस सिलसिले में ईरान की फौजी और सियासी कुव्वत कमजोर पड़ जाने का हवाला दिया। सदर ट्रंप ने यह दावा भी किया कि ईरान को शदीद इक्तिसादी बहरान का सामना है। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान अब इलाकाई असर रसूख का इस्तेमाल नहीं कर सकता जैसा कि वो पहले किया करता था। अलबत्ता ईरान की तरफ से इस पर कोई फौरी रद्दअमल सामने नहीं आया है। अमरीका में फौज का एक अपाची हेलीकॉप्टर मरकजी टेक्सास में गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में हेलीकॉप्टर में सवार दोनों अफराद की मौत हो गई और एक जंगलाती इलाके में आग भड़क उठी, जिसके बाद कई मकानात को खाली कराया गया। फोर्ट हुड के जराइम की तहकीकात से मुतालिक डिवीजन इस हादसे की जांच कर रही है। फोर्ट हुड के करीब हुकाम ने AH-64 अपाची हेलीकॉप्टर के गिरकर तबाह होने की इत्तला दी है। यह खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओमान ने इसकी तस्दीक की।

0: एक उसके साहिल से दूर मौजूद एक तेल टैंकर से तेल का रिसाव उसके साहिल तक पहुंच गया है। 899 फीट के टैंकर कैरोलिना बेजिंगी में रवां साल जून में उस वक्त एक धमाके की इत्तला मिली थी जब तकरीबन 1 मिलियन बैरल रूसी खाम तेल ले जा रहा था। किसी ने भी अब तक उस वाकई की जिम्मेदारी नहीं ली है और धमाके की वजह भी अब तक मालूम नहीं हो सका है। ओमान की माहौलियात से मुतालिक अथॉरिटी का कहना है कि तेल के रिसाव से होने वाली आलूदगी का असर ओमान के रास मदरका के साहिल तक पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यूक्रेन की जानिब से रूस के नोवोरोसिक बंदरगाह पर किए गए बड़े ड्रोन और मिसाइल हमले में अनाज बरामद करने वाले दो बड़े टर्मिनलों को भारी नुकसान पहुंचा है और मजकूर हमले में बहरे अस्वद के साहिल पर वाकई रूस के आखिरी बड़े बहरी अड्डे को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि कीव ने रूसी अड्डे को निशाना बनाने के लिए एक मुनफरिद ऑपरेशन के तहत रॉकेट, जेट और बहरी ड्रोन दागे। हालांकि उन्होंने अनाज से मुतालिक टर्मिनलों को निशाना बनाए जाने के ताल्लुक से कुछ नहीं कहा। लाइबेरिया की वज़ीर ख़ारिजा सारा बेसोलो न्यांगती आज सुबह भारत के दो रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। वह आज कौमी राजधानी के हैदराबाद हाउस में वज़ीर ख़ारिजा डॉ जयशंकर से मुलाकात करेंगी। वज़ीर ख़ारिजा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह दौरा भारत और लाइबेरिया के दरमियान करीबी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने का मौका फराहम करता है। आलमी सेहत तंजीम WHO ने कहा है कि अवामी जमहूरी कांगो के में इबोला का फैलाव काबू से बाहर होता जा रहा है और इस बात का कभी इम्कान है कि ये अब तक का सबसे जानलेवा फैलाव साबित हो। WHO के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि अपनी मौजूदा रफ्तार के साथ ये फैलाव मगरबी अफ्रीका में 2014 से 2016 तक होने वाले इबोला के फैलाव को पीछे छोड़ देगा। पुंछ और रामबन अजला ने वंदे मातरम मुहिम की ऑल इंडिया सतह पर दो सरकर्दा पोजीशन हासिल की है जो जम्मू कश्मीर के लिए एक अहम लम्हा है। इस हुसूलियाबी की बड़े पैमाने पर सताइश की जा रही है और पुंछ और रामबन के लिए भी फख्र का एक लम्हा है जिससे दोनों अजला के हुब्बुल वतनी और इत्तेहाद के मजबूत जज्बे की अक्कासी होती है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाली खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने के तनाजुर में ओडिशा और गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश और कहीं कहीं इंतहाई तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में भी कल तक मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। क्रिकेट में BCCI और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक की है कि अफगानिस्तान भारत के साथ 3 T20 मैचों की सीरीज की मेजबानी करेगा। यह सीरीज अगले महीने की 13 से 17 तारीख तक होगी। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मर्दों का सिंगल्स फाइनल दो अमरीकी खिलाड़ियों ब्रेंडन नकाशिमा और बेन शेल्टन के दरमियान खेला जाएगा। मॉन्टेरियल में खेले गए सेमीफाइनल में नाकाशिमा ने स्पेन के राफेल जोडार को 7-6 और 6-4 से हराया जबकि मौजूदा चैंपियन बेन शेल्टन ने अमेरिका के ही लर्नन टीएन को 6-2 और 6-3 से शिकस्त दी। इधर खवातीन सिंगल्स के फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ और पोलैंड की ईगा स्वीटेक आमने सामने होंगी। बलूचिस्तान के सोराब जिले में पाकिस्तानी फिजाई फौज के हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 30 से ज्यादा आम शहरी मारे गए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में एहतजाज की हिमायत में अवामी एक्शन कमेटी ने आज दुनिया भर में रहने वाले कश्मीरियों से मुजाहरे करने की अपील की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अबनाए हुरमुज पर अमरीका का पूरा कंट्रोल है। क्रिकेट में BCCI ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान T20 सीरीज होने की तस्दीक की है। और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मर्दों का सिंगल्स फाइनल दो अमरीकी खिलाड़ियों ब्रेंडन नाकाशिमा और बेन शेल्टन के दरमियान खेला जाएगा जबकि खवातीन सिंगल्स के फाइनल में अमरीका की कोको गॉफ और पोलैंड की ईगा स्वीटेक आमने सामने होंगी। इसके साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस।

निकली कहानी को पर्दे पर उकारा निर्देशक भप्पी सोनी ने। धर्मेंद्र की सादगी, मैचो सादगी और मुमताज की मासूमियत ने उसमें रंग भरे, साथ ही साथ पंचमदा के संगीत ने उसमें रूह फूंक दी। तो भाई इतिहास तो बनना ही था। तो लीजिए चलते हैं इसी सफर के अगले पड़ाव पर।

बहुत खूबसूरत गीत किशोर कुमार की आवाज में भी आपने सुना फिल्म झील के उस पार से, जिसको निर्देशित किया भप्पी सोनी ने और इस फिल्म को लिखा जाने माने लेखक गुलशन नंदा साहब ने। और उनकी खासियत होती थी उनके उपन्यासों की कि वो ड्रामा, रोमांस और सस्पेंस का एकदम बेहतरीन संतुलन

होता था उनके उपन्यास में, और उन्हीं के एक उपन्यास झील के उस पार पर आधारित है ये फिल्म। अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करें तो समीर यानी कि हमारे ही मैन धर्मेंद्र जी को, एक जो कि एक पेंटर हैं, बहुत ही रईस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उसके वारिस हैं, उनको झील के एक पार रहने वाली एक नेत्रहीन गांव की लड़की नीलू यानी कि मुमताज से प्यार हो जाता है। लेकिन नीलू देख नहीं सकती है, लेकिन उसकी सादगी और आवाज समीर का दिल जीत लेती है। पर क्या कहानी इतनी आसान थी? जी नहीं भाई, गुलशन नंदा जी का की लिखी हुई कहानी है, तो थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा सा सस्पेंस तो होना लाजमी है। बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि इसमें शामिल थे जमींदारी के ठाट बाट, हवेली के षड्यंत्र और आंखों की रोशनी का इंतजार करती लड़की और फिल्म के खतरनाक विलन्स, जिन्हें पर्दे पर जीवंत किया था प्राण साहब और प्रेम चोपड़ा जैसे शानदार विलन्स ने।

जी दोस्तों, फिल्म झील के उस पार हमारे आज के कार्यक्रम एक ही फिल्म में लेकर आए हैं हम। और आज हम लेकर आए हैं मतलब अगर हम बात करें 1970 के दशक की बात, तो उस वक्त में धर्मेंद्र और मुमताज की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर गारंटेड हिट मानी जाती थी। जी हाँ, चाहे फिल्म लोफर हो, राजा जानी हो, या फिर हो मेरे हमदम मेरे दोस्त, या फिर झील के उस पार। और इन फिल्मों ने बिल्कुल ये साबित कर दिया कि धर्मेंद्र जैसा हैंडसम रफ टफ अंदाज

वाला जो मुंडा है वो मुमताज की चुलबुली अदाओं के साथ मिलके पर्दे पर एक अलग सा चार्म जगा देता है। और सेट पर उन दोनों की जो बॉन्डिंग होती थी वो भी इतनी मजेदार होती थी कि जो शूटिंग होती थी उसमें बिल्कुल भी किसी को नहीं लगता था कि भाई बहुत बोझिल काम है या बहुत मुश्किल है। लेकिन हम बात करेंगे इस फिल्म में मुमताज के किरदार नीलू के बारे में। नीलू जो कि एक ब्लाइंड लड़की का किरदार उन्होंने निभाया था, और इस किरदार को निभाने में सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि आप बिना आंख बंद किए अपनी आंखों की जो पुतलियां हैं उनको एक जगह पर स्टेबल रखें और एक जो ब्लाइंड व्यक्ति है उसकी तरह से एक्ट करें। बहुत मुश्किल काम था। और जब मुमताज को ये रोल ऑफर हुआ तो उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की, घंटों वो आईने के सामने इस चीज की प्रैक्टिस किया करती थी और उन्होंने अपनी आंखों की हर मूवमेंट को इस तरह से कंट्रोल किया कि जब वो शूटिंग पर पहुंची तो शूटिंग के दौरान सेट पर जो भी लोग मौजूद होते थे वो दंग रह गए कि भाई क्या खूब एक्टिंग की है मुमताज ने, जिन्हें उस वक्त लोग उतना ज्यादा एक्टिंग अच्छी एक्टिंग के लिए तो नहीं बोला करते थे, साइड कैरेक्टर के लिए माना करते थे। लेकिन जो आलोचक थे वो भी उनकी इस अदाकारी उनकी इस मासूमियत को देखकर हैरान रहे और उन सब ने भी उनकी बहुत तारीफ की। तो लीजिए सुनते हैं इसी फिल्म से एक और खूबसूरत सा गीत लता जी की आवाज में।

जी दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत गीत, और इस गीत को जो बनाया पंचम दाने। जब ये गीत रिकॉर्ड हो रहा था तो पंचम दाने इसमें अपना पारंपरिक कैबरे का म्यूजिक होता है वो तो लिया ही, उसके साथ साथ ढोलक फोक म्यूजिक का ऐसा फ्यूजन तैयार किया कि ये गाना क्लबों से लेकर शादियों तक हर जगह बजने लगा। और जब भी ये गीत बजता तो हर कोई झूमने लगता। ऊपर से लता

जी की आवाज और पंचम दा ने जो इसमें म्यूजिक डाला, भाई इस चीज ने तो इस गीत को ब्लॉकबस्टर हिट बना दिया वाकई में। लेकिन हम आपको बताएं कि जिस वक्त पंचम दा इस फिल्म के लिए म्यूजिक तैयार कर रहे थे, उस वक्त वो काफी ज्यादा ऊंचाइयों पर थे, मतलब कह सकते हैं कि अपने करियर के टॉप पर थे, जहां पर वो हर रोज नए नए जो प्रयोग हैं वो किया करते थे। और इस फिल्म में उन्होंने इस फिल्म की कहानी के हिसाब से संगीत को रचा। जी हाँ, वही यही वजह थी कि फिल्म में जब भी पर्दे पर नीलू यानी कि मुमताज की एंट्री होती थी तो उनके लिए पंचम दा ने एक खास तरह की बांसुरी की धुन रखी थी, जो कि उनके किरदार की जो मासूमियत थी उसको दिखाया करती थी। यानी कि पंचम दा ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इस फिल्म में, लेकिन जो भी किए वो सभी एकदम सुपर डुपर हिट रहे।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं। सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह के साथ हमारे साथ जुड़े हैं पद्मा नगर टॉकेज नेपानगर मध्य प्रदेश से। मेरठ से जुड़े हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन के साथ पलारी छत्तीसगढ़ से। भूषण खेरा जी हमारे साथ जुड़े हैं फजल का पंजाब से। विशाल, विशु, लाडी खेरा, शालिनी, तिवांशी और वानी खेरा के साथ। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, निमित दिशानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरगांव गुजरात से अजित भावसर, प्रमिला भावसर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने हमें जानकारी दी है। संदीप मक्कर, ज्योति, मन्नत, भारत हमारे साथ जुड़े हैं। कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गुरैया, जालंधर पंजाब से। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगला जो संदेश है उसको हमारे तक पहुंचाने वाले हैं गांव नथाना पंजाब से अरजिंदर सिंह चिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, पहाड़गंज, मुल्तानी ढांडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये संदेश हम तक भेजा है सलार पहलगांव कश्मीर से फैजादा मिराजुद्दीन ने, नजामुद्दीन कैसर जी ने हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने संदेश भेजा है। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने भी हम तक बहुत ही खूबसूरत जो जानकारी है वो हम तक पहुंचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजीत जी ने एक और हम तक संदेश पहुंचाया जिसमें उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी है और बहुत शुक्रिया आप सभी का खूबसूरत जानकारी के लिए।

नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानका निर्मला विशाल नवानका जी हमारे साथ जुड़े हैं। इंदिरा नगर भवरपुर से चंपा देवांगन राधेश्याम देवांगन जुड़े हैं हमारे साथ और गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो रोजी पल्स और विलिस डिकेस्ट्रो हमारे साथ जुड़े हैं। हरजिंदर सिंह भाटिया जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुदर्शन मुखी अनिता सिमरन मुखी जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से। श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख डॉक्टर प्रशांत संचित प्रथमेश सरवद प्रणाली सानवी हर्षदा हमारे साथ जुड़े हैं मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से। और ये अगला संदेश हम तक आया है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा निखिल प्रिंस यशस्वी वर्मा का। डीबी राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं नेहरू विहार दिल्ली से। हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल सोनू तमन्ना भाटिया हमारे साथ जुड़े हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर से। संजय डिंगिया नमन अपारा हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश बागपत से। मुकेश बाटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया है कनेरा मोहल्ला पटियाला से। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से हमारे साथ जुड़े हैं शालीमार बाग से। अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं स्वर्ण सिंह गिल दलजीत राजदीप गुरनूर गुरलाल अविराज जुड़े हैं गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से। देवशंकर तामुरी अजय देव तुषार देव डॉली बेबी पूजा राधिका प्रभा देवी और पोता मास्टर अल कबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बब्रीश पवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने भी बहुत अच्छी जो जानकारी है वो हम तक साझा की है। अगला संदेश हम तक आया है पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी का। और दोस्तों जो अगला संदेश हम तक आया है उसको पहुंचाने वाले हैं लाल गिरी जी और इनके साथ हैं हिमलता हिना हर्षित खुशी गोस्वामी जी रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसाक खतीजा बेगम मोहम्मद अशफाक आफरीन कौसर मोहम्मद अल्ताफ नीलोफर फातिमा जी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये थे वो संदेश जिनके जरिए हमारे सभी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए थे। और दोस्तों आप से मैं यही कहूंगी कि अब मुझे इजाजत चाहिए अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम की समाप्ति की। फिर से आऊंगी आपके पास लेकर किसी और नई सदाबहार फिल्म के साथ। लेकिन उससे पहले 2:30 पर आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार लेकर आएंगी विजेता। और 3:00 कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगी मैं आपके होस्ट दोस्त प्रीति। तब तक आप अपना ध्यान रखिए ख्याल रहिए सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो चैनल और सुनते रहिए झील के उस पार के इस खूबसूरत गीत को। तो मुझे दीजिए अनुमति नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 1:40 होने को है, लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। इस बुलेटिन मैं अमन देव पहला चुनौतियों

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मानसून इजलास के दौरान 12 बिल मंजूर किए जाने के साथ गैर मुअय्यना अरसे के लिए मुलतवी कर दी गई है। लोकसभा में अपोजिशन के शोर शराबे के दरमियान सिर्फ 19% कामकाज हो पाया। पार्लियामेंट में मुल्क के कानकनी के शोबे को ज्यादा मौसर बनाने की खातिर कानों और मादनियात के फरोग और उन्हें मुंजवित किए जाने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 115 फनकारों को संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप और अवार्ड्स अता किए हैं। अमरीका के मुख्तलिफ सूबों में 15 अगस्त को इंडिया डे के तौर पर मनाने

0: का खसूसी तौर पर ऐलान किया है। कोलंबिया ने ताकतवर जलजले के बाद राहत कार्रवाइयों के लिए गैर मामूली इकदाम की खातिर इकतसादी इमरजेंसी का ऐलान किया है। और कैनेडियन ओपन टेनिस में मॉन्टेरियल में मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में डिफाई चैंपियन बेन शेल्टन का मुकाबला हमतन खिलाड़ी ब्रेंडन नाकाशिमा से होगा। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुअय्यना अरसे के लिए मुलतवी कर दी गई है। पार्लियामेंट का मानसून इजलास गुज़िश्ता माह के 20 तारीख को शुरू हुआ था और आज यह अख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरान 25 दिनों में 19 नशिस्तें हुई। मज़ीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: मानसून इजलास के दौरान लेजिस्लेटिव और कौमी मामलात पर बहस व मुबाहिसा हुआ। पब्लिक इम्तहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026, कौमी एजाजात की तोहीन से मुतालिक तरमीमी बिल, ट्राइब्यूनल्स इस्लाहात बिल, टैक्स और दीगर कवानीन से मुतालिक तरमीमी बिल, कौमी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तरमीमी बिल और केरला का नाम बदले जाने से मुतालिक बिल 2026 को मंजूरी दी गई। पार्लियामेंट ने गैर मुल्की अतियात को मुंजबित किए जाने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मजीद गौर व खोज के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के सुपुर्द कर दिया। इस बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात के इस्तेमाल को मजीद शफाफ और जवाबदेह बनाना है। अलबत्ता इजलास के दौरान नीट पेपर लीक के मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई और अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावे में बेसाब्तियों के मामले पर कार्रवाई में बार बार रखना पड़ा। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: पार्लियामेंट ने आज राज्यसभा में मंजूर किए जाने के बाद कानों और मादनियात के फरोग और उन्हें मुंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। सुबह 11 बजे जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो कोयले और कानों के वजीर जी किशन रेड्डी ने कानों और मादनियात के फरोग और उन्हें मुंजबित किए जाने से मुतालिक कानून 1957 में मजीद तरमीम की खातिर बिल पेश किया। इस बिल का मकसद भारत की कारकर्दगी के शोबे को ज्यादा मौसर सरमायाकारी के लिए साजगार और पूरी तरह लैस बनाना है ताकि मुल्क की अहम मादनियात की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके। मरकज इस बिल के जरिए कानों और मादनियात के फरोग उन्हें मुंजबित करने से मुतालिक कानून में दर्ज पैमानों के मुताबिक मादनियात वाली अराजी को मुंजबित करने को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। इस बिल पर बहस का जवाब देते हुए जनाब जी किशन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने शफाफियत को यकीनी बनाया है और कार्यकर्ता के वसाइल के मुनासिब बंदोबस्त के लिए नीलामी का इनेकाद भी किया है।
2: भारत सरकार चाहते हैं मिनरल का रेट्स देश भर में एक स्थित हो। अभी अध्यक्ष जी ये लोग नरेंद्र मोदी की सरकार को सिखाने का जरूरत नहीं है। हम ट्रांसपेरेंसी के साथ नरेंद्र मोदी सरकार 12 साल से देश के हित के लिए काम किया है।
0: पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पर पार्लियामेंट में बहस से बचने का इल्जाम लगाया है जबकि हुकूमत इसके लिए तैयार थी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट का तर्ज अमल खासतौर से पार्लियामेंट के ताल्लुक से जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि पार्लियामेंट बहस व मुबाहिसे और कानून बनाने के लिए होता है लेकिन मानसून इजलास के दौरान मुसलसल नारेबाजी और एहतजाज ने ऐवान की कार्रवाई को मुतासिर किया। जनाब रिजिजू ने कहा कि मानसून इजलास के दौरान 12 बिल मंजूर किए गए लेकिन सिर्फ एक पर दोनों ऐवानों में बहस हुई। उन्होंने कहा कि इस इजलास के दौरान लोकसभा में सिर्फ 19% और राज्यसभा में 39% कामकाज हो पाया। मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल ने पार्लियामेंट में बार बार रखना डालने पर अपोजिशन की नुक्ताचीनी की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन जमहूरी और पार्लियामानी रवायात का एहतराम नहीं कर रही है। पार्लियामेंट के अहाते में आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए मोहतरमा पटेल ने कहा कि पूरे मुल्क ने अपोजिशन की हरकतों को देखा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन जमहूरी या पार्लियामानी रवायात में यकीन नहीं रखती।
3: इन लोगों की लोकतंत्र में संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी, इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है।
0: बीजेपी ने आज अपोजिशन पार्टियों पर

0: इल्जाम लगाया कि वो पंजाब और झारखंड में तलबा को दरपेश मामलों को नजरअंदाज कर रही है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के तर्जुमान डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि अपोजिशन पार्टियां झारखंड और पंजाब में तलबा के मामलों पर सवालों से बचने के लिए पार्लियामेंट में शोरगुल कर रही है। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी झारखंड के तलबा के मामलों पर खामोश हैं।
1: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहां निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में खसूसी एजाज से मुतालिक एक तकरीब में 115 फनकारों को 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप और अवार्ड्स अता किए। इन अवार्ड के जरिए भारत के मुख्तलिफ फनून जैसे आर्ट, मौसीकी, रक्स, थिएटर, फोक और कबायली आर्ट, कठपुतली, रिवायती थिएटर और दीगर मुतालिका फनून में गैरमामूली और मुसलसल ताउन को एजाज बख्शा जाता है। एवार्ड याफ्तगान मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से ताल्लुक रखने के बावजूद पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। अमरीका में कई रियासतों ने भारत की आजादी, उसकी शानदार विरासत, गुनागुनियत और अमरीका में मुकीम भारत निजाद लोगों की इस मुल्क के तय खिदमात को उजागर करने के लिए 15 अगस्त को इंडिया डे के तौर पर मनाने के गरज से खसूसी ऐलान जारी किया है। न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी और मैसाचुसेट्स के बाद डेलावेयर रियासत ने भी इस बारे में ऐलान जारी किया है। डेलावेयर के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने एक ऐलानिये पर दस्तखत किए और तमाम शहरियों पर से जोर देकर कहा कि वो इंडिया डे मनाएं। ऐलानिये में कहा गया कि ये दिन भारत की आजादी का एहतराम करने, विरासत और डेलावेयर की भारतीय अमरीकी बिरादरी की हसूलियाबियों को याद करने का मौका फराहम करता है। कोलम्बिया के सदर एबेलार्डो डेला एस्पिरेला ने इक्तसादी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है ताकि हुकूमत वहां आए ताकतवर जलजले के बाद राहत और बाज आबादकारी के लिए गैरमामूली इकदाम कर सके। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक जलजले से कम 265 अफराद हलाक और 3494 लोग जख्मी हुए हैं। और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मर्दों का सिंगल्स फाइनल दो अमरीकी खिलाड़ियों ब्रेंडन नाकाशिमा और बेन शेल्टन के दरमियान खेला जाएगा। मॉन्ट्रियल में खेले गए सेमीफाइनल में नाकाशिमा ने स्पेन की के राफेल जोडार को 7-6 और 6-4 से हराया, जबकि मौजूदा चैंपियन बेन शेल्टन ने अमरीका के ही लर्नर टीएन को 6-2 और 6-3 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट के दोनों विभागों की कार्रवाई मानसून इजलास के दौरान 12 बिल मंजूर किए जाने के साथ गैर मुइयना अरसे के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में अपोजिशन के शोर शराबे के दरमियान सिर्फ 19% कामकाज हो पाया। पार्लियामेंट ने मुल्क के कानकनी के शोबे को ज्यादा मौसर बनाने की खातिर कानून और मादनियात के फरोग और उन्हें मुंजविद किए जाने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 115 फनकारों को संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप और अवार्ड्स अता किए हैं। अमरीका के मुख्तलिफ सूबों ने 15 अगस्त को इंडिया डे के तौर पर मनाने का खसूसी तौर पर ऐलान किया है। कोलम्बिया ने ताकतवर जलजले के बाद राहत कार्रवाईयों के लिए गैर मामूली इकदाम की खातिर इकतसादी इमरजेंसी का ऐलान किया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Both houses of parliament adjourn sine die with passage of 12 bills during monsoon session. Lok Sabha registers only 19% productivity amid opposition's uproar. Parliament passes Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 to make mining sector more efficient. President Draupadi Murmu confers Sangeet Natak Academy fellowships and awards to over 100 artists. Several U.S. states issue special proclamations to commemorate August 15th.

0: भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिन में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद में विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने समापन वक्तव्य में सदन की कार्यवाही में बार बार आई बाधा पर चिंता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन ने 12 विधेयकों को पारित और वापस करके अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा किया।
2: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 start questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up. The floor was open, but we didn't make the fullest use of the opportunities.
0: श्री राधाकृष्णन ने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही केवल 37 घंटे 49 मिनट चली, जिससे सदन में 39.17% ही कामकाज हुआ। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में हल्द्वानी में अपनी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में किए गए हवन का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण में किसी समुदाय और धर्म का उल्लेख नहीं किया।
3: मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और मिश्रा, लेकिन मैं एक शुरूकास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ।
0: सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को आश्वस्त किया कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच की जाएगी।
4: बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर वन। नंबर टू, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, यह उचित नहीं है।
0: संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी आयोजित की है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में कोयले का अधिकतम उत्पादन किया गया है।
4: भारत सरकार चाहते हैं मिनरल का रेट्स देश भर में एक स्थित हो। अभी अध्यक्ष जी
0: चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के तरुण चुघ ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि कानून खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा। बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज ने विधेयक का विरोध करते हुए आशंका व्यक्त की कि इसका संघवाद और

0: समृद्ध राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाई वी सुब्बरेड्डी ने खनिज संसाधनों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। ऑल इंडिया ना डीएमके के डॉ एम तम्बीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार और बीआरएस के रवि चंद्र वड्डीराजू सहित अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि जब सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी तब विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद बहस, चर्चा और विधायी कार्य के लिए है, लेकिन मॉनसून सत्र में लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शनों ने सदन के कामकाज को प्रभावित किया।
1: अपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष को लोकतंत्र या संसदीय परंपराओं में कोई विश्वास नहीं है।
2: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी, इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
3: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहां निरंतर बवाल मचाकर रखा गया। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
4: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं, आप उस पर एफआईआर करोगे? क्या न्याय है? राहुल गांधी क्या बोलते हो आप? क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र किसी ने देश जानता है।
0: इस बीच झारखंड में विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: रांची में आंदोलनकारी छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेरने की रणनीति संबंधी जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री आवास के निकट पूरे कांके रोड में ऊंची बैरिकेडिंग लगाई गई है। कड़ी सुरक्षा और रूट डायवर्जन को लेकर इस मार्ग पर आवागमन भी बाधित है। इधर भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आंदोलनरत छात्रों की मांगों को जायज ठहराया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम
0: करकटा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपए की राशि और अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि के साथ साथ ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम दिया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि देश की संगीत, नृत्य और लोक रंगमंच की कई विधाएं हैं।
6: कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की। उनके अनुसार

0: जीवन का ही पर्याप्त है। जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तो वस्तु कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तो तथा मनुष्यों के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है।
1: गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज तिरंगा फहराने के साथ साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है और हर भारतीय में गर्व की भावना जागृत कर रहा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
2: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
1: स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किले में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमरीकी ताने बाने में भारतीय अमरीकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में डेलावेयर राज्य के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने आदेश पर हस्ताक्षर कर सभी नागरिकों से भारत दिवस मनाने का आग्रह किया। इससे पहले न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी और मैसाचुसेट्स ने ये आदेश जारी किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दालास प्रियेजा ने जबरदस्त भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। कोलंबिया में इस सप्ताह सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में 265 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,494 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कोलंबिया में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत कोलंबिया को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टियन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर निजी प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपके इस कार्यक्रम की होस्ट विजेता चतुर्वेदी। तो स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की बात करते हैं और जब हम उस सुनहरे दौर की बात करते हैं तो उन अभिनेत्रियों का जिक्र ना हो जिन्होंने पर्दे पर अभिनय के साथ साथ नृत्य को भी एक नई पहचान दी, तो ये कहानी थोड़ी सी अधूरी रह जाती है। और आज की हमारी जो कहानी है वो एक ऐसी अभिनेत्री की है जिनकी आंखों में अभिनय था, चेहरे पर भाव थी, कदमों में शास्त्रीय संगीत की ऐसी लय थी जिसने हिंदी फिल्म की नायिका की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया था। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्हें

कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज बात हो रही है सुपरस्टार यानी कि पहली सुपरस्टार वैजयंती माला की। दोस्तों वैजयंती माला एक अभिनेत्री, भरतनाट्यम नृत्यांगना और भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग की एक बेहद ही प्रभावशाली शख्सियत में से एक है। उनका जन्म 13 अगस्त 1933 को मद्रास यानी आज के चेन्नई में हुआ था और उनकी माँ वसुंधरा देवी खुद एक अभिनेत्री और बहुत ही अच्छी नृत्यांगना थी। वैजयंती माला को बचपन से ही नृत्य संस्कार में मिला था और आगे चलकर भरतनाट्यम उनकी पहचान बना और उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा भी बना। वैजयंती माला की प्रतिभा इतनी कम उम्र में उभर के आई कि उन्हें वो अवसर मिला, एक बेहद खास अवसर जहां उन्होंने पोप के सामने अपने नृत्य का प्रस्तुतिकरण किया था। यानी जिस बच्ची के लिए नृत्य शुरुआत में कला और अनुशासन था, वही नृत्य आगे चलकर उनके फिल्मी करियर की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। स्क्रीन पर आने से पहले उन्होंने भरतनाट्यम की बाकायदा शिक्षा ली और उनके नृत्य प्रशिक्षण ने उनके अभिनय को भी एक खास अंदाज दिया। उनकी चाल, उनकी

मुद्रा, हाथों के इशारे और चेहरे के भाव सब कुछ कैमरे के सामने बेहद प्रभावशाली दिखाई देता था। और फिर आया वो समय जब मंच की ये नृत्यांगना फिल्मी पर्दे की ओर बढ़ गई। साल था 1949, तमिल फिल्म वाजाखाई से वैजंती माला ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा।

श्रोताओं, जो भी उन्होंने फिल्में तेलुगु या तमिल में की थी वो काफी सफल हुई और सफलता ने उनके लिए दक्षिण भारतीय सिनेमा के दरवाजे खोल दिए। इसके बाद उनका जो मंजिल थी वो सिर्फ दक्षिण भारतीय सिनेमा तक सीमित रहने वाली नहीं थी, जल्द ही उनकी प्रतिभा ने उन्हें हिंदी फिल्मों तक पहुंचा दिया। 1951 में उनकी फिल्म आई बहार। ये वही दौर था जब हिंदी सिनेमा में वैजयंती की पहचान बननी शुरू हुई थी, लेकिन असली बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था। साल 1954 में आई फिल्म नागिन। फिल्म ने वैजयंती माला को हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री की कतार में ला खड़ा किया। उनकी खूबसूरती, उनका अभिनय और उससे बढ़कर उनका नृत्य दर्शकों को बेहद पसंद आया। ये वही दौर था जब दर्शकों ने महसूस किया कि ये अभिनेत्री केवल सुंदर चेहरा नहीं है, ये एक ऐसी कलाकार है जो अभिनय और नृत्य दोनों को बराबर ताकत से पर्दे पर उतार सकती है। इसके बाद 1955 में आई बिमल रॉय की फिल्म देवदास। शरदचंद चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास पर बनी इस फिल्म में दिलीप कुमार ने देवदास और सुचित्रा सेन ने पारू की भूमिका निभाई थी। वहीं वैजयंती माला बनी थी चंद्रमुखी। ये भूमिका उनके करियर का एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। अब तक दर्शक उन्हें एक खूबसूरत और शानदार डांसर के रूप में देख रहे थे, लेकिन चंद्रमुखी के किरदार ने साबित कर दिया कि वैजयंती माला के भीतर एक गंभीर अभिनेत्री भी मौजूद है। उनकी अभिनय को खूब सराहा गया। उन्हें इस भूमिका के लिए फिल्मफेयर में सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। हालांकि उनका मानना था कि ये पुरस्कार जो है वो सह अभिनेत्री का नहीं बल्कि अभिनेत्री का होना चाहिए, क्योंकि मुख्य किरदार माना जा रहा था पारो का किरदार। तो बस इसी तरह से उनका जो फिल्मी करियर है वो लगातार आगे बढ़ रहा था। हम भी आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं उन्हीं की एक और फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार और आज बात हो रही है वैजयंती माला की। हमारे बहुत सारे श्रोता हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, तो चलिए अब उनकी भी मेल्स को शामिल कर लेते हैं। अजीत भवसार का संदेश है हमारे पास और ये लिखते हैं कि वैजयंती माला का जन्म 13 अगस्त को हुआ था और ये सारी बातें हम यहाँ पर कर ही रहे हैं, आप हमारे एक कार्यक्रम को सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजीत भवसार जी। और अमर नगर से अमर रमेश कुमार खत्री जुड़ रहे हैं और ये लिखते हैं कि वैजयंती माला के सॉन्ग मेरे ग्रैंड मदर बहुत सुना करती थी। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है और वाकई ये उन्हीं की समय के सॉन्ग्स हैं, लेकिन आज भी श्रोता उन्हें उसी प्यार से और उसी भाव से सुनते हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार जुड़ रहे हैं। अगले संदेश के साथ हैं ताज मोहम्मद जी, हरिद्वार लक्सर से, हरिद्वार उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं। इंद्रभान जी जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में चिरमिरा कुरसिया कालरी से, साथ में इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंदरी लहरे। हीरामणि जी जुड़ रहे हैं बडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जुड़ रही हैं और हमारे श्रोता हैं हीरामणि जी। दतरंगी भाटपारा से जुड़ रहे हैं और ये लिखते हैं कि वैजयंती माला जी के जीवन, नृत्य करियर, संघर्ष व फिल्मी सफरनामा पर रोचक जानकारी मिल रही है, बेहतरीन गाने सुनने को मिल रहे हैं और हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, साथ ही अपनी प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचा रहे हैं, ये हमारे लिए और भी अच्छी बात हो जाती है। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक जुड़ रहे हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से मस्कीन दादा जुड़ रहे हैं। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से और वीना मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना जुड़ रहे हैं और लिखते हैं आज बड़े दिनों बाद आपकी मीठी आवाज सुनी, बहुत अच्छा लगा, वैजयंती माला के बारे में आप जानकारी दे रही हैं। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे श्रोता हमें याद करते हैं, अपने संदेश लिखते हैं। फारूक अली खान जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में और कार्यक्रम के बारे में लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा लगा। पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में। पी एस निवारकर जुड़ रहे हैं नलेश्वर नरवेल महाराष्ट्र से। निर्मला नुहाकर, विशाल मलकापुर से, नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मोहर्रेकर भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ में हैं। शाहजी भोकड़े हमारे श्रोता हैं हिंगोली महाराष्ट्र से, श्रीमती नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जमदाड़े भी कार्यक्रम में हमारे साथ में हैं। और इशाक मोहम्मद जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ चुड़ी लाइन मुंगेली से, मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, अफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा जी। लिखते हैं वैजयंती माला जी के बारे में जानकारी और गीत सुनकर मजा आ गया, कार्यक्रम में आपकी प्रस्तुति का अंदाज बेहद सटीक और शानदार है। तो वही आपके लिए, आपने जो तारीफ की है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी जो इंस्पिरेशन है वो हमारे श्रोता ही है कि वो हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं और जहां पर उन्हें कमी लगती है वो भी लिखते हैं और जहां उन्हें अच्छा लगता है वो भी लिखते हैं। तो चलिए इसी बात पर सुन लेते हैं वैजयंती माला जी का एक और गीत जिसे हमने चुना है फिल्म नागिन से।

तो श्रोताओं, ये थी वैजयंती माला, एक ऐसी कलाकार जिसने बचपन में मंच पर कदम रखा, फिर दक्षिण भारतीय सिनेमा में पहचान बनाई, हिंदी सिनेमा में आई, नागिन से लोकप्रियता हासिल की, देवदास में अभिनय की गहराई दिखाई, मधुमति और साधना से अपनी जगह मजबूत की, गंगा जमुना में अभिनय का रंग दिखाया और संगम के साथ स्टारडम की ऊंचाइयों तक पहुंची। फिर आम्रपाली जैसी महत्वाकांक्षी फिल्म के बाद उन्होंने धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बना ली और नृत्य की दुनिया में अपनी साधना जारी रखी। वैजयंती माला का फिल्मी सफर हमें ये बताता है कि सिनेमा में कुछ कलाकार सिर्फ अपने दौर के सितारे नहीं होते, बल्कि वो एक माइलस्टोन जैसे साबित हो जाते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें जरूर मेल करके बताइएगा। और छोड़े जाते हैं आपको उन्हीं की इस फिल्म के इस गीत के साथ।

0: दिन में 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: खबरें सुनिए। अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में एहतजाज की हिमायत में आज दुनिया भर में रहने वाले कश्मीरियों से मुजाहरे करने की अपील की है। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों ने 15 अगस्त को इंडिया डे के तौर पर मनाने का खसूसी तौर पर ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अबनाए हुरमुस पर अमरीका का पूरा कंट्रोल है। कोलम्बिया ने ताकतवर जलजले के बाद राहत की कार्रवाईयों के लिए गैर मामूली इकदाम की खातिर इक्तसादी इमरजेंसी का ऐलान किया है। और कैनेडियन ओपन टेनिस में मॉन्ट्रियल में मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में दिफाई चैंपियन बेन शेल्टन का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी ब्रैंडन नाकाशिमा से होगा। खबरें तफसील से। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में सरकार की शह पर फैलाई जाने वाली दहशतगर्दी को दुनिया के सामने लाने के लिए अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर में रहने वाले कश्मीरियों से आज मुजाहरे करने की अपील की है। इस तरह पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में जारी एहतजाज बेअकवामी शक्ल अख्तियार करने जा रहा है। मस्कुरा कमेटी ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो रैलियां मुनक्किद करें और बकौल उसके खत्ते में पाकिस्तानी सरकार की जानिब से ताकत के इस्तेमाल पर दुनिया की तवज्जो मबजूल कराएं।

0: उसके साइट तक पहुंच गया है। 899 फुट के टैंकर कैरोलिना बेजेंजी में रवा साल जून में उस वक्त एक धमाके की इत्तला मिली थी जब तकरीबन 1 मिलियन बैरल रूसी खाम तेल लेकर जा रहा था। किसी ने भी अब तक इस वाकये की जिम्मेदारी नहीं ली है और इस धमाके की वजह भी अब तक मालूम नहीं हो सका है। ओमान की माहौलियात से मुतालिक अथॉरिटी का कहना है कि तेल की रिसाव से होने वाली आलूदगी का असर ओमान के रास मुद्रका के साहिल तक पहुंच चुका है। कोलंबिया के सदर ने इक्तसादी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है ताकि हुकूमत वहां आए ताकतवर जलजले के बाद राहत और बाज़ाबादकारी के लिए गैर मामूली इकदाम कर सके। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक जलजले से कम 265 अफराद हलाक और 3,494 जख्मी हुए हैं। उन्होंने जलजले को बहुत बड़ा सानहा बताया और कहा कि हुकूमत मुतासर कुंभों कारोबारियों और बरादरियों की मदद के लिए फौरी इकदाम कर रही है। पीर को कोलंबिया में 7.4 शिद्दत का जलजला आया था। इस दौरान वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कोलंबिया में जाना माल के नुकसान पर सदमे का इजहार किया है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुना अरसे के लिए मुलतवी कर दी गई है। पार्लियामेंट का मानसून अजलास पिछले महीने की 20 तारीख को शुरू हुआ था और आज ये अख्ताम पजीर हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 नशस्तें हुई। मानसून अजलास के दौरान लेजिस्लेटिव और कौमी मामलात पर बहस मुबासा हुआ। पब्लिक इम्तहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026, कौमी एजाजात की तौहीन से मुतालिक तरमीमी बिल, ट्राइब्यूनल असलाहत बिल, टैक्स और दीगर कवानीन से मुतालिक तरमीमी बिल, कौमी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तरमीमी बिल और केरला के का नाम बदले जाने से मुतालिक बिल 2026 को मंजूरी दी गई। कैनेडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मर्दों का सिंगल्स फाइनल दो अमरीकी खिलाड़ियों ब्रेंडन नाकाशिमा और बेन शेल्टन के दरमियान खेला जाएगा। मॉन्ट्रियल में खेले गए सेमीफाइनल में नाकाशिमा ने स्पेन के राफेल जुदार को 7-6 और 6-4 से हराया, जबकि मौजूदा चैंपियन बेन शेल्टन ने अमेरिका के ही लर्नर ट्रेन को 6-2 और 6-3 से शिकस्त दी। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर सुनिए। अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में एहतजाज की हिमायत में आज दुनिया भर में रहने वाले कश्मीरियों से मुजाहरे करने की अपील की है। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों ने 15 अगस्त को इंडिया डे के तौर पर मनाने का खुसी तौर पर ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुरमुज पर अमरीका का पूरा कंट्रोल है। और कोलम्बिया ने ताकतवर जलजले के बाद राहत की कार्रवाइयों के लिए गैर मामूली इकदाम की खातिर इक्तसादी इमरजेंसी का ऐलान किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम में भी 71 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश सोनू निगम और अनुराधा श्रीराम की आवाजों में ब्रूस द फॉरगॉटन हीरो फिल्म का यह नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है ए आर रहमान ने।

0: साहब, आंदोलन का हमारे इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है। जैसा कि सभी जानते हैं कि आजादी क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आजादी हमको यूं भी बड़ी आसानी से नहीं मिली, ये हमारे बुजुर्गों की जद्दोजहद और काविशों से हमें हासिल हुई है। अगर जद्दोजहद आजादी का जिक्र करें तो अंग्रेजों के जुल्म की दास्तानें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तरह का जुल्म सहकर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ है, उसकी आला मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हमें इस आजादी की कदर करनी चाहिए और हमारे बुजुर्गों के जरिए दी गई कुर्बानियों को याद करनी चाहिए। 15 अगस्त हमारे मुल्क की तारीख में सबसे अहम तारीखों में से एक है। यह वही दिन है जिसे हम बरतानिया के हुक्मरान से आजाद बन गए। आजादी के दिन हम सबको याद दिलाता है कि हम एक अजीम मुल्क के शहरी हैं और हमें इसकी इत्तेहाद की हिफाजत के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने कौमी परचम और कौमी गीत का एहतराम करना होगा। हमें अपने वतन की आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों की तरह वतन दोस्त होना चाहिए। हिंदुस्तान का यौम आजादी एक कौमी त्यौहार है जो हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। यह हिंदुस्तान के लिए एक अहम अहमियत का दिन है। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को तवील अरसे की गुलामी के बाद बरतानवी हुक्मरानी से आजादी मिली। बरतानवी सल्तनत से इसकी आजादी की खुशी मनाने के लिए कौमी छुट्टी करार दिया गया। हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजादी हासिल करना आसान नहीं था। तहम हमारे आजादी पसंद जंगजू सियासी कायदीन और हिंदुस्तान के अवाम आजादी हासिल करने के लिए पुरअज़्म थे। आखिरकार वो 15 अगस्त 1947 को कामयाब हो गए जब हिंदुस्तानी दस्तूर साज असेंबली को मुकम्मल कानून साजी के अख्तियार दिए गए। बहुत से लोगों ने अपनी राहत आराम और आजादी की फिक्र किए बगैर अपनी आने वाली नस्लों की आजादी के हुसूल में अपनी जानें कुर्बान की। उन्होंने मतलब आजादी के हुसूल के लिए मुतअद्दिद आजादी की तहरीकों का मंसूबा बनाया और उन पर अमल किया। प्रोफेसर सुचिता महाजन जी, हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान की जो जद्दोजहद आजादी रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: देखिए, ऐसा है कि दो बातें रखना चाहती थी मैं यहाँ। जैसे आपने पहले कहा कि हमारी अचीवमेंट्स जो है वो तो बहुत है, उनकी पूरी एक लंबी हम गिनती कर सकते हैं, उसमें हम आएंगे बाद में। लेकिन दो बातें जो बहुत ही जरूरी है ये देखनी, वो है कि जो आजादी हमें मिली वो एक तोहफा नहीं था। अगर हम देखें ब्रिटिश की तरफ से उनकी जो किताबें हैं आज तक भी जो चलती हैं, वो एक कोशिश करते हैं दिखाने की कि जिसका वो शब्द यूज करते हैं ट्रांसफर ऑफ पावर, कि वो एक सत्ता थी और उन्होंने वो सत्ता जो थी एक समय आया और वो उन्होंने भारतीय लोगों को वो हस्तांतरण उसका हो गया, सत्ता ट्रांसफर हो गई। ये बिल्कुल गलत है। इसमें बहुत ही, जैसे आपने कहा, कुर्बानियां थी। एक पूरी आजादी की जो लड़ाई थी, बेहद जद्दोजहद के बाद ये आजादी जो है ये हमें हासिल हुई। आजादी जो है हमने हासिल की और हमने बिल्कुल उनके, जैसे कहते हैं, शेर के मुंह से हमने ये खींचा। हालांकि हमने, और ये भी बहुत एक दिलचस्प बात है, कि नॉन वायलेंस, बिना हम हिंसा का हमने जो है एक रास्ता था वो नहीं अपनाया। वायलेंस का रास्ता हमने नहीं अपनाया, लेकिन नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाते हुए भी हमने इतनी ताकत हमारे लोगों में, गांधी जी और उनके साथी जो थे, उन्होंने एक सबसे बड़ी बात जो उसमें थी वो थी कि जो एक आतंक था, जो एक डर था, भय था जो लोगों के मन में, वो दूर हुआ, जो ब्रिटिश ताकत का एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारी आजादी की लड़ाई थी वो 1947 में खत्म नहीं हुई। ये हमारे एक बहुत बड़े नेता हैं राष्ट्रवादी, उनका नाम है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, 19वीं शताब्दी के हैं। तो उन्होंने लिखा, एक किताब उन्होंने लिखी थी, उसका नाम था नेशन इन द मेकिंग। इसका मतलब है कि जो हमारा राष्ट्र जो है, ये ऐसी बात नहीं है कि एक समय आता है कि किसी राष्ट्र का जन्म होता है, ऐसा नहीं है। ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है, ये एक जिसमें एक जो नेशन है कि 1947 में हमारे लोगों में इतनी ताकत थी कि ब्रिटिश ने बहुत सूझबूझ से बात समझ ली कि अब हम यहाँ पे शासन नहीं कर सकते और वो चले गए। लेकिन ये जो

0: नेशन बनने की जो प्रक्रिया है उसकी जो सोशल एस्पेक्ट है, सोशल पहलू है, उसका जो आर्थिक पहलू है, उस क्रांति का जो है, उस आजादी का, वो पूरा नहीं हुआ 1947 में। और आजादी के बाद की जो सरकारें थी उन्होंने ये जो क्रांति थी, सामाजिक और आर्थिक क्रांति, और सामाजिक और आर्थिक पहलू से किस तरह से देश को आजाद बनाया जाए, तो केवल साम्राज्यवाद से आजादी की बात नहीं है, भूखमरी से आजादी की बात है, एक किस तरह से हमने इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो कैसे हमने पाई, गरीबी के खिलाफ हमने लड़ाई कैसे लड़ी, एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्वाधीन विदेश नीति वो कैसे यहाँ पे हमने इवॉल्व की। एक समय था 1955 में जब जवाहरलाल नेहरू की जो उनका इमेज था पूरे विश्व में एज अ स्टेट्समैन, वो कहीं भी ब्रिटिश लोगों से ज्यादा था। तो ये सब हमारी जो उपलब्धियां हैं ये हमें याद रखते हुए ये बात हमें बहुत जरूरी है, ये बात को समझना कि देश जो है वो एक ऐसी चीज नहीं है कि जो किसी समय वो जन्म होता है, वो हर समय बनता है और बिगड़ता है। तो ये नेशन इन द मेकिंग से अगर हम समझें तो मुझे लगता है कि हम जो 47 तक की जो 47 के बाद की जो लड़ाई है, जो कि सामाजिक आर्थिक क्रांति किस तरह से लाई जाए और वहां पे आजादी कैसे मिले, ये दोनों पहलू हमें एक साथ लेकर समझना जो है ये बहुत जरूरी है।
1: जी जी प्रोफेसर अतिकुल्ला साहब, जैसा कि जद्दोजहद आजादी और जैसा कि मैडम ने बताया बहुत सी चीजें, और हमारी जो मुश्तरका तहजीब की जो हसूलियाबी आई इसके बारे में आप कुछ रोशनी डालें।
2: इफ्तिखार साहब, पहली बात तो ये कि मौजू बहुत अच्छा है, मैडम ने बहुत सी जो बातें की हैं वो बुनियादी बातें हैं, मसला ये तोहफा नहीं है, मसला ये है कि ये प्रोसेस है, मेकिंग का बंदे का प्रोसेस है, वो चल रहा है। जो आपका ये खास टॉपिक है ये मौजूद तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला जो आपने जद्दोजहद आजादी, नंबर टू ये है कि हमारे जो कंपाउंड कल्चर है, जो मुश्तरका तहजीब है, वो सवाल ये उठता है जो क्या है। फिर तीसरा यह है कि हमने क्या हासिल किया, ये तीन आपके फैक्टर्स हैं इसमें, ये तीन सवाल हैं। जद्दोजहद आजादी तो समझ लीजिए दुनिया में जब 47 में हिन्दुस्तान आजाद हुआ उस वक्त और बहुत से ममालिक हुक्मरान थे, और खुद हमारा करीबी मुल्क चाइना जो है वो भी उसी वक्त आजाद हुआ, और फिर बाद में तो स्पेन वगैरह वगैरह की कॉलोनीज वगैरह जो आज तक अभी तक आजाद हो रही हैं। तो ये सिलसिला जो है वर्ल्ड वाइड आजादी का सिलसिला चल रहा है। लेकिन हमारे हिन्दुस्तान का जहां तक ताल्लुक है, हिन्दुस्तान एक अलग टाइप का मुल्क है दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ, यानी इन मानों में कि एक तो आबादी के लिहाज से बहुत वसी तरह है, फिर यहां तबकात के लिहाज से, फिरकों के लिहाज से, कास्ट के लिहाज से, ये तमाम जो जितने कैटेगरीज हैं, इतनी कैटेगरीज के सामने देखा जाए तो ये कैटेगरीज सब किस तरह से एक मसले को लेकर और एक मोटो को लेकर, एक मकसद को लेकर एक प्रचंड तले आगे, और उन्होंने जद्दोजहद की। अब जद्दोजहद के मानी ये नहीं है कि हमने जद्दोजहद की सब के हम एमए कर लें, हम बीए कर लें और हमने कर लिया और बहुत अच्छे मार्क्स ले आए, डॉक्टर बन गए। उसके बाद की जो जिम्मेदारियां हैं कि आप किस तरह से अपने पेशे को हमारे आवाम के लिए मुफीद बच्चे बनाएंगे, सिर्फ पैसे की मशीन नहीं होता कोई प्रोफेशन या कोई भी डिग्री। इसी तरह से आजादी हासिल करने के बाद ये नहीं है कि हमने सब कुछ पा लिया, यानी एक तरह से बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, यानी एक जिम्मेदारी वो है कि जो कॉलोनाइजर है वो कॉलोनाइजर की जिम्मेदारी है कि वो अपना मबान रखे, यहां की गुर्बत को देखे, जहालत को देखे, यहां के तालीमी निजाम को देखे, इनसे सब मसाइल हल करे। एक तो वो है आस्पेक्ट जो कि अंग्रेज कर रहे थे, यहां पर कॉलोनाइजर कर रहे थे, लेकिन उससे बड़ा एस्पेक्ट यह है आजादी हासिल करने के बाद जो कुछ भी हमने जो एक कॉन्सेप्ट तस्वर कायम किया था प्रगति के लिए, यानी हमने आजादी हासिल कर ली थी यूं ही, बल्कि हमारा पूरा एक तस्वर था, एक कॉन्सेप्ट था, उसे हमें अमलावर करना था, अमली तौर पर हमें उसे एक सामने लाना था। और उसमें चूंकि मैंने ऐसा अर्ज किया कि यह तबकात में बटा हुआ मुल्क था, स्टेट्स में, इलाकों में, ज्योग्राफिकल लिमिट्स

वो होता है, वो अलग चीज है। सबसे बड़ी बात हमें ये समझने की है कि जो कॉम्पोजिट कल्चर, प्लूरलिज्म, मल्टी कल्चरल सोसाइटी, इन ये अलग अलग नाम दिए जाते हैं, बात तो एक ही है, तो उसके लिए जो है ये हमारे इतिहास में ही है, ये हमारे इतिहास से ही आ रहा है। ये कोई आइडिया नहीं है जो कि हम बाहर से लाकर पढ़ के कहीं किताब से हम उसको ला रहे हैं, इसका हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है। ये कहना बहुत जरूरी है क्योंकि ब्रिटिश लोग भी और भी वो हमेशा ये बात को कहते थे, उनका एक ये दावा था कि हमारे से पहले तो ये सब झगड़ा करते थे, सब अलग अलग यहाँ पे फिरका परस्ती थी, अलग अलग फिरके थे, और हम आए और हमने इस देश को जो है एक बनाया। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये अगर हम बाहर पीछे जाएं, जिसको मध्यकालीन भारत का पीरियड हम देखते हैं, ये तो वहीं से पूरी जो ये एक तरीका है रहने का, कल्चर का मतलब ही आज की डेट पे है, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं वे ऑफ लाइफ, या रहने का तरीका या रहने की तहजीब, इसको हम उसको नैरो कल्चर सेंस में नहीं ले रहे हैं। तो किस तरह से जो मुगल आए यहाँ, उस हमारा देश का हिस्सा बने, और अलग अलग जो आइडियाज थे, जो वे ऑफ लाइफ था, कैसे ये इंटीग्रेट हुआ, ये धर्म के अगर देखा जाए तो वहां पर भी हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी कुछ ये है कि एक दूसरे पर इसका प्रभाव पड़ा, इसका इन्फ्लुएंस था, और अलग अलग जिसको हम सूफी का पूरा इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, भक्ति मूवमेंट है, उसमें भी हम इसकी झलक देखते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो हम देखते हैं इसको, वो है आजादी की लड़ाई में कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर वो लड़े हैं 1857 से शुरू होकर, जबकि मुगल बादशाह को लेकर उनको बनाकर पूरा वो एक चिन्ह थे, एक सिंबल थे पूरे देश की एकता का, उस देश की एक अखंडता का, उनको लेकर और अलग अलग सब लोग कैसे उनके पीछे जुड़े अंग्रेजों के खिलाफ, और उसके बाद आगे चलकर सैयद अहमद खान ने अब तरीके से वो आए इसमें। तो कहने का मतलब है कि हर जगह से, हर एरिया से, बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, हर तरफ से जो ये इन्फ्लुएंस आए और ये उसमें एक तरह से मिश्रित होके मिली जुली एक जो संस्कृति है, तहजीब है, वो किस तरह से बनी। गांधी जी ने किस तरह से मौलाना आजाद, अली ब्रदर्स जो थे, मोहम्मद अली, शौकत अली, पूरा जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ये उन्हीं की लीडरशिप में हुआ। खिलाफत आंदोलन का जो समर्थन था वो कांग्रेस ने किया, गांधी जी ने किया। तो कहने का मतलब ये था कि ऐसा नहीं था कि मुस्लिम मुद्दे कुछ अलग है और हिंदू मुस्लिम कुछ अलग है, नहीं, ऐसी बात नहीं थी। ये जिस सोसाइटी में जितने समूह हैं, जितने अलग अलग कम्युनिटीज हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उनके जो मसले हैं, वो सब उठाए गए और उनका खून जो है सभी कम्युनिटीज का, वो साथ बहा, बहुत साथ बहा। और उससे जो है ये तभी तो हम कहते हैं कि जब हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये एक खोखला जो है, ये स्लोगन नहीं है, ये चीज जो है हमारे इतिहास का जीता जागता और लिविंग एक बिल्कुल परंपरा है, एक ट्रेडिशन है जो हमने जी है। इसी तरह से मैं बात सिर्फ एक मिनट लगाऊंगी इसमें बात करने की जम्हूरियत की। डेमोक्रेसी बहुत लोग कहते हैं कि अरे ये तो हमने, हमारे लीडर थे, उन्होंने थॉमस पेन की किताब पढ़ी, उन्होंने ब्रिटिश किताबें पढ़ी और डेमोक्रेसी के आइडिया वहां से उनको आए, ऐसी बात नहीं है। आजादी की लड़ाई में जो कांग्रेस पार्टी थी और पार्टीज थी, उन्होंने अपने आम, जिसको फंक्शनिंग कहते हैं, डे टू डे फंक्शनिंग, रोज जिस तरह से उनकी एक पार्टी चलती थी, उसमें जम्हूरियत लाई गई। फोर एनर मेंबरशिप, गांधी जी आए, उन्होंने कांग्रेस का संविधान बदल दिया, उन्होंने कहा

0: आदमी जो चार आने देगा वो इसका मेंबर बन सकता है। इसका क्या मतलब है कि जो एक लीडर और जो एक आम आदमी है जो आंदोलन में है उनके बीच में जो फर्क है वो सब खत्म हो गया। जो आज हमारे देश का जो एक जो स्टेट्स बने हैं, जो रीजनल जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कि कर्नाटक है वगैरह, ये आपको मालूम है ये कब से है? ब्रिटिश ने तो बनाया था बंगाल, मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बड़े बड़े इन्होंने ये एरिया बनाए। कांग्रेस ने 1920 में देश को जो है उन्होंने जो आज जो स्टेट्स हैं उनमें कांग्रेस समिति जो है सब जगह शुरू कर दी। किस आधार पर? भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, क्योंकि व्यक्ति जो है हम आप और मैं किस भाषा में बोलते हैं उस भाषा से ही हमारी सारी जो एक्सप्रेशन है, हमारी नेशनलिज्म का एक्सप्रेशन है, हमारी जो भी है हम अपनी भाषा में रखते हैं। तो भाषा की एक अहमियत जो है उन्होंने कही। और ये आखिरी बात मैं कहना चाहती हूँ इस पे कि गांधी जी ने हिंदी और उर्दू का जो विवाद था वो उन्होंने खत्म कर दिया हिंदुस्तानी भाषा को अपनाकर। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी दो अलग स्क्रिप्ट चलते रहे लेकिन जो बोलचाल की भाषा है हमारी वो हिंदुस्तानी है, ना हिंदी होगी ना उर्दू होगा। तो ये जो सोच थी भाषा को लेकर, अगर हम हमारी शुरू से अगर हम ये हिंदुस्तानी भाषा की तरफ अगर हम जाते तो आज जो ये हिंदी और उर्दू अलग बट गया तो ये बात हमारी होती नहीं। तो कहने का मतलब है कि सिविल लिबर्टीज हैं जो हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे संविधान में है ये कहाँ से आए? कि कहा जाता है कि हाँ हमने सभी संविधान पढ़े और उनका मिश्रण किया, नहीं। आप 1931 में अगर जाएं तो कराची कांग्रेस में एक फंडामेंटल राइट्स पे एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि ये जो है सिविल लिबर्टीज होंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम अलग अलग पूरी एक लिस्ट बनी थी क्या क्या सिविल लिबर्टीज होंगी। वो पूरी जो है आप कराची अधिवेशन की जो लिस्ट है रेजोल्यूशन और संविधान में जो हमारे भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है वो सेम है। कहने का मतलब है कि ये जो भी हमारा संविधान है ये हमारी आजादी की लड़ाई से निकला है। ये कोई सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि जो हमने कुछ पढ़ा और इधर से कुछ लिया और वो जोड़ दिया, नहीं। और क्योंकि हमारी आजादी की लड़ाई से निकला है इसलिए इसकी जो अहमियत है हम चलते रहे, और इसलिए लोग हमारे यहाँ जो है मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सैक्रिफाइस कोई भी देने को तैयार है लेकिन हमारी जो ये फ्रीडम्स है जो हमने बहुत मुश्किल से हासिल की है ये कभी भी जो हमारे लोग हैं इनको कभी भी त्यागेंगे नहीं।
1: प्रोफेसर कमला साहब, हम चाहेंगे कि जो ये मुश्तरक तहजीब की आपने बात की और वो जो हौसलियां भी हुई, अब हम इसको दूसरी तरह ले जाते हैं कि जैसे कि आजादी के बाद हमारी जो कामयाबी मिली हमको उसके बाद अब अगर तरक्की की तरफ अगर देखें तो हिन्दुस्तान आजादी से पहले जिस हालत में थी और उसके बाद जितनी तरक्कियां हुई उसको आप किस नजर से देखते हैं?
2: दरअसल मैडम ने जब तो जगह आजादी उन्होंने तारीख बयान कर दी और वो तारीख जिससे पता चलता है कि हिंदुस्तानी जहन जो है वो कितना प्रोग्रेसिव पहले से था और किस तरह उसने पहले से ही ये तसव्वुरात कायम कर लिए थे जो कि अब ये कहा जाता है कि मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन का कंपाउंड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वाली बात भी आपने की बहुत अच्छी पूरे वैल्यूज के साथ और पूरे उसके तारीखी हैसियत है उसकी अपनी, तो इस एतबार से आपकी तमाम गुफ्तगू तारीख के निर्भर पर गश्त कर रही थी। हिन्दुस्तान में आई जब आए तो कैसे आए? ये सेंट्रल एशिया से होते हुए, ईरान से होते हुए, नॉर्थ से होते हुए इंडिया में आए थे। ये आर्यस अलग अलग युद्धों में कुछ ईरान से, कुछ ईरान के नॉर्थ से, कुछ सेंट्रल एशिया से। मुगल कहां से आए थे? वो भी सेंट्रल एशिया से आए थे। तो क्या वजह है कि मुगल यहां पर आए तो यहीं क्यों रह गए? इसलिए आर्यस यहां आए तो यहीं रह गए और वो भी उसी मट्टी से आए थे, वो भी यहीं रह गए। इसलिए इनको एक होने में ज्यादा देर नहीं लगी। इसलिए जब सूफिया इकराम भी वस्त एशिया से होकर आए, ये ईरान से नहीं आए थे, इस वस्त एशिया से आए थे, तो वो भी जब आए

0: सवाल देखा कि यहाँ पर तो कोई ह्यूमनिज्म ही ह्यूमनिज्म है, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंसानियत है, इंसान दोस्ती है, इसलिए उनको यहाँ आकर और खानकाहें बनाने में कुछ देर नहीं लगी और वो जज्ब हो गए। और इसीलिए यहाँ के जो आवाम थे उसमें तमाम फिरकों के लोग थे, उन्होंने भी देखा कि ये तो वननेस की बात कर रहे हैं, ये तो तमाम मजाहिब के मिलते जो हैं उनको टुकड़ों में बांटने की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि एक मेहनत की बात कर रहे हैं, इसलिए वो भी करीब आए उनके। तो सूफिया इकराम के बारे में ये ख्याल कुछ लोगों के जो जहन में था कि इन्होंने कोई मजहब की तबलीग की है, तो ऐसा कुछ नहीं किया। किसी भी सूफी के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि उनकी किताबों में, उनके मकतबात में, उनके मलफूजात में, उनके सीरीज में कहीं तो तबलीग हो, बल्कि यह है कि उन्होंने वननेस ऑफ ह्यूमन, दरिंद और इंसान एक है, एक मेहनत है, इस तस्वुर को कायम किया। तो इससे एक मुश्तरक तहजीब के तस्वुर को ताकत दी। ये अमलगमेशन जो हुआ तो ऐसा हुआ कि जिसमें तो कहीं भी कोई दर्ज बाकी नहीं रही। हिन्दुस्तान की आजादी के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि आजादी का तहफ़ कैसे किया जाए, और आजादी के तहफ़ के लिए एक तमाम जो सिर्फ हिन्दू मुस्लिम नहीं बल्कि दूसरे जो कल्स हैं वो भी मिलकर इसका तहफ़ कर सकते हैं। जमहूरियत का आपने तस्वर पेश किया उस एतबार से, और आपने गांधी जी का देवी वगैरह वगैरह के हवाले दिए, तो बहुत ये जिस तरह से आपने तमाम तारीख को दोहराया है उस एतबार से ये जो आपका टॉपिक है ये आज के लिहाज से बहुत मानी खेज है। ये उर्दू में दोहे लिखे जा रहे हैं, उर्दू में गीत लिखे जा रहे हैं, तो उर्दू में उन्हें एक्वायर कर लिया और अब हिंदुस्तान की 21 जबानों में गजलें लिखी जा रही है। तमिलनाडु में खुद एक मजमू का नाम शाया हो गया है एक शायर का, तमिल में गजल का, आप सोचिए 21 जबानों में गजलें लिखी जा रही हैं, वहां कलेक्शन आ चुके हैं और वो डाइस पर पढ़ते हैं वो गजलें। तो इस तरह से गजल भी है जो कि हमारे तरह माउथ पे दूंगे ये मुश्तरक तहजीब की उस सब को मिलकर, तो ये उर्दू भी एक एतवार से मुश्तरक तहजीब की एक खास अलामत है, बुनियादी अलामत कह लीजिए।
1: प्रोफेसर सुजीता महन जी, आप हमारी वसूलियाबी की तरफ कुछ क्या किस तरह से देखते हैं?
2: मुझे लगता है कि भूखमरी से जो आजादी हमें मिली है शायद हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। जब हमें आजादी मिली तो उससे 4 वर्ष पहले बंगाल में 3 मिलियन लोग फैमिन में मरे थे, और आजादी के बाद 1950s में भी बहुत दिक्कतें थी। ये जाकर इंदिरा गांधी के टाइम पे और उसके बाद भी जो है ये हमें सेल्फ सफिशिएंसी जो है फूड ग्रेन्स में पूरा FCI का बनना, ये बहुत एक बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। गांधी जी ने कहा था कि हमेशा ये सोचो कि जो सबसे गरीब इंसान है कि आप जो कर रहे हैं ये उसका असर सबसे गरीब इंसान पर क्या होगा। तो अगर उस नजर से देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि ये जो है ये एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है।
1: प्रोफेसर सुचिता महाजन और प्रोफेसर अतिकुल्ला, आप दोनों हमारे इस मुजाकरे में शरीक गुफ्तगू हुई, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आपका भी बहुत शुक्रिया।
3: सामने भी आप सुन रहे थे प्रोग्राम अंदाजे नजर, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम में 71 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। पेशे खिदमत है हमारा खसूसी प्रोग्राम हर घर तिरंगा।
4: हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
5: तिरंगा सिर्फ 3 रंगों में सिमटा हुआ एक परचम नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों के फख्र, खुददारी और हुब्बुल वतनी की पहचान है। जब भी तिरंगा आसमान में लहराता है हर हिंदुस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो जाता है, और जब यही तिरंगा हर घर की छत पर लहराता है तो पूरा मुल्क एक लड़ी में बंधा हुआ नजर आता है। यौम आजादी के मौके पर मुल्क एक बार फिर हुब्बुल वतनी के रंग में रंगने के लिए तैयार है। इसी जज्बे को घर घर पहुंचाने के लिए मरकजी हुकूमत ने 9 अगस्त से मुख्तलिफ प्रोग्रामों और इकदामात का आगाज किया है। इनमें हर घर तिरंगा मुहिम सबसे नुमाया है, एक ऐसी मुहिम जिसमें तिरंगे को महज एक कौमी अलामत से

आगे बढ़ाकर हर हिंदुस्तानी के जज्बाती रिश्ते का हिस्सा बना दिया है। हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया था। इसका मकसद था कि लोग तिरंगे को अपने घरों तक लाएं और यौम आजादी के मौके पर इसे लहराकर मुल्क के प्रति अपने एहतराम और अहद का इजहार करें। इस मुहिम के पीछे एक इंतहाई जज्बाती ख्याल कार फरमा है। अब तक हमारा कौमी परचम ज्यादातर सरकारी और इदारा जाती तकरीबात का हिस्सा रहा है। हर घर तिरंगा मुहिम ने इस रस्मी रिश्ते को एक जाती और जज्बाती रिश्ते में बदलने की कोशिश की। जब तिरंगा घर घर पहुंचा, तो ऐसा महसूस हुआ जैसे मुल्क के हर खानदान का रिश्ता कौमी फख्र से मजीद गहरा हो गया हो। यह मुहिम हुब्बुल वतनी के जज्बे को मजबूत करने के साथ साथ लोगों को हिंदुस्तानी कौमी परचम की तारीख, इसकी अहमियत और इसकी अजमत से वाकिफ कराने का भी जरिया बनी है। इस साल हर घर तिरंगा मुहिम का इनकाद खास तौर पर अहम है। ये मुहिम वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के मौके पर वक्फ की गई है। मुल्क के कौमी गीत वंदे मातरम में मादर वतन के तई मोहब्बत, कुर्बानी और ईसार का जो जज्बा पोशीदा है, उसे इस बार हर घर तिरंगा मुहिम के साथ जोड़ा गया है। मुहिम के पांचवें एडिशन के तहत मुल्क भर में कई रंगारंग प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। इनमें तिरंगा यात्राएं, तिरंगा रैलियां, तिरंगा कॉन्सर्ट्स और वंदे मातरम की इज्तमाई गायकी खास तौर पर काबिले जिक्र हैं। गुज़श्ता चार बरसों में हर घर तिरंगा एक सरकारी पहल से आगे बढ़कर एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले और समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इस मुहिम को पूरे जोशो खरोश और गर्मजोशी के साथ अपनाया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्रामों में अवाम की शिरकत ने इस तहरीक को मजीद वसी और मुअसर बनाया है। आज तिरंगा सिर्फ सरकारी इमारतों या अवामी तकरीबात तक महदूद नहीं है, वो मुल्क के करोड़ों घरों तक पहुंच चुका है और हर घर में लहराता हुआ तिरंगा मुल्क के तई एहतराम, इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम दे रहा है। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत एक और मुनफरिद पहल शुरू की गई है, सूर्यपथ तिरंगा। मरकजी वजीर सकाफत और सियाहत गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुज़श्ता हफ्ते नई दिल्ली में इस पहल का ऐलान किया। सूर्यपथ तिरंगा को एक अलामती आलमी तिरंगा रैली के तौर पर पेश किया गया है। इसका रास्ता सूरज के तुलू होने की समत की पैरवी करेगा। हिंदुस्तान के मशरकी सिरे पर वाके उस हिंदुस्तानी मिशन या पोस्ट से जहां सबसे पहले सूरज तुलू होता है, कौमी परचम को बाकायदा तौर पर लहराया जाएगा। इसके बाद ये सिलसिला मशरक से मगरिब की जानिब आगे बढ़ेगा। गोया तिरंगा दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सूरज की रोशनी के साथ साथ सफर कर रहा हो। इस पहल के जरिए दुनिया भर में मौजूद हिंदुस्तानी मिशनों और बैरूने मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी बिरादरी को भी यौमे आजादी की तकरीबात से जोड़ा जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए मुल्क के अवाम से हर घर तिरंगा मुहिम में पूरे जोश और खरोश के साथ हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि तिरंगा हिंदुस्तान के फख्र की अलामत है और हर शहरी के लिए मुल्क की तामीर में अपना बेहतरीन किरदार अदा करने की मुसलसल तहरीक है। वजीर आजम ने इस बात पर भी खुशी का इजहार किया है कि इस साल की हर घर तिरंगा मुहिम वंदे मातरम के 150वें साल के नाम वक्फ है। हिंदुस्तान का कौमी परचम सिर्फ एक परचम नहीं है, ये हिंदुस्तान की आजादी की कहानी है। ये हमारे जाबाजों की कुर्बानियों की याद है। ये मुल्क के फख्र, इत्तेहाद और सालमियत की अलामत है। जाफरानी रंग हिम्मत और कुर्बानी के जज्बे का पैगाम देता है। सफेद रंग अमन और सच्चाई की अलामत है। सब्ज रंग खुशहाली और तरक्की की उम्मीद को जाहिर करता है और इन तीनों रंगों के दरमियान मौजूद अशोक चक्र

हमें मुसलसल आगे बढ़ते रहने की तहरीक देता है। हिंदुस्तानी कौमी परचम, जिसे हम प्यार से तिरंगा कहते हैं, आवाम के जज्बात और कौमी शऊर में एक खास मुकाम रखता है। कौमी परचम की मौजूदा शक्ल मशहूर मुजाहिदे आजादी, माहिर तालीम और कई जबानों के आलिम पिंगली वेंकैया ने डिजाइन की थी। पिंगली वेंकैया की पैदाइश 2 अगस्त सन 1876 को हुई थी और उनका इंतकाल 4 जुलाई सन 1963 को हुआ। उन्होंने 1 अप्रैल सन 1921 को विजयवाड़ा में महात्मा गांधी से मुलाकात के दौरान कौमी परचम का डिजाइन पेश किया था। इसके बाद 22 जुलाई सन 1947 को दस्तूरसाज असेंबली के इजलास में हिंदुस्तान के कौमी परचम को इसकी मौजूदा शक्ल में इख्तियार किया गया। यौमे आजादी और यौमे जमहूरिया जैसे कौमी त्योहारों पर तिरंगे को पूरे एहतराम और वकार के साथ लहराया जाता है। आज हर घर तिरंगा सिर्फ एक मुहिम नहीं है, ये उस जज्बे का जश्न है जो हमें अलग अलग जबानों, सकाफतों और रवायात के बावजूद एक कौम के तौर पर जोड़ता है। जब किसी घर की छत पर तिरंगा लहराता है तो वहां सिर्फ एक परचम नहीं लहराता, वहां हिंदुस्तान का फख्र लहराता है। आइए इस यौमे आजादी पर तिरंगे को अपने घर लाएं, इसकी अजमत को समझें और मुल्क की तामीर में अपने किरदार का अहद करें, क्योंकि तिरंगा हमारा फख्र है, तिरंगा हमारी पहचान है और तिरंगा ही हमारे मुल्क के तई हमारे एहतराम और अहद की शान है। हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा और हर हिंदुस्तानी के दिल में हिंदुस्तान के लिए अटूट मोहब्बत और फख्र।

done.

अपने को त्रिबंधा।

जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए, कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर

गाले और प्रेम की बंसी जहां बजाता आए शाम सवेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा जहां सत्य आ

आप सुन रहे थे मन्ना डे मोहम्मद रफी और साथियों को, मौसीकार थे एस डी बर्मन, फिल्म थी प्रेम पुजारी। और सामने जब सुनी प्रोग्राम की अगली पेशकश जिगरी दोस्त फिल्म का नाम, मोहम्मद रफी की आवाज में, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

हर मजहब के लोग हैं मिलके इस बगिया में इस महफिल में हो हे, हम सारे हैं।

और सामने प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफी और साथियों को सुनिए फिल्म है शहीद।

0: जम्मू-तवी एक्सप्रेस को कटरा तक चलाने की मंजूरी दी है। यह रेलगाड़ी जम्मू के रास्ते चलेगी और कटरा में श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले उधमपुर में शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन पर रुकेगी। शिवालिक रेलवे के जम्मू डिवीजन ने कहा है कि मस्कूरा रेलगाड़ी को कटरा तक चलाए जाने से गुजरात, राजस्थान, पंजाब और मगरबी भारत के दीगर इलाकों के हजारों मुसाफिरों को फायदा पहुंचेगा, जिन्हें फिलहाल जम्मू तवी पर उतरना पड़ता है और वहां से कटरा पहुंचने के लिए बस या टैक्सी वगैरह लेनी पड़ती है। पार्लियामेंट के दो ऐवानों की कार्रवाई गैर मुयना अरसे के लिए मुलतवी कर दी गई है। पार्लियामेंट का मानसून इजलास गुज़श्ता माह की 20 तारीख को शुरू हुआ था और आज ये इख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरान 25 दिनों में 9 नशिस्तें हुई। मानसून इजलास के दौरान लेजिस्लेटिव और कौमी मामलात पर बहस व मुबाहिसा हुआ। पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026, कौमी एजाजात की तोहीन से मुतालिक तरमीमी बिल, ट्रिब्यूनल्स इस्लाहात बिल, टैक्स और दीगर कवानीन से मुतालिक तरमीमी बिल, कौमी कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तरमीमी बिल और केरला का नाम बदले जाने से मुतालिक बिल 2026 को मंजूरी दी गई। पार्लियामेंट ने गैर मुल्की अतियात को मुंजबित किए जाने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मजीद गौर वखोज के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के सुपुर्द कर दिया। इस बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात के इस्तेमाल को मजीद शफाफ और जवाबदेह बनाना है। अलबत्ता मानसून इजलास के दौरान नीट पेपर लीक के मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई और अयोध्या के राम मंदिर चौराहे में बेसाबतगियों के मामले पर कार्रवाई में बार बार रखना पड़ा। हुकूमत की तरफ से बार बार यकीन दहानी कराए जाने के बावजूद कि तलबा के मामले पर वो तफसीली बहस के लिए तैयार है, ऑपोजिशन ने अपना एहतजाज जारी रखा जिससे ऐवान की कार्रवाई में रखना पड़ा। अपने अख्तितामी कलमात में राज्यसभा के सदनशीन सीपी राधाकृष्णन ने ऐवान की कार्रवाई में बार बार रखनांदाजी पर तशवीश का इजहार किया। जनाब राधाकृष्णन ने मुत्तला किया कि ऐवान में सिर्फ 37 घंटे और 49 मिनट ही कामकाज हो पाया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका में कई रियासतों ने भारत की आजादी, उसकी शानदार विरासत, गुनागुनियत और अमरीका में मुकीम भारत नजात लोगों की इस मुल्क के तय खिदमात को उजागर करने के लिए 15 अगस्त को इंडिया डे के तौर पर बनाने की गरज से खसूसी ऐलान जारी किया है। न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी और मैसेच्यूसेट्स के बाद डेलावेयर रियासत ने भी इस बारे में ऐलान जारी किया है। डेलावेयर के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने एक ऐलानिए पर दस्तखत किए और तमाम शहरियों से जोर देकर कहा कि वो इंडिया डे मनाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुर्मुस पर अमरीका का पूरा कंट्रोल है। साथ ही उन्होंने ये इंदिया भी दिया है कि अमरीका क़लीदी अहमियत की हामिल इस आबी गुजरगाह पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखना चाहता है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान अमरीकी कार्रवाई के तनाजुर में मौसर जवाबी कार्रवाई करने की अपनी सलाहियत खो चुका है। उन्होंने इस सिलसिले में ईरान की फौजी और सियासी कुव्वत कमजोर पड़ जाने का हवाला दिया। सदर ट्रंप ने यह दावा भी किया कि ईरान को शदीद इक्तसादी बहरान का सामना है। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान अब इलाकाई असर सोख का इस्तेमाल नहीं कर सकता जैसा कि वो पहले किया करता था। अलबत्ता ईरान की तरफ से इस पर कोई फौरी रद्दअमल सामने नहीं आया है। बलूचिस्तान के सूरब जिले में पाकिस्तानी फिजाई फौज के हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 30 से ज्यादा आम शहरी मारे गए हैं, दर्जन लोग जख्मी भी हुए हैं। एक बयान में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ग्रुप ने दावा किया है कि पाकिस्तानी फौज और फिजाइया ने सूरब के गुदार मोहल्ले और आसपास के सिविलियन इलाकों में शदीद बमबारी और फायरिंग की जिससे जानोमाल का काफी नुकसान हुआ। मस्कूरा तंजीम ने इल्जाम लगाया है कि मकामी लोगों और हुकाम को बचाव और राहत कार्रवाई अंजाम देने से रोका गया। उसने दावा किया कि अस्पतालों को फौजी अहलकारों ने घेर लिया है और डॉक्टरों पर दबाव डाला गया। ओमान ने इसकी तस्दीक की है कि उसके साहिल से दूर मौजूद एक तेल टैंकर से तेल के रिसाव उसके साहिल तक पहुंच गया है। 899 फुट के टैंकर कैरोलिना बेजिंगी में रवां साल जून में उस वक्त एक धमाके की इत्तला मिली थी जब तकरीबन 1 मिलियन बैरल रूसी खाम तेल ले जा रहा था। अमरीका में फौज का एक अपाची हेलीकॉप्टर मरकजी टेक्सास में गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में हेलीकॉप्टर में सवार दोनों अफराद की मौत हो गई और एक जंगलाती इलाके में आग भड़क उठी, जिसके बाद कई मकानात को खाली कराया गया। कोलंबिया के सदर ने इक्तसादी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है ताकि हुकूमत वहां आए ताकतवर जलजले के बाद राहत और बाजाबादकारी के लिए गैर मामूली इकदाम कर सके। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मर्दों का सिंगल्स फाइनल दो अमरीकी खिलाड़ियों ब्रेंडन निकाशिमा और बेन शेल्टन के दरमियान खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में एहतजाज की हिमायत में आज दुनिया भर में रहने वाले कश्मीरियों से मुजाहरे करने की अपील की है। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों ने 15 अगस्त को इंडिया डे के तौर पर मनाने का खसूसी तौर पर ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबनाए हुरमुस पर अमरीका का पूरा कंट्रोल है और कोलंबिया ने ताकतवर जलजले के बाद राहत कार्रवाइयों के लिए गैर मामूली इकदाम की खातिर इक्तसादी इमरजेंसी का ऐलान किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में भी गजारी के 70 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सवेरे शाम के 5 बजे चाहते हैं यहां हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शाम में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार। आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस हिंदी है पंजाबी सेवा शाम के 5 बजे ने और साड़ी दूजी सभा शुरू होती है। पेशे सराय के प्रोग्राम झोक माही दी।

ऑल इंडिया रेडियो सराइकी प्रोग्राम है। हरजीत कौर हाजर है तुहाडी सेवा विच सराइकी गीतां दा प्रोग्राम लेके। सराइकी गीत साडा विरसा है जेड़ा सैकड़ा सालां दा पंध तय करके आए हन। इना दी मिठास, इना दा स्वाद, इना दी बोली साडे दिल को सुकून दिंदी है। ए सराइकियां दी जुबान ते हमेशा चढ़े रहंदे हन। ते सराइकी गीत गावण आले कलाकारां दा तां जवाब ही नहीं। जुगलबंदी सराइकी गीतां विच एक गल करेंदा है ते दूजा उंदा जवाब देंदा है। हुण सराइकी गीत रोजाना लिखे वेंदे हन। इस तरह सराइकी गीत अगू वधेंदे वेंदे हन। सुना लियो प्यार वी की शै है, मिलन विछोड़ा मोहब्बत दूरियां भाषा कोई भी थी वे। गीतां विच प्यार मोहब्बत दी गल ही बहु होंदी है। छोहे छोहेड़ियां दी मोहब्बत दी गल जिस नाल प्यार थींदा है ना थींदा है। इस विच रोक टोक कैनी ते छूहा जे तो छुहेर को दिल दी डूंघाइयां तो वध प्यार करेंदा है ता उसके हां को एक सुकून जिहा मिलता है कि हां उसका कोई चाहन आला है ते उंदे लई ओ पागल जिहा हुई फिरदा है। जी को है गीत मैं तुहा को सुनेंदी हां। मैं तपदियां गलियां विच फिरदा दीदार मेरा दरकार वे तू, दुनिया दी ना कोई लोड़ माही एक तेरा चाहिदा प्यार मेकू। अबू गीत है तेरे इश्क में सावल यार मस्त बुलंद कीता।

सच्ची से नित्य सदा इंसान हम।

प्यार एक बहुत बड़ी नियामत है। प्यार किता नहीं वेंदा, एक थींदा है। नजदीकियां प्यार विच बदल वेंदियां हैं, तो दूरियां आते मिट वेंदियां हैं। इस प्यार विच बोली, धर्म, जात, रंग दी किथाई छा नहीं। जरूरी नहीं रंग गोरा थी वे, सामने रंग विच भी खूबसूरती लुकी थींदी है। गल ता प्यार दी है। जडन हां को कोई चंगा लगेंदा है ना, तो मन करेंदा है कोल कोल बहवण दा, गाला करेंदा। गल ता हां को चंगी लगेंदी है, भावे उदे नैन नक्श की हो जाएगी होवन, रंग केहो जिहा भी थी वे। प्रोग्राम दा अगला गीत मैं तुहाको कुछ इसी तरह दा सुनेंदी पई हां। गीत है मैं आप में रंग दी सावली, मेरा यार भी रंग दा सावला। भाई वाह, फिर तो बहुत सोहनी जोड़ी है। आओ गीत दी चस गिनो।

ਮਿਲ ਜਾਏ ਹਣ ਗਾਏ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦਾ।

ਮਾਰਿਆ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਚਾ।

वाले किते घिमकी आई हां एक बहुवधिया गीत जिस विच छोहर को छुहेर नाल प्यार है पर छुहेर को है कि नहीं पता क्या नहीं कदई कदई ता इंज थींदा है कि छुहर इंतजार करेंदा है छुहर दी कि आज उस मिलन दा वादा कीता है वो जरूर आवन आली है पर छुहेर नहीं आंदी अगले दिन मिलन दा वादा करेंदी है वल भी नहीं आंदी इनको के आखसू करार करेंदी है पर आंदी नहीं इस हाल को देते हुए एक गीत जिस विच छोहर सोचेंदा है कदे यार होंदा साडा कदे प्यार होंदा साडा आओ चस गिनेंदे हां इस गीत दी कलाकार हिन महक मलिक।

प्रोग्राम चल रहे हैं जी मजे दिन है मजा की है पंजाब के दिन जो मजा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रावी और ब्यास दरियावां दे विचकार वसिया एक खेतर अमृतसर गुरदासपुर पठानकोट तरन तारण पंजाबी साहिब की जन्म भूमि रहा है। इथों की मिट्टी च बाणी की मिठास है गुरुआ की बाणी है वारा की गूंज है वंड का जख्म भी है। मजे की बोली नूं ही स्टैंडर्ड पंजाबी का दर्जा मिलिया इसलिए सुभावक है कि मांझे ने सब तो वध अते सब तो प्रभावशाली लेखक दिते। पंजाब मांझे दा लेखक सिर्फ कहानी नहीं लिखदा ओ इतिहास लिखदा है लोकां दा दर्द लिखदा है अते सच बोलण दी हिम्मत भी रखदा है। मांझे दा साहित गुरु नानक देव जी तो शुरू हुंदा है। गुरु नानक दा जन्म तलवंडी च होया जो अज दे ननकाणा साहब है पर उन्हां दीआं यात्रावां अते उपदेशां दा केंद्र माझा ही रहा। गुरु अर्जुन देव जी ने अमृतसर च हरिमंदर साहब दी नींह रखी अते आदि ग्रंथ दा संपादन किया। गुरु ग्रंथ साहब की भाषा माझे दी बोली दे बहुत नेड़े है इसलिए माझे दे लेखकां लई माणी ही पहला स्कूल सी। पर गुरदास जी जो अमृतसर दे रहण वाले सन नूं पंजाबी गद दा पिता मां कहा गया। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਫਲਸਫਾ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਵੀ ਨਿਮਾਣਾ ਤੇਰਾ ਮਰ ਜਾਣਾ।

ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬੇਲੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ

माजी का लेखक एक किसान वांग है। वो बीज बीजता है, सिंचता है, अधिक त्योहार और आवी सेंता है, पर वो लिखना नहीं छड़ता। वारशाह ने कहा सी एक इश्क दा दर्द मंदा, माजी दे हर लेखक दे अंदर यही इश्क दा दर्द है, अपनी धरती, अपनी बोली ते अपने लोकां लई। इसलिए जदों तुसी अगली बार अमृतसर दे हल्के दे कंडे बैठो तो याद रखना कि इस हवा च भाई वीर सिंह दी अरदास है, गुरदयाल सिंह दी मड़ी है, अते वरियाम संधू दे डाकिये दी घंटी भी। माझा सिर्फ इलाका नहीं, एक मानसिकता है, अते मानसिकता कलम राही ही जिउंदी है।

हुई आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले साडी स्टूडियो दी घड़ी ते 6:30 मिनट हो रहे ने। लाहौर पेश है देहाती प्रोग्राम।

0: पटवारी साहब घर ही हूं।
1: लंगो लंगो लंगो बुआ खुला ही है।
0: पटवारी साहब जय हिंद जी।
1: जय हिंद जी, जय हिंद जी। बल साहब बच्चे जय हिंद जी। की हाल चाल नी तुहाडा?
0: हाले चाले वाहवा वधिया। चढ़दी कला सुनाओ।
1: तगड़ा तगड़ा बाबू जी। जो असि हाल चाल पुछदे आ।
0: हां जी,
1: अज बहुत अहम दिहाड़ा है।
0: अच्छा जी।
1: हां जी, अहम दिहाड़ा की है कि वर्ल्ड अंग दान दिहाड़ा।
0: क्या बात है जी।
1: विश्व अंग दान दिहाड़ा।
0: ठीक है जी।
1: जो आप सोचते हैं या फिर करते हैं,
0: हाँ जी,
1: कि आपां नूं कोई भी जी बॉडी का शरीर का,
0: हाँ जी,
1: कोई अंग दान करना चाहिए
0: जी,
1: इसके बारे ना साडे अलग अलग विचार आ जाते हैं।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल।
1: असि सोचते हैं कि साडे शरीर का जे असि अंग दान कर देंगे,
0: हाँ जी,
1: तो साडी तां गति नहीं होनी।
0: हाँ जी,
1: हाँ जी,
0: सही गल है जी।
1: असि फिर झटकते हैं
0: जी,
1: सोचते नहीं।
0: जानकारी की घाट है जी।
1: जानकारी की घाट है। वैसे पंजाब के अगर सूबे की गल करिए ना
0: जी,
1: तो हुशियारपुर जिला एक इदा का है।
0: अच्छा जी।
1: जिसने सब तो ज्यादा ये फॉर्म भरे ने।
0: क्या बात है।
1: अपने जो अंग दान कर दे।
0: हाँ, तो बिल्कुल नवी जानकारी दी।
1: देखो ना, ये जड़ी जो आप अंग दान की गल करिए, इस दे नाल सानू कितना सुकून मिलता है जे असि अंग दान करिए उस इंसान दे लई।
0: हाँ जी,
1: कि आप तो चले गए हूं।
0: पटवारी साहब सोच के कितना सुकून मिलता। देखो भी अपना जो अंग
1: आ
0: किसी होर दे शरीर दे विच जाके तो उहदा कितना फायदा करूगा।
1: अच्छा, हाँ बिल्कुल। गल है ना कि ये जो असि अंग दान करते हैं, क्योंकि जो इंसान रब दे कोल पहुंच जांदा है,
0: बिल्कुल जी,
1: हां जी, उस वेले तां तुसीं बॉडी नूं फिर जलाना ही हुंदा।
0: हां जी,
1: जे असीं उहदे फेफड़े है जिवें या उहदा लिवर है
0: जी,
1: जिगर है, जे असीं उहदे नूं उह दान कर दईए,
0: हां जी,
1: हां जी, तो उह किसे दे कम आ जे।
0: कम आ जे, बिल्कुल जी।
1: ते उह कम आण दे नाल इह है वी उह अपनी जिंदगी जिहड़ी है उह सुकून दे नाल जी सकदा।
0: मैं तां कहिंदा उह जिस जिहड़ा बॉडी पार्ट किसे दे शरीर विच गया आ, उह इक नहीं उह सवां ते दो जिंदगियां जी रिहा
1: है। पर आपां इहदे बारे एक उपराला ही नहीं करदे।
0: हां जी।

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है, कोई भी बटन दबर तो पहला एक मिनट के लिए रुको, सोचो, पुष्टि जरूर कर लो।
3: बस अब तुहानू हुण एक रूपक सुनाने।
4: अच्छा जी,
3: सोहन सिंह पकड़ा।
4: ठीक है जी,
3: सुनाइए
4: जी। सुना जी।

अमरीका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने एक बार लिखा सी कि वो आदमी नमक हलाल नहीं जो किसी महान काम ले अपनी दे अपनी खुशहाली ते जिंदगी नु खतरे विच ना पा सकता होवे ते फिर अपनी मातभूमि नु राजनीतिक समाजिक धार्मिक ते आर्थिक गुलामी तो मुक्त करवाउण तो वड्डा भला होर केड़ा काम हो सकता है। अज असी अजिहे ही महान देश भगत बाबा सोहन सिंह भकना की गल करांगे जिन्हां दा जन्म जनवरी 1870 विच उत्तरी अमृतसर दे पिंड खुतराई खुर्द विच पिता भाई करम सिंह ते माता राम कौर दे घर होया। पिता करम सिंह दा जद्दी पिंड अमृतसर विच ही भकना सी। सोहन सिंह दा बचपन ते मुरली सिख्या पिंड भकना विखे हुई। सोहन सिंह 1907 दे शुरू विच ही देश दी आजादी लई ते किसान अंदोलन च सरगर्म होके हिस्सा लैण लग पए। नामधारी संप्रदाय नाल नेड़ता ने भी नौजवान सोहन सिंह नूं नैतिकता धार्मिक प्रवृत्ति ते समाज सेवा दे गुण अपनाउण लई प्रेरित कीता। खेतीबाड़ी दा किता घट लाहेवंद होण करके होर हजारां भारतीयां दी तरह सोहन सिंह ने भी अमरीका जा के अपनी किस्मत अजमाउण दा फैसला कीता ते ओह 1909 विच अमरीका दे शहर सीटो पुज गए। लकड़ी दे कारखाने च मजदूरी करनी शुरू कर दित्ती। अमेरिका ते कनेडा विच उस वेले आउण वाले प्रवासी भारतीयां नूं सम्मान पूर्वक नजरां नाल नहीं वेख्या जांदा सी। कई कानून बना के उन्हां दे समाजिक ते राजनीतिक अधिकारां ते बंदशां लाईआं गईआं सन पर बुद्धिजीवी लाला हरदयाल ते होर पढ़े लिखे भारतीयां दे विदेश विच आ जाण ते भारतीयां ने राजनीतिक तौर ते अपने आप नूं संगठित करना शुरू कर दित्ता। चंगे हो रहे आर्थिक हालात ते वध रही गिणती कारण भारतीयां विच आत्म विश्वास वध जाण ते ओह हुण देश दी आजादी बारे भी सोचण लग पए। इस दे सिट्टे वजो 1913 विच पोर्टलैंड विखे एक हथियारबंद संघर्ष दे जरिए भारत नूं आजाद करवाउण लई इंडियन एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट दी स्थापना कीती गई। इंडियन एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट दी स्थापना कीती गई जिस दे पहले प्रधान बाबा सोहन सिंह भकना चुने गए। इस संगठन वालों शुरू किए गए रसाले गदर कारण ही बाद विच इस संगठन का नाम गदर पार्टी पै गया। कनेडा विच हुई कामागाटा मारू की घटना पहले विश्व युद्ध की शुरुआत ते जर्मन की सहायता ने गदरिया के हौसले बुलंद कर दिते। सोहन सिंह भकना ने कामागाटा मारू जहाज विच वापस आ रहे बाबा गुरदित्त सिंह नूं आप हथियारां दी खेप पहुंचाई। उत्तरी अमरीका ते दक्षिणी पूर्वी एशिया विच मौजूद गदरिया ने भारत विच हथियार भेज के वड्डे पद्धर ते गदर दी योजना तैयार कीती ते बाबा सोहन सिंह आप इस योजना नूं अमली जामा पहनाउण लई भारत लई रवाना हो गए पर अंग्रेज सरकार दा खुफिया तंत्र गदरिया दी सारी योजना ते नजर

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ 7 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਪੌਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨ ਵਾਣੀ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19%, जबकि राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद में विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार तो संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा होने नहीं दी।
3: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में। लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। कोई लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया गया। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर के गुरुद्वारा माता साहिब देवान जी मुगत की सीढ़ियों से उतरते समय एक सेवादार ने श्री बादल पर चाकू से हमला किया। उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हमले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये पिछले 2 साल में श्री बादल पर हुआ दूसरा हमला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा एकायदा अल हिंद AQIS को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले साल नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेंगहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमान बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है। उन्होंने कहा कि कलाकार देश की समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई और मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश

0: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, केरलम, मांडवी, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। अगले दो दिनों तक जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में आंधी चलने की आशंका है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीत लिया है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक समेत कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक हासिल किए। भारत ने पुरुष सेबर, महिला सेबर, पुरुष एपी, महिला एपी और महिला फॉयल स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते, जबकि पुरुष फॉयल में रजत पदक अपने नाम किया। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संभव, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
4: नमस्कार।
3: गौतम
4: जी, प्रतिमा,
3: देखिए खेती केवल मिट्टी पानी और बीज का मेल नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं।
4: बिल्कुल,
3: इसमें प्रकृति के अनगिनत जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीट पतंगे और पक्षी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही जैव विविधता हमारी खेती को टिकाऊ और प्रकृति के अनुकूल बनाने में मदद करती है।
4: जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, और आज का विषय भी हमारा यही है, टिकाऊ कृषि हेतु जैव विविधता। और साथ ही साथ हम लोग राष्ट्रीय बंबू मिशन की भी बात करेंगे और अपने जो श्रोतागण हैं उनको कृषि सलाह भी देंगे और आजादपुर मंडी से जो प्राप्त भाव होते हैं हमारे पास वो भी हम अपने श्रोताओं के साथ साझा करेंगे।
3: यानी कि बहुत सारा खजाना लेकर आए हो आज आप। और एक चीज और मैं बता दूं, साथ ही हम अपने किसान भाई बहनों को एक देशभक्ति गीत भी सुनवाएंगे।
4: जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, और 15 अगस्त आने ही वाला है।
3: हाँ।
4: और ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है। सबसे जो खास बात है प्रतिमा जी, इतनी विविधताओं के बावजूद हम सभी भारतीय हैं और देश को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का जो प्रेरणा है वो देती है।
3: बिल्कुल, और देखिए ना 15 अगस्त आने ही वाला है और जब भारत विकास, इनोवेशन और ग्लोबल लीडरशिप की बात करता है और तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में हमारी राष्ट्रीय एकता और नागरिक चेतना का महत्व दोनों ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
4: जी बिल्कुल
3: गौतम, हमारी केंद्र सरकार हो या हमारी राज्य सरकारें हो, किसान के हित को बड़ा ध्यान रखती हैं। हर सरकार ये चाहती है कि हमारे किसान भाई बहनों की जो खेती है, उत्पादन है, कई गुना बढ़े और उनकी पूंजी बढ़े ताकि हमारे किसान भाइयों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। और देखिए इसीलिए तमाम योजनाएं भी लागू करती हैं। इन्हीं में से एक योजना है राष्ट्रीय बांस मिशन, नेशनल बैम्बू मिशन, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो NBM, जिसका उद्देश्य देश में बांस की खेती, उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देना है। और साथ ही इस मिशन के प्रमुख उद्देश्य है कि किसानों को बांस की खेती के लिए प्रोत्साहित करना, बांस की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाना।
4: बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने प्रतिमा जी, बांस की खेती जो है वो पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है और मिट्टी के कटाव को कम करने में मदद करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। और बांस से बने उत्पाद की बात करें अगर हम लोग, तो प्लास्टिक के विकल्प के रूप में भी इसको देखा जा सकता है, क्योंकि प्लास्टिक से पर्यावरण को बहुत ही क्षति पहुंचती है। तो ये हम सकते हैं कि बांस मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और छोटे उद्योगों को बढ़ावा भी मिल सकता है।
3: बहुत अच्छी बातें बताई गौतम, और बांस आधारित उद्योग और रोजगार के अवसर पैदा करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। और देखिए हमारे जो युवा साथी हैं या हमारे वो किसान भाई बहन जिनके पास छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं, वो भी चाहें तो बांस के जो उत्पाद होते हैं उन्हें बनाकर अच्छा खासा बाजार से अपनी आय का अर्जन कर सकते हैं। तो खास बात यही कह सकते हैं कि बांस को हरा सोना भी कहा जाता है।
4: जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, और बांस मिशन जो है वो किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार पैदा करने, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अगर बांस की खेती और इसके उत्पादों को सही तरीके से बाजार में तकनीकी सहायता मिले तो किसानों और देश दोनों के लिए ये लाभकारी साबित हो सकता है।
3: बिल्कुल, और एक लाइन में और भी कहूंगी कि बांस से बने उत्पादों का मूल्य संवर्धन और बाजार उपलब्धता बढ़ाना भी हमारे किसान भाइयों के हाथों में है, हमारे युवाओं के हाथों में है, और इसके उत्पाद बाजार में लाए तो अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं और इस मिशन को आगे बढ़ाएं। गौतम, हमने शुरू में बात की थी कि आज हम टिकाऊ कृषि हेतु जैव विविधता पर बात करेंगे, तो देखिए बात करने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रुचि बंसल, वरिष्ठ वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
5: धन्यवाद।
3: सबसे पहला तो प्रश्न यही बनता है कि जैव विविधता क्या है?
5: देखिए जैव विविधता शब्द से ही पता चलता है।
3: हाँ।
5: जैव माने की जीव और विविधता माने उनमें पाए जाने वाली भिन्नता। तो हमारे चारों तरफ जितने भी जीव जंतु हैं उनमें पाए जाने वाली जो विभिन्नता है वो ही जैव विविधता है। अब यदि हम कृषि के संदर्भ में बात करें तो हमारे किसान भाई बहन जो भी फसलें लगाते हैं वो विभिन्न तरह की फसलें जो हैं वो जैव विविधता का हिस्सा है। जैसे वो अनाज भी लगाते हैं, दलहन लगाते हैं, तिलहन लगाते हैं और इन फसलों की भिन्न भिन्न किस्में लगाते हैं। जैसे अगर आप देखें तो उत्तर भारत में अलग किस्में लगाई जाती हैं और दक्षिण भारत में अलग तरह की किस्में लगाई जाती हैं। तो ये सभी जो किस्में हैं ये हमारी फसलों की विविधता है। अब यदि हम मिट्टी की बात करें तो इसी तरह से हमारी मिट्टी में भी बहुत तरह के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, बहुत से बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, बहुत से फंगस भी पाए जाते हैं। ये जो बैक्टीरिया और फंगस हैं ये हमारी मिट्टी को विविध बनाते हैं। यदि आप देखें तो मिट्टी भी बहुत तरीके की होती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। तो हर तरह की जो मिट्टी है जो अलग अलग स्थानों पर पाई जाती है इसमें पाए जाने वाली जैव विविधता भी अलग अलग होती है। अब यदि हम कीट पतंगों की बात करें तो हमारे फसलों में भी इतने सारे कीट पतंगे लगते हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो हमारी फसलों के लिए हानिकारक हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमारी फसलों के लिए लाभदायक भी हैं,
6: जो मित्र हैं हमारे,
5: जो मित्र हैं हमारी फसलों के। तो उनकी जो विभिन्नता है वो भी इस जैव विविधता का हिस्सा है। और ये जो विभिन्न तरह की विभिन्नता है यही हमारी विभिन्न तरह की उत्पादकता को जन्म देती है। तो यही हमारी जैव विविधता है।
6: बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में आपने बताया कि जैव विविधता क्या होती है। साथ ही इसमें शब्द जुड़ता है कि टिकाऊ कृषि क्या है, तो टिकाऊ कृषि के बारे में भी बताएं।
5: टिकाऊ खेती वह खेती है जो लंबे समय तक चले और जिसका समन्वयन हो आर्थिक भी और हमारी पारिस्थितिकी स्थिरता में जो योगदान दे। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे आज की डेट में उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत सारे रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं। छोटे समय में तो वो रासायनिक खादें बहुत ज्यादा फायदा दे सकती हैं, अच्छी उत्पादकता देती हैं, मगर लंबे समय में यदि देखा जाए तो वो आपकी मिट्टी को खराब कर रही हैं। तो इस तरह की खादों का सीमित उपयोग और ऐसी सभी प्रैक्टिसेस अपनाना जो कि हमारे पर्यावरण के साथ संतुलन में हो और साथ में लागत भी दें, तो इस तरह की खेती को हम कहते हैं टिकाऊ खेती।
6: डॉक्टर रुचि, क्या जैविक खेती भी जैव विविधता के साथ हम इसको जोड़ते हैं?
5: देखिए, टिकाऊ खेती है, इसका आधार है जैव विविधता। आप जितनी तरह की फसलें लेंगे, अगर आप अनाज के बाद अनाज ले रहे हैं तो मिट्टी की उर्वरकता में फर्क होगा, आपको बाहर से ज्यादा रासायनिक खाद डालनी पड़ेगी। अगर आप किसी एक अनाज के बाद में दलहन ले रहे हैं तो वो प्राकृतिक रूप से आपका जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता को बढ़ाता है। सीधे तरीके से ही जो टिकाऊ खेती है वो जैव विविधता पर आधारित है।
6: तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कीटों की, जीवों की और मित्रों की बात की जो हमारी खेती के लिए मित्र कीट होते हैं, तो किसान के खेत में जैव विविधता को बनाए रखने के लिए कौन कौन से कीटों और जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है?
5: देखिए, वैसे तो जब बात

0: पिता की आती है, तो सभी जो जीव जंतु कीट पतंगे हैं उनका अपना एक योगदान है। लेकिन फिर भी यदि हम देखें तो जो कृषि में लाभ देने वाले जीव हैं, जैसे केचुए हो गए या मधुमक्खी हो गई, तितलियां हो गई, जो मुख्य रूप से परागण का काम करती हैं, तो इनकी विविधता बने रहना जरूरी है। तो हमारे किसान भाई बहन जितने तरह की फसलें लगाएंगे उससे ये विविधता बनी रहेगी, तो इसके लिए फसल विविधीकरण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
1: तो डॉक्टर साहब, कई बार ये भी होता है कि किसान भाई अपने खेत में रासायनिक खादों का छिड़काव कर रहे हैं, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि इन जीवों को भी हम सेफ रख सकें?
0: देखिए, पहला तो है कि हम रासायनिक खादों का उपयोग कम से कम करें। जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उनका भी उपयोग हम कम करें, जो आपके जैविक पेस्टिसाइड्स हैं उनका उपयोग आप ज्यादा करें। जहां आवश्यकता है उतना ही आप ये जो फर्टिलाइजर है या पेस्टिसाइड है उतना ही अपनी फसल में डालें। यदि आप ज्यादा डालते हैं तो उससे हानिकारक कीट हैं, उनकी जो जनसंख्या है, उनकी जो विभिन्नता है वो बढ़ती है। जब हम बहुत अधिक मात्रा में किसी भी केमिकल का, रसायन का प्रयोग अपने खेत में करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में ये जो कीट पतंगे हैं ये भी उतनी तेजी से खुद को परिवर्तित करते हैं और नई नई प्रजातियां बनती जाती हैं। जैसे कि हमने कोरोना के केस में भी हमने अपने चारों तरफ देखा कि पहले कोरोना का एक स्ट्रेन आया, फिर कोरोना के कई स्ट्रेन आते चले गए। इसी तरह से हमारे जो पौधे हैं उनमें पाए जाने वाले जो विषाणु हैं वो भी इसी तरह से यदि हम बार बार केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं तो उसके विरुद्ध में प्रतिरोधी हो जाते हैं और वो नई किस्में बना लेते हैं। तो हमें जब जितना प्रयोग की आवश्यकता है अपनी फसलों में उतने ही रसायनों का प्रयोग करना है, और इसी तरह से न सिर्फ रोगों के विरुद्ध बल्कि अपनी मिट्टी में भी जो रासायनिक खाद है जहां और जितनी आवश्यकता है हमें उतनी ही रासायनिक खाद डालनी है। साथ में इस रासायनिक खाद के अतिरिक्त में जहां पे भी पॉसिबल हो वहां पे जैविक खाद का भी प्रयोग करें।
1: जी डॉक्टर साहब, टिकाऊ खेती के लिए अगर हम बात करें तो किसान भाइयों के लिए क्या पोषक तत्वों का प्रबंधन पर भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये जो हम जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब हमारे जो पौधे हैं उनको पोषण देते हैं और पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है और हमें अच्छी पैदावार मिलती है। यदि हम अनाज के बाद में दलहन लगाएं तो जो दलहन है इनकी जो जड़ें होती हैं उनमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं और उन नोड्यूल्स के थ्रू ये जो वातावरण में नाइट्रोजन पाई जाती है उसका स्थिरीकरण करती हैं। तो एक तरह से आपके खेत में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन मिल जाती है, तो इसकी वजह से आपका जो दलहन है उसमें आपको इनिशियली बहुत ज्यादा नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यदि हम ये तरीके अपनाएं हम एक तो अपनी लागत बचा सकते हैं, हमें कम फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, और दूसरा जो हमारी मिट्टी है उसमें प्राकृतिक रूप से पोषण प्रबंधन हो रहा है। इसी तरह से यदि हम फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस में क्या होता है, फॉस्फोरस जो है वो मिट्टी के साथ में बंध जाता है और जो हमारे पौधे हैं उनको ग्रोथ के लिए नहीं मिल पाता। तो ऐसे बहुत सारे बाजार में फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया उपलब्ध हैं जिनको अगर आप अपनी मिट्टी में डालें तो वो जो आपकी मिट्टी में पहले से उपस्थित फॉस्फोरस है उसको घुलनशील बना के पौधे को दे देता है, जिससे पौधे की वृद्धि होती है और पौधे की पैदावार अच्छी होती है। तो इससे आप जो भी फॉस्फोरस डाल रहे हैं, SSP डाल रहे हैं या DAP डाल रहे हैं तो उसकी लागत कम हो जाती है। और फिर ये प्राकृतिक तरीका भी है तो ये पर्यावरण के तौर पे भी यदि हम देखें तो ये हमारे पर्यावरण को फायदा देने वाला है।
1: तो डॉक्टर साहब, ये भी एक सवाल आता है कि जब भी कोई किसान भाई अपनी खेती करने जा रहा है या खेत की तैयारी कर रहा है तो उसको सबसे पहले अपनी मृदा की भी जांच करा लेनी चाहिए।
0: यदि हम हर बार फसल लगाएंगे और हर बार उसी मात्रा में रासायनिक खाद डालते रहेंगे तो हमें कई बार ये भी नहीं पता होता कि क्या हमारी फसल को उतने खाद की आवश्यकता है या नहीं है। यदि हम समय समय पर मिट्टी की जांच कराते रहेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी जो मिट्टी है इसमें किस पोषक तत्व की कमी है और कौन से पोषक तत्व जो है वो सफिशियंट मात्रा में है। तो आप जिस पोषक तत्व की कमी है आप सिर्फ वही मिट्टी को खाद से या जैविक खाद से, रासायनिक खाद से उसकी पूर्ति कर सकते हैं।
1: तो सब अगर मिट्टी की जांच हमें करनी ही है तो किसान भाइयों को छोटे से शब्दों में ये भी बता दें कि किस तरीके से वो अपने खेत की मिट्टी निकालें और कितनी मात्रा में लेके जाएं और लैब में उसकी जांच कराएं।
0: जैसे मिट्टी की जांच के लिए हम यूजुअली 15 से 30 सेंटीमीटर तक का जो एरिया है उसमें से मिट्टी लेते हैं। ये फील्ड की टॉप सॉइल कहलाती है। ज्यादातर पौधों की जो जड़ें होती हैं वो इस हिस्से से ही जो पोषक तत्व

0: है उनका न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करती हैं। तो ये आप अपने खेत के भिन्न भिन्न हिस्सों से उनको मार्क कर लें और भिन्न भिन्न हिस्सों से आपको सैंपल इकट्ठे करने हैं, उन सैंपल को मिक्स करना है, फिर उस सैंपल के फिर से आपको कई हिस्से करने हैं, फिर उन्हें मिक्स करना है। इस तरह से आपको एक सैंपल बनाना है और उस सैंपल को आपके आसपास जो भी सरकारी संस्था जो मिट्टी का जांच कर रही है आप वहां अपने सैंपल दे सकते हैं। तो वैसे तो आपको रिपोर्ट में लिखा होता है, आपको देख के पता चल जाएगा कि कौन सा जो पोषक तत्व है वो कम मात्रा में है या नहीं है। अदरवाइज आप किसान कॉल सेंटर या फिर आप जो भी लैब है जहां आप जांच के लिए दे रहे हैं वहां पे बात करके भी आप पता कर सकते हैं कि आपको कितनी खाद और कब डालनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल, और जैव विविधता की बात हो या पर्यावरण की बात हो वो और खेती की बात हो तो हमारी मिट्टी का महत्वपूर्ण योगदान और मिट्टी ही हमारी माँ है कहा जाए तो। तो डॉक्टर साहब, पर्यावरण पर जैव विविधता का क्या प्रभाव पड़ता है?
0: देखिए, जैसे हमने अभी बात की टिकाऊ खेती की, तो टिकाऊ खेती वही खेती है जो पर्यावरण के साथ में समन्वय में चलती है। यदि हम पर्यावरण पे किसी भी तरह का बहुत ज्यादा केमिकल इस्तेमाल करेंगे तो देखिए ना ये सिर्फ केवल हमारी मिट्टी को प्रभावित करता है, हमारे वायु को भी प्रभावित करता है और हमारे जल को भी प्रभावित करता है। अभी देखिए बहुत ज्यादा बारिश का सीजन है, तो होता क्या है कि आपने खाद डाला और यदि बारिश हो गई तो उसमें से सिर्फ खाद का कुछ हिस्सा पौधे द्वारा लिया जाता है, बाकी का जो हिस्सा है वो लीचिंग के तरीके से बह जाता है और वो बह के हमारे पानी में मिल जाता है। तो यदि ये पानी में मिल गया तो इसने न सिर्फ मिट्टी को प्रदूषित किया बल्कि इसने पानी को भी प्रदूषित किया। और यदि हमारे मवेशी उस पानी को पीते हैं तो कहीं ना कहीं ये उस खाद्य श्रृंखला से होता हुआ हम तक पहुंच जाता है। पहला चीज तो है कि हम रसायनों का उपयोग कम से कम करें, चाहे वो रसायन खाद के तरीके से हैं, चाहे वो रसायन आपके पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के तरीके से हैं, कीटनाशकों की भी बात करें या वीडिसाइड्स की भी बात करें, जहां तक पॉसिबल हो जो आपके जैविक विकल्प हैं उनका इस्तेमाल करें। अगर आपको खाद इस्तेमाल करनी भी है तो अगर आप 3 डोज देते हैं तो आप 2 डोज जो है वो एक केमिकल फर्टिलाइजर का और 1 डोज जो है वो आप किसी जैविक खाद का दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना उत्पादन भी बनाए रख सकते हैं और साथ में पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।
1: जी डॉक्टर साहब, आज के दौर में देखा जाए तो हमारी सरकारें यही चाहती हैं कि हमारे किसान भाइयों का जो उत्पादन है वो कई गुना बढ़कर मिले, और कई बार किसान भाई ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा उत्पादन की चाह में बहुत ज्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग भी कर लेते हैं, तो ऐसे में हमारी जैव विविधता या पर्यावरण पर क्या नुकसान हो सकते हैं?
0: जैसे बहुत अधिक केमिकल का इस्तेमाल तो मैंने आपको बताया, आजकल खाने का भी चेकिंग किया जाता है, उसमें एक लिमिट के बाद यदि पेस्टिसाइड रेजिड्यू है इसका अर्थ है कि वो खाने लायक नहीं है। तो यदि हम बहुत अधिक केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि उस पेस्टिसाइड का रेजिड्यू हमारे खाने तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले तो यदि वो पेस्टिसाइड हम तक पहुंच रहा है या हमारे मवेशी तक पहुंच रहा है तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सीधे तौर पे ही बहुत ही हानिकारक है। और इसके अतिरिक्त यदि हम पर्यावरण के विभिन्न घटकों की बात करें तो कई बार हम स्प्रे करते हैं, एरोसोल भी स्प्रे करते हैं, तो वो आपकी वायु को भी प्रभावित करता है। फिर आपने यदि बहुत अधिक खाद डाला है, केमिकल डाला है, तो वो आपकी मिट्टी को भी प्रभावित करता है और वो बारिश के थ्रू या लीच आउट होके पानी को भी प्रदूषित कर सकता है
1: और जीव जंतुओं पर भी बड़ा प्रभाव डालता है।
0: जी बिल्कुल, तो ये न केवल मानव स्वास्थ्य बल्कि वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और सभी के लिए बहुत ही हानिकारक है।
1: तो डॉक्टर साहब, ऐसे में हमारे किसान भाइयों या हम सब नागरिकों का क्या दायित्व बनता है कि हम अपने पर्यावरण को भी बचा के रखें, जैव विविधता को भी सेफ रख सकें?
0: देखिए, सबसे पहले तो विभिन्न विभिन्न किस्में लगाएं, विभिन्न तरह की फसलें लगाएं, जहां तक हो सकता है मिट्टी की जांच कराएं, जहां तक हो सकता है वहां पे जैविक खादों और जैविक जो प्रोडक्ट्स हैं उनका आप इस्तेमाल करें, जहां जरूरी है वहां आपको रासायनिक खादों का प्रयोग करना ही होगा और सिर्फ आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि लग रहा है कि बहुत तेज पैदावार हो जाएगी तो हमने बहुत ज्यादा यूरिया डाल दिया या बहुत ज्यादा डीएपी डाल दिया, ऐसा नहीं करना है।
1: जैविक खादों का ज्यादा प्रयोग
0: करना है।
1: तो डॉक्टर साहब, कुछ फसलें ऐसी भी होंगी जो हमारी मृदा को भी मजबूत बनाते हैं और पर्यावरण में भी बहुत लाभदायक होते हैं, वो कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं, या मिलेट्स की बात करें?
0: ये बिल्कुल बिल्कुल
1: जी।
0: देखिए, जैसे एक तो अभी मैंने दलहन ही बताया, दलहन तो सबसे पहले आपका प्राकृतिक रूप से ही जो मृदा है उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है, तो एक तरह से आपकी मिट्टी को नेचुरल तरीके से ही खाद मिल जाती है। दूसरा, यदि हम बात करें मिलेट्स, तो आजकल सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं और श्री अन्न जिसे कहा जाता है, इस पर बहुत जोर है, तो देखिए, एक तो श्री अन्न उगाने का फायदा ये है कि इसके लिए जो आपके इनपुट्स हैं, माने कि खाद है या जो जल है, इनकी आवश्यकता कम होती है। तो इसमें जो है कुदरती तौर पर ताप के या सूखे के लिए बहुत अधिक प्रतिरोधक क्षमता है, तो आपको कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट मिल सकता है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सकती है। और दूसरा क्या है कि ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस हैं। यदि हम आजकल बाजार को देखें तो बाजार आजकल इनके प्रोसेस्ड प्रोडक्ट से भरा हुआ है,
1: कई तरीके के उत्पाद
0: जी बिल्कुल, आटे से लेके कुकीज, और आप देखें तो हर चीज में अभी मिलेट है। तो यदि हमारे किसान भाई इन मिलेट्स को उगाते हैं तो न केवल लागत के तौर पे बल्कि क्वालिटी के तौर पर भी उनको इससे फायदा मिलेगा, और यदि इनकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं तब तो
1: कई गुना उनको पैसा भी मिलेगा।
0: बिल्कुल, वो स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं और इससे बहुत विभिन्न विभिन्न तरीके के उत्पाद बना
1: ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या फसल विविधीकरण या मिश्रित खेती करके भी हम अपने जैव विविधता को आगे बढ़ा सकते हैं या उसको सेफ रख सकते हैं?
0: हाँ जी बिल्कुल। देखिए, फसल विविधीकरण जैसे वही चीज है कि विभिन्न विभिन्न फसलों को उगाना, तो यदि हम विभिन्न तरह की फसलें उगाते हैं तो ये आपकी जैव विविधता भी बढ़ाता है, आपकी मिट्टी की उर्वरकता भी बढ़ाता है और आपकी उत्पादकता भी इंश्योर करता है, और आप जो उगाते हैं आप वही खाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है।
1: तो डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे ये पूछना चाहूंगी कि किसान भाइयों के लिए आपका क्या संदेश है कि वे अपनी खेती को अधिक प्रकृति अनुकूल, टिकाऊ और लाभकारी बना सके, तो क्या करें?
0: देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जहां पर भी पारंपरिक फसलें या पारंपरिक किस्में चल रही हैं, उन पारंपरिक किस्मों को ना छोड़ें। यदि आप उन्हें फायदे के लिए नहीं उगा सकते हैं तो आप उन्हें थोड़े जगह में अपने कंजम्पशन के लिए उगाएं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गुणवत्ता में बहुत ही अधिक प्रचुर हैं।
1: जी,
0: इसके अतिरिक्त विभिन्न फसलें उगाएं, किसी भी एक फसल पे ना जाएं, अपनी मिट्टी की रेगुलर रूप से जांच करवाएं और मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार ही उसमें आप खाद का प्रयोग करें, जहां तक हो सके जैविक उत्पादों का प्रयोग करें। यदि किसान भाई बहन इन बातों को अपनाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्हें अच्छी उत्पादकता के साथ वो पर्यावरण संतुलन में भी अपना योगदान कर पाएंगे।
1: जी डॉक्टर रुचि बंसल जी, आपने जैव विविधता और टिकाऊ खेती से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर हमारे किसान भाइयों बहनों को इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो गौतम, हमारी जो विशेषज्ञ थी उन्होंने जैव विविधता और टिकाऊ खेती पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, और हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन इस जानकारी से पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। और देखिए, 15 अगस्त बिल्कुल पास में ही है और राष्ट्रीय एकता का पर्व है ये, तो क्यों ना हम एक प्यारा सा देशभक्ति गीत सुन लें रेणु बर्मन की आवाज में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रेणु वर्मन की आवाज में ये देशभक्ति गीत। और प्रतिमा, हम अपने किसान भाइयों के साथ आजादपुर मंडी से हमें जो भाव प्राप्त होते हैं वो एक बार साझा करते हैं। केले की बात करें 12 रुपए प्रति किलो, और अमरूद की बात करें तो 50 रुपए प्रति किलो, मौसमी की बात करें तो 30 रुपए प्रति किलो, पपीते की बात करें तो 25 रुपए प्रति किलो।
1: तो किसान भाई बहनों, ये तो थे फल के भाव, और अब मैं आपको बता दूं जो सब्जियां हैं उनके भाव क्या रहे। अगर हम गोभी की बात करें तो ये रही 25 रुपए प्रति किलो, खीरा का मूल्य रहा 20 रुपए प्रति किलो, लौकी का मूल्य 20 रुपए प्रति किलो, भिंडी रही 20 रुपए किलो, और अगर हम नींबू की बात करें तो ये 40 रुपए प्रति किलो मिल रहे हैं। तो हमारे किसान भाई बहन आजादपुर मंडी जाएं और अपनी पसंद की फल और सब्जी खरीदें। और गौतम, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं वो तमाम सलाह हमारे किसान भाइयों के लिए लेकर आते हैं। किसान भाई बहनों, इस मौसम में ग्वार, मूली, लोबिया, सेम, पालक, चौलाई फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार हो तो बुआई ऊंची मेड़ों पर कर सकते हैं। बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें, जल निकास का उचित प्रबंध रखें। साथ ही किसान वर्षाकालीन प्याज की पौध की रोपाई इस समय कर सकते हैं। साथ ही इस मौसम में किसान स्वीट कॉर्न यानी जिसे बेबी कॉर्न भी कहते हैं की बुआई कर सकते हैं, जल निकास का उचित प्रबंधन भी रखें।
0: जी बिल्कुल। और किसान भाई, कद्दू वर्गीय एवं अन्य सब्जियों में मधुमक्खियों का बड़ा योगदान है, क्योंकि परागण में बहुत सहायता करती है, इसलिए जितना संभव हो मधुमक्खियों के पालन को बढ़ावा दें।
1: बहुत अच्छी सलाह बताई, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, उनके खेती किसानी में बहुत ही लाभ देंगी। साथ ही हमारे किसान भाई बहन अपनी फीडबैक भी हमें भेजें, अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव भी हमें दें।
0: तो इसके लिए श्रोताओं, हमारा जो ईमेल आईडी है वो है feedback@gmail.com।
1: तो गौतम, अब वक्त समाप्त हो रहा है, अपने किसान भाई बहनों से लेते हैं अनुमति।
0: नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
5: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
6: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
7: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:35 और 10 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गजल कव्वाली। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति, फिल्म का नाम है उमराव जान, गायक कलाकार हैं बेला सुलाखे।

फिल्म उमराव जान से बहुत ही खूबसूरत गजल अभी आपने सुनी, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और साथियों को एक बहुत ही सुंदर कव्वाली के साथ। फिल्म है अमर अकबर एंथनी।

0: और अमर अकबर एंथोनी फिल्म के इसी कब्बाली के साथ में जिसे आवाज दी थी मोहम्मद रफी और साथियों ने, ये गजल कब्बाली का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 7:45 होने को हैं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर। नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में 1368 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कोंडली में नवनिर्मित 2 लेन स्लिप रोड पुल का लोकार्पण और अवलोकन किया, कहा यह परियोजना बेहतर कनेक्टिविटी और विकसित दिल्ली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए घातक आत्मघाती कार विस्फोट के लिए अलकायदा ए कायदा ए हिंद को जिम्मेदार ठहराया। और स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में दिल्ली मेट्रो की सेवाएं शनिवार सुबह 4 बजे से शुरू होंगी। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में 1368 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें 1015 टीजीटी, 236 पीजीटी और 117 संगीत शिक्षक शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह केवल नियुक्ति पत्र प्रदान करने का अवसर नहीं है, बल्कि दिल्ली के लाखों बच्चों और उनके परिवारों के साथ बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी को और मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद पिछले 1.5 साल से शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।
4: दिल्ली सरकार में हमारे शिक्षा मंत्री जो लगातार इस 1.5 साल में अपनी मेहनत से कैसे दिल्ली में शिक्षा को बेहतर स्तर पे लेके जाया जा सकता है उसके लिए काम कर रहे हैं, और उसका ही आज ये नतीजा है कि आप सभी लोग इस शिक्षा परिवार में जुड़ करके इसका सदस्य बन पा रहे हैं। एक एक बच्चा जो हमारे स्कूल से पढ़ करके निकल रहा है वो जीवन भर इस एक्सपीरियंस को याद रखता है। आज इस मंच पे भी 2 टीचर्स जिन्हें आज अपॉइंटमेंट मिली है, दोनों ने ये कहा कि हम दिल्ली सरकार के स्कूल से पढ़ के निकले हैं।
3: यह नियुक्ति कार्यक्रम दिल्ली सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पदों को भरने और शिक्षण व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए चलाए जा रहे व्यापक भर्ती अभियान का हिस्सा है। पिछले 3 महीनों में विभिन्न शिक्षण श्रेणियों में भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्तियां की गई हैं। अप्रैल मई 2026 में लगभग 751 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है, जबकि वर्तमान चरण में 1368 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इस भर्ती अभियान से सरकारी विद्यालयों में मौजूद शिक्षकों की कमी को दूर करने, विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाने और विद्यार्थियों को बेहतर अकादमिक सहयोग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कोंडली में गाजीपुर ड्रेन और हिंडन नहर पर नवनिर्मित 2 लेन स्लिप रोड

0: का काम भी हो गया है। पिछले दिनों दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस वे है उसकी बात भी हो रही थी कि वो भी तैयार है, तुरंत उसका उद्घाटन होने वाला है। कालिंदी कुंज पे कितना शानदार दिल्ली डी कंजेशन के लिए पूरा का पूरा प्रपोजल तैयार है जिसकी शुरुआत जल्द होने वाली है।
1: श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि ये परियोजना बेहतर कनेक्टिविटी और विकसित दिल्ली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ सुरक्षित और सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। वहीं दिल्ली सरकार में लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा कि इस परियोजना से कोंडली, कल्याणपुरी, गाजीपुर और आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को आवागमन का बेहतर विकल्प मिलेगा, साथ ही मौजूदा कोंडली पुल पर यातायात के दबाव और जाम को कम करने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्वी दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री परवेश साहिब सिंह, पटपड़गंज से विधायक रविन्द्र सिंह नेगी और त्रिलोकपुरी से विधायक रवि कांत सहित अन्य लोग और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नीतिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हो सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी।
3: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-25 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार देश की प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलारूपों में योगदान के लिए दिए गए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि देश की संगीत, नृत्य और लोक रंगमंच की कई विधाएं हैं।
4: कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त है, जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्र विद्या तो, वस्तु कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तो, तथा मनुष्य के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है। जो नाट्य में व्यक्ति नहीं हो सका वो जीवन में भी नहीं हो सकता।
2: दिल्ली के उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद डॉक्टर बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय के स्नातक ओरिएंटेशन प्रोग्राम दीक्षारंभ 2026 में शामिल हुए। उन्होंने विश्वविद्यालय की नई प्रोफाइल फिल्म का ई लॉन्च किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि विश्वविद्यालय के युवा स्कॉलर्स के लिए ये एक नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि दीक्षारंभ 2026 सीखने, नई चीजें खोजने, नवाचार और विकास की यात्रा की शुरूआत है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने बताया कि छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन 10 सितंबर तक दाखिल किए जा सकते हैं, वहीं नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन 11 सितंबर होगा। इसी दिन शाम 5 बजे उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 18 सितंबर को मतदान के बाद 19 सितंबर को मतगणना की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए घातक आत्मघाती कार विस्फोट के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा ए कायदा ए हिंद यानी AQIS को जिम्मेदार ठहराया है। इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि AQIS एक बिखरे हुए संगठन से विकसित होकर क्षेत्रीय आतंकवादी संगठन बन गया है। भारत मंडपम में चल रहे भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के दूसरे दिन भी देश भर से आए

व्यापारियों, उद्यमियों, उद्योग प्रतिनिधियों, स्टार्टअप्स, उपभोक्ताओं और विदेशी प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि इस महोत्सव को देशभर के व्यापारिक समुदाय, उद्योग जगत और आम जनता से अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हो रहा है। दिल्ली माल और सेवा कर DGST विभाग ने आज रेलवे अधिकारियों के साथ मिलकर वैध दस्तावेज, ई वे बिल और चालान के बिना मालगाड़ी से लाए जा रहे करीब 50 टन अवैध तांबे और 2 टन एल्यूमिनियम सिल्लियां जब्त की। विभाग ने बताया कि यह ट्रेन कर्नाटक के यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई थी। विभाग के अनुसार जब्त माल का विस्तृत मूल्यांकन और आगे की कार्रवाई GST नियमों के अनुसार की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में दिल्ली मेट्रो की सेवाएं शनिवार सुबह 4 बजे से शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले खास मेहमानों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की आवाजाही को आसान बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के दिन नियमित सेवाएं शुरू होने तक मेट्रो ट्रेन 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन हैं। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले कई नई दिल्ली के लाल किला में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि रिहर्सल में समारोह की भव्यता, सटीकता और देशभक्ति की भावना का प्रदर्शन किया गया। इस वर्ष समारोह में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया जा रहा है और विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति विषय को प्रमुखता दी जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि यह अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है और हर भारतीय में गर्व की भावना जागृत कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि राष्ट्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान के बाद हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली में एनीमिया मुक्त भारत अभियान AMB पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 160 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला का प्रमुख आकर्षण एनीमिया मुक्त भारत अभियान एप्लीकेशन और पोर्टल का शुभारंभ था। इसका उद्देश्य लाभार्थी स्तर पर एनीमिया की निगरानी, अनुवर्ती कार्रवाई और प्रबंधन को सुदृढ़ करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विश्व अंगदान दिवस पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंगदान मानवता की वो महान भावना है जो किसी व्यक्ति को जीवन का अमूल्य उपहार दे सकती है। श्रीमती गुप्ता ने सभी से अपील की कि वे अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाएं और संकल्प को जन भागीदारी का अभियान बनाएं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 का विमोचन किया। इस दौरान श्री सूद ने क्लस्टरों के बीच मजबूत सहयोग, उद्योग की भागीदारी और प्रौद्योगिकी अनुवाद पर जोर दिया, जिसमें सफल क्षेत्रीय समाधानों को अपनाने और उनका विस्तार करने पर विशेष बल दिया गया। अब बात मौसम की। राजधानी दिल्ली में आज कई जगहों पर हल्की से तेज बारिश हुई। आज का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि कल कुछ स्थानों पर बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में 1368 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुंडली में नवनिर्मित 2 लेन स्लिप रोड पुल का लोकार्पण और अवलोकन किया। कहा, यह परियोजना बेहतर कनेक्टिविटी और विकसित दिल्ली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए घातक आत्मघाती कार विस्फोट के लिए अलकायदा ए कायदा ए हिंद को जिम्मेदार ठहराया और स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में दिल्ली मेट्रो की सेवाएं शनिवार सुबह 4 बजे से शुरू होंगी।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 8:15। श्रोता ये समय है कार्यक्रम गीत मालिका फिल्म संगीत का। कार्यक्रम लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूं आपका दोस्त चेतन कुमार शर्मा। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म का नाम है आनंद मठ। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, हेमंत कुमार और साथी। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

धन की तरह हर खेत सजे।

और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और देशभक्ति गीत। फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है। गायक कलाकार हैं मुकेश।

और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए एक और गीत सुनते हैं। गायक कलाकार हैं महेंद्र कपूर और साथी, गीत रचना है इंदिबर की और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म का नाम है पूरब और पश्चिम।

गीत अभी आपने सुना, ये था फिल्म नया दौर से, और ये इसके लिए आवाजें दी थी, गायक कलाकार थे मोहम्मद रफी और बलबीर, संगीत दिया था ओपी नैयर साहब ने। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गीत, फिल्म है सिकंदर ए आजम, और गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफी और साथी।

और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गीत। फिल्म का नाम है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

और कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं फिल्म श्री 420 में मुकेश और साथियों को गाने के बोल हैं मेरा जूता है जापानी।

और कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और साथियों को फिल्म हकीकत में। गीत रचना है मदन मोहन की और संगीत दिया है कैफी आजमी ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: आज का ये गीतमालिका फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी चेतन को दीजिए अनुमति, नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में अब आप सुनेंगे समाचार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी।
4: टोटल 12 बिल्स पास किए और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में। लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
2: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
5: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। अब जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
2: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
6: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
2: संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन

0: ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को, देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम है उसके लिए प्रयास कर रही है, और नरेंद्र मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया, वैसा ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केन्या और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर 570 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह 520 करोड़ डॉलर था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग 900 करोड़ डॉलर और चीन को होने वाला निर्यात 64.57% की भारी बढ़त के साथ 220 करोड़ डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में यह जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलारूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है।
3: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और इसकी मुख्य थीम विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच

0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1500 कैडेट ने आज शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्राएं बड़े उत्साह के साथ निकाली गईं। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांगजनों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उनके अनुभवों को सुना और उपलब्धियों की सराहना की। इस विशेष सभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से जुड़े दिव्यांगजन शामिल हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरल और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। ईशानी के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: ओडिशा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बलंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव तथा बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। केवंझर में पटना और अनंतपुर के पास बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ हिस्सों में सड़कें डूब गई है और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: श्रोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत स्थित गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी से वापसी के दौरान हाथ में चोट लगने के बाद उनका महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना के मद्देनजर रांची प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किये। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट में पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। इस्तकबाल है हमारे सभी सामाइन का। तीसरी मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्राम्स का खुलासा सुनिए। अब से कुछ ही देर में यानी 9:20 पर सुनिएगा एक खसूसी प्रोग्राम हर घर तिरंगा, और उसके बाद सुनिएगा पंकज उदास की गाई चंद गैर फिल्मी गजलें। 9:45 पर खबरें नशर की जाएंगी।

रात 9:55 पर प्रोग्राम हेल्थ टिप्स में सुनिएगा सेहत के हवाले से चंद बातें। रात 10 बजे प्रोग्राम मार्केट मंत्रा सुनिएगा।

ग्यारह बजकर 30 मिनट पर सुर्खियों में प्रोग्राम सुनिएगा। 11:45 पर बज़्म मौसिकी प्रोग्राम के तहत सुनिएगा उस्ताद यूनुस हुसैन खां का गाया ख्याल राग मलूहा केदार में। शब के 12 बजे आलमी खबरें सुनिएगा।

करने की मुसलसल तहरीक है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर भी खुशी का इजहार किया है कि इस साल की हर घर तिरंगा मुहिम वंदे मातरम के 150वें साल के नाम वक्फ है। हिंदुस्तान का कौमी परचम सिर्फ एक परचम नहीं है, ये हिंदुस्तान की आजादी की कहानी है, ये हमारे जाबाजों की कुर्बानियों की याद है, ये मुल्क के फख्र, इत्तेहाद और सालमियत की अलामत है। ज़ाफ़रानी रंग हिम्मत और कुर्बानी के जज्बे का पैगाम देता है। सफेद रंग अमन और सच्चाई की अलामत है। सब्ज रंग खुशहाली और तरक्की की उम्मीद को जाहिर करता है और इन तीनों रंगों के दरमियान मौजूद अशोक चक्र हमें मुसलसल आगे बढ़ते रहने की तहरीक देता है। हिंदुस्तानी कौमी परचम जिसे हम प्यार से तिरंगा कहते हैं आवाम के जज्बात और कौमी शऊर में एक खास मुकाम रखता है। कौमी परचम की मौजूदा शक्ल मशहूर मुजाहिदे आजादी, माहिर तालीम और कई जबानों के आलिम पिंगली वेंकैया ने डिजाइन की थी। पिंगली वेंकैया की पैदाइश 2 अगस्त सन 1876 को हुई थी और उनका इंतकाल 4 जुलाई सन 1963 को हुआ। उन्होंने 1 अप्रैल सन 1921 को विजयवाड़ा में महात्मा गांधी से मुलाकात के दौरान कौमी परचम का डिजाइन पेश किया था। इसके बाद 22 जुलाई सन 1947 को दस्तूर साज असेंबली के इजलास में हिंदुस्तान के कौमी परचम को इसकी मौजूदा शक्ल में इख्तियार किया गया। यौम आजादी और यौम जमहूरिया जैसे कौमी त्योहारों पर तिरंगे को पूरे एहतराम और वकार के साथ लहराया जाता है। आज हर घर तिरंगा सिर्फ एक मुहिम नहीं है, ये उस जज्बे का जश्न है जो हमें अलग अलग जबानों, सकाफतों और रवायात के बावजूद एक कौम के तौर पर जोड़ता है। जब किसी घर की छत पर तिरंगा लहराता है तो वहां सिर्फ एक परचम नहीं लहराता, वहां हिंदुस्तान का फख्र लहराता है। आइए इस यौम आजादी पर तिरंगे को अपने घर लाएं, इसकी अजमत को समझें और मुल्क की तामीर में अपने किरदार का अहद करें, क्योंकि तिरंगा हमारा फख्र है, तिरंगा हमारी पहचान है और तिरंगा ही हमारे मुल्क के तई हमारे एहतराम और अहद की शान है। हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा और हर हिंदुस्तानी के दिल में हिंदुस्तान के लिए अटूट मोहब्बत और फख्र।

Chandra, Chandra, Chandra.

Oh,

नाज़रीन, अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास की गाई चंद गैर फिल्मी गजलें। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। 9:45 हुए हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।

अब आप असमाली से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की अहम खबरें। 12 बिलों की मंजूरी के साथ पार्लियामेंट का मानसूनी इजलास आज खत्म हो गया। हुकूमत ने बहस से आरी इजलास के लिए अपोजिशन को जिम्मेदार करार दिया। मुल्क की बरामदात में जुलाई के महीने में 13% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की एक रिपोर्ट में दिल्ली के लाल किले पर हुए धमाके को अलकायदा से जोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ में बहुत तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड, उड़ीसा, गंगाई मगरबी बंगाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में बहुत तेज बारिश होगी। और दौलत मुश्तरका तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारतीय टीम सोने के 13 तमगों के साथ 35 तमगे हासिल कर चुकी है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। पार्लियामेंट का मानसून इजलास पिछले माह की 20 तारीख को शुरू हुआ था। 25 दिन पर मुश्तमिल 19 नशस्तों के बाद मानसून इजलास आज खत्म हो गया। मानसून इजलास के दौरान ऐवान में कानून साजी और कौमी मामलात पर बहस की गई। कई अहम बिल मंजूर किए गए जिनमें पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026, कौमी ताजीम की तौहीन की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल, ट्राइब्यूनल में इस्लाहात से मुतालिक बिल, टैक्स और दीगर कवानीन में तरमीम से मुतालिक बिल, इमदाद बाहमी की तरक्की की कौमी कारपोरेशन से मुतालिक तरमीमी बिल और केरला नाम तब्दील करने से मुतालिक बिल 2026 शामिल हैं। पार्लियामेंट ने गैर मुल्की अतियात को मंजबित करने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मजीद जांच पड़ताल के लिए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी के पास भेज दिया है। इस बिल का मकसद गैर मुल्की अतियात को मजीद शफाफ और जवाबदेह बनाना है। अलबत्ता इजलास के दौरान नीट पेपर लीक के मामले पर तलबा के एहतजाज के सिलसिले में एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ पुलिस की मुबैना कार्रवाई के सिलसिले में और अयोध्या राम मंदिर में दिए गए दान की रकम में मुबैना धांधलियों के सिलसिले में बार बार रखना अंदाजी भी देखी गई। हुकूमत की जानिब से कई बार यकीन दहानी कराए जाने के बावजूद कि वह तलबा के मामले पर तफसीली बहस के लिए तैयार है, अपोजिशन ने अपना एहतजाज जारी रखा और ऐवान की कार्रवाई में रखना डालते रहे। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पर पार्लियामेंट में बहस से फरार इख्तियार करने का इल्जाम लगाया है, जबकि हुकूमत उसके लिए तैयार थी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के मेम्बरान पार्लियामेंट का रवैया जमहूरियत बिलखसूस पार्लियामानी जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि पार्लियामेंट बहस, तबादला ख्याल और कानून साजी से मुतालिक कार्रवाई के लिए है, लेकिन लगातार नारेबाजी और एहतजाज से मानसून इजलास में ऐवान की कार्रवाई मुतासिर रही। उन्होंने ये भी बताया कि इस इजलास के दौरान लोकसभा की कारकर्दगी 19% और राज्यसभा की 39% रही। वज़ीर मौसूफ ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि पहली मरतबा पार्लियामेंट में आए कई मेम्बरान पार्लियामेंट बार बार की रखनांदाजी के सबब पार्लियामेंट का तजर्बा हासिल नहीं कर पाए। कोयले और कंकनी के वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि पार्लियामेंट की जानिब से आज मंजूर किए गए कानकनी और मादनियात की तरक्की और इंजबात से मुतालिक तरमीमी बिल से किसी रियासत के हकूक सलब नहीं होंगे और किसी रियासत के महसूलाती ढांचे पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब रेड्डी ने कहा कि इस बिल का मकसद बड़े मादनियात की पैदावार में इजाफा है। उन्होंने कहा कि मरकज हुकूमत के मजमूई अंदाज नजर के जरिए कानकनी के शोबे में सरमायाकारी और रोजगार को बढ़ाने के सिलसिले में काम कर रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वें यौम आजादी से एक दिन कबल कल मुल्क से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया का खिताब आकाशवाणी के पूरे कौमी नेटवर्क पर शाम 7 बजे नशर होगा। अंग्रेजी में खिताब के बाद दूरदर्शन के तमाम चैनलों पर इसे हिंदी में भी नशर किया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी में दूरदर्शन पर खिताब के नशरे के बाद दूरदर्शन के इलाकाई चैनलों पर इलाकाई जुबानों में इसको नशर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने मुतल्लिका इलाकाई नेटवर्क पर रात 9:30 बजे खिताब को इलाकाई जुबानों में नशर करेगा। वज़ीर-ए-दाखला अमित शाह ने आज कहा कि तिरंगा हर शहरी के फख्र

किया। जैसा कि हमने अपने पहले प्रोग्राम में आपको बताया था कि मोबाइल का गलत पोस्चर में बैठकर इस्तेमाल करना या ज्यादा देर तक इस्तेमाल करना दे रहा है कंधे और गर्दन का दर्द और जकड़न। ठीक इसी तरह तकिया भी अगर आप ठीक से नहीं लगाते तो भी आपको आगे चलकर सर्वाइकल की परेशानी दे सकता है। गर्दन और कमर दर्द की तकलीफ से बचने के लिए दुरुस्त तकिये का इंतखाब बेहद जरूरी है। दरअसल नींद के दौरान इस्तेमाल होने वाला तकिया गर्दन और रीढ़ की हड्डी की सेहत पर अहम असर डाल सकता है। तहम माहिरीन ने खबरदार किया है कि हद से ज्यादा नरम तकिया हर वक्त बेहतर इंतखाब साबित नहीं होता। ख्याल रहे कि खरीदारी के वक्त किसी तकिये का नरम और आरामदेह महसूस होना इस बात की जमानत नहीं है कि वो पूरी रात सर और गर्दन को मतलूबा सहारा भी फराहम करेगा। माहिरीन का कहना है कि बहुत से लोग सिर्फ चंद लम्हों के तजुर्बे की बुनियाद पर नरम तकिया खरीद लेते हैं, लेकिन इसकी कारकर्दगी कई घंटे इस्तेमाल के बाद सामने आती है। तकिया अगर मुनासिब सहारा बरकरार न रख सके तो गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधा मुतासिर हो सकती है, जिसकी वजह से सुबह के वक्त गर्दन में दर्द या अकड़न महसूस हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक इंसानी सर का औसत वजन तकरीबन 4.5 किलोग्राम होता है, जिसकी वजह से तकिया रात भर आहिस्ता आहिस्ता दबता रहता है। अगर तकिया ज्यादा नर्म है तो वो गर्दन और सर को मतलूबा सहारा फराहम नहीं कर पाता। इसलिए तकिया खरीदते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखें। क्या हैं वो बातें, बताएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।

0: बेबी का जारी 71 किलोहर्ट्स मोबाइल एप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। और लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम मार्केट मंत्र।
1: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: You are listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.
1: भैया मेरे 1071 किलोहर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है प्रोग्राम तामिल इरशाद।

लता मंगेशकर को भी आपने सुना। फिल्म का नाम था गंगा जमुना। नगमा निगार थे शकील बदायूनी और मौसीकार थे नौशाद अली। इस नगमे को सुनने की फरमाइश की थी आप सबने। पिंजौर से चंद्रमोहन इंद्रमोहन, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी और शमसो कमर राही सहावर रोड गंजनवारा से, संदीप बुजुर्ग महाराज से किशोर वडतकर, शुभम वडतकर और पुन्नू वडतकर, आसेगांव बाजार से करण रंजीत पुनकर, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। अगला फरमाइशी मेल हमें मिला है, ये आया है नेहरू चौक पैठन से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव और सोनल प्रसाद जाधव, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीबी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा। और अगला फरमाइशी मेल हम तक पहुंचा है, ये आया है केतल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा और इनके साथी। अगला फरमाइशी मेल हमें मौसूल हुआ है गिरडीह झारखंड से इम्तियाज इमाम आतिश, ताहिरा परवीन और डॉक्टर आसिफ, कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, घंटागढ़ चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया, अलीगढ़ डवाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार और कुलदीप गांधी, सिद्धार्थनगर दरियापुर भावली से गजानंद येले, नवदीप येले और सुशील येले, गांव नाई वाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिद्धा, अलका मिद्धा, खांजीपीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, नजीब खान और मंजू अशरफ। अगला नगमा हम आपको सुनवाएंगे, फिल्म का नाम है वल्लाह क्या बात है। आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, मौसीकार हैं नौशाद। सुनने की फरमाइश की है आप सबने। जय मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी और मोहम्मद सैफ अंसारी, सिद्धार्थ गुडाने, अर्चना ताई गुडाने और हीरामन शिंदे की फरमाइश आई है अमरावती महाराज से, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार और बिल्लू निषाद, बुरावी नगर श्रीरामपुर से मनोज जेठवा और हर्षा जेठवा, रविन्द्र मोहन दास, आशा देवी और भानु प्रिया की फरमाइशी मेल हम तक पहुंचा है किशनगंज बिहार से, सहारनपुर से आशा नारंग सोनाली और सुरेश नारंग, अपूर्व सिंह, अनुपम कुमारी और राकेश कुमार का फरमाइशी मेल हमें मिला है। इसी नगमे को सुनना चाहा है वरुण जौलका से मोहन महेंद्र सरकटे, विजय सरकटे और मिलन सरकटे, पश्चिम तो गंजनवारा से मुनव्वर लल्ला, पीरजादा नसरीन मिर्जा, तहसील वरुण जिला अमरावती महाराज से मुकेश कास लेकर, राजेश सोनी और इनके साथी, जरूर वरुण से बाबा साहब डोडे, आदि चिरपे और चंद्र प्रभा बडोडे।

और लीजिए समाइन अब सुनिए अगला नगमा लता मंगेशकर की आवाज में। मौसीकी तरतीब दी है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और नगमे के बोल लिखे हैं राजा मेहंदी अली खान ने। फिल्म का नाम अनीता। सुनने की फरमाइश आप सबकी। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज कोरवाल और गीतिका कोरवाल। और ये फरमाइश मेल हम तक पहुंचा है, ये आया है चमनपुरा उदयपुर से सबिया खानम, फरीदा और रईसा खातून। पुरानी बिलाई छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुद्दीन सिद्दीकी। वारसी क्लब सिंदौली मीरगंज से जीशान वारसी, इमरान वारसी और रेहान वारसी। डॉक्टर रमेश कुमार जिजोरिया, गगनदीप जिजोरिया और आरजू जिजोरिया की ये फरमाइशी मेल हमें मिला है पटेल नगर मलौट से। इसी नगमे को सुनने की फरमाइश की है भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू और चंपा साहू। पटियाले से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और हार्दिक बत्ता। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी और शाहनवाज सफराज अब्बासी। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने इस नगमे को सुनने की फरमाइश की है। जगदीश झाकड़, श्रीमती रंजूबाई, युवराज सिंह,

और मुझे अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में अगला नगमा। फिल्म का नाम है, अभिनेत्री मौसीकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सुनने की फरमाइश आप सबकी। आप हैं रजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाहजहांपुर से मनोहर रजावत, मधु रजावत और राशि रशीद। नूर महल मैसूर सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, कमर जहानाज और फरज जहानाज। बांद्रा आर्माकोट मुंबई से बेगम सोनम शेख, मारिया आयत शेख और मोहम्मद अनीब शेख। अगला फरमाइशी मेल हमें मिला है गांव लोगर ठाकुर कला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह और राजदीप सिंह और इनके बहुत सारे साथी। इसी नगमे को सुनना चाहा था मटकली जिला बरेली से शाहनूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी और शकीला अहमद अंसारी और इनके साथी। खंडवा से अगला फरमाइशी मेल हमें मिला है कल्लनगंज खंडवा से कौसर बी पवार, हसीना बी पवार और हिना सईद खोकर। बुरहानपुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन और गौटना जैन। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी। कानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा और मयंक नितिन शर्मा। शराफ रोड राजकोट गुजरात से नूर मोहम्मद लखानी, जुबैदा लखानी और विहान लखानी। साईनगर अमरावती महाराष्ट्र से नरेंद्र मिर्गे, प्रियदर्शनी मिर्गे और डॉक्टर प्रियंका कलपांडे। अमीर खुसरू रोड गंजुनवारा से इंजीनियर भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन। मजनू कटीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा। घंटागढ़ चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया। दादाजी मार्ग खंडवा मध्य प्रदेश से मोहम्मद हसनैन हस्सू बाबा, मोहम्मद रफीक पवार और साफिया अरहान खोकर। मंगल गेट मलकापुर से रमेश्वर तालेकर, वंदना तालेकर और दिव्या तालेकर। मुझे सुनिए अपनी पसंद का अगला नगमा, फिल्म अभिनेत्री का, आवाज लता मंगेशकर की।

0: इंटरनेशनल प्रोग्राम खबरों के बाद जारी रहेगा। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। शाम के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे खबरें बरसगीर से।
1: ये आकाशवाणी है। बरसगीर की खबरों के साथ मैं तौहीद हक्कानी। सबसे पहले इस वक्त की अहम खबरें। 12 बिलों की मंजूरी के साथ पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज खत्म हो गया। हुकूमत ने बहस से आ रही इजलास के लिए अपोजिशन को जिम्मेदार करार दिया है। मुल्क के बरामदात में जुलाई के महीने में 13% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अक्वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की एक रिपोर्ट में दिल्ली के लाल किले पर हुए धमाके को अलकायदा से जोड़ा गया है। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अराकची ने आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को मुस्तरद कर दिया कि आबनाए हुरमुज पर वाशिंगटन को इख्तियार हासिल है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। पार्लियामेंट का मानसून इजलास पिछले माह की 20 तारीख को शुरू हुआ था। 25 दिन पर मुश्तमिल 19 इजलास के बाद मानसून इजलास आज खत्म हो गया। पार्लियामानी उमूर के

0: शामिल हो गया जब कश्मीरी बिरादरी ने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की जेर सरपरस्ती जारी दहशतगर्दी को बेनकाब करने के लिए मुजाहरे किए। बेल्जियम में कश्मीरी बिरादरी ग्रुपों ने आज ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट से अकवाम मुत्तहिदा तक मार्च किया और पीओजेके की सूरत हाल की बैन अल-अक़वामी जांच का मुतालबा किया। वहीं इटली के बोलोगना में बड़े पैमाने पर मुजाहरे की खबर है जहां मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों अमवात और जराइम की मजम्मत की और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC के तय हिमायत का इजहार किया। इधर बरतानिया में मुकीम कश्मीरियों ने पाकिस्तानी सिफारती अहातों के बाहर मुजाहरे किए और POJK में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम लगाया। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अराकची ने आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को मुस्तरद कर दिया कि अरबनाए हुर्मुज पर वाशिंगटन को मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब अराकची ने अमरीका पर इंटेलिजेंस की नाकामी की वजह से स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम आबे गुजरगाह के बारे में बार बार गलत अंदाजे लगाने का इल्जाम लगाया। जनाब अराकची का यह तबसरा जनाब ट्रंप के उस दावे के बाद सामने आया जिसमें ट्रंप ने यह दावा किया था कि अमरीका को अबनाए हुर्मुज पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है और वो इसे बरकरार रखेगा। सदर ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि ईरान का फौजी बुनियादी ढांचा शदीद तौर पर तबाह कर दिया गया है। इस दौरान ईरान ने यह कहते हुए जनाब ट्रंप के दावों को मुस्तरद कर दिया कि अबनाए हुर्मुज बदस्तूर बंद रहेगी और उसे तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक तेहरान की शरायत कबूल नहीं कर ली जाती। चीन और रूस ने इस बरस भारत की ब्रिक्स की सदारत के लिए अपनी हिमायत की तौसीक की है। भारत चौथी मरतबा इस ग्रुप की सदारत करेगा। भारत ने चीन के सफीर शू फी होंग और रूस के चार्ज डी अफेयर्स रोमन बाबुश्किन ने नई दिल्ली में आज विवेकानंद बैन अल-अक़वामी फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िदा ब्रिक्स मुल्कों के सफीरों की राउंड टेबल डिस्कशन में हिस्सा लिया। सफीर जू ने कहा कि चीन आलमी उमूर में ग्रुप के किरदार को मजीद कम करने और तावुन को बढ़ाने के लिए भारत और ब्रिक्स के दीगर मेंबर मुल्कों के साथ काम करने के लिए तैयार है। नाइजीरिया के लागोस में मुनाकिदा चार रोजा दौलत मुश्तरका तलवारबाजी चैंपियनशिप मुकाबलों में भारत 33 तमगों के साथ चैंपियन के तौर पर उभरा है। भारतीय दस्ते ने इन मुकाबलों में अंडर-23 और सीनियर जुमरों में सोने के 13, चांदी के 8 और कांसे के 14 तमगे जीते। सीनियर भारतीय तलवारबाजों ने मुकाबले के चौथे और आखिरी दिन 6 मुकाबलों में सोने के 5 तमगे अपने नाम किए। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। 12 बिलों की मंजूरी के साथ पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज खत्म हो गया। हुकूमत ने बहस से आ रही इजलास के लिए अपोजिशन को जिम्मेदार करार दिया। मुल्क के बरामदात में जुलाई के महीने में 13% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अक़वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की एक रिपोर्ट में दिल्ली के लाल किले पर हुए धमाके को अलकायदा से जोड़ा गया है। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अराकची ने आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को मुस्तरद कर दिया कि अबनाए हुर्मुज पर वाशिंगटन का मुकम्मल कंट्रोल है और दौलत मुश्तरका तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारतीय टीम सोने के 13 तमगों के साथ 35 तमगे हासिल कर चुकी है। इसी के साथ बरसगीर की खबरों का यह बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। और लीजिए समय, अब सुनिए तामिल इरशाद प्रोग्राम का अगला हिस्सा।

0: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام تعمیل ارشاد، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ ابھی سنیے پروگرام سرخیوں میں۔
1: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए निजी निवेश और विकास के लिए ब्रिक्स देशों में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रही है पूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमरीश सक्सेना।
2: आज के कार्यक्रम में

0: चर्चा करेंगे निजी पूंजी जुटाने और विकास के वित्त पोषण के लिए ब्रिक्स सहयोग। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भूतपूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार
0: त्रिपाठी जी, जैसा हमें पता है कि अभी ब्रिक्स के जो वित्त मंत्री हैं और जो केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स हैं उनकी मीटिंग जयपुर में हुई, जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। खासतौर से जो हम वित्त विकास की जब हम बात करते हैं और विकास के लिए जो पूंजी के मोबिलाइजेशन को या पूंजी को जुटाने की बात करते हैं, और इसमें ब्रिक्स की मीटिंग थी, तो निश्चित रूप से इस दिशा में ब्रिक्स के देशों के बीच में किस तरह का तालमेल, कैसा सहयोग हो सकता है, इस बारे में विशद चर्चा हुई। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा त्रिपाठी जी कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये पूरा विषय क्या है। जब हम विकास के लिए वित्त जुटाने की बात करते हैं और पूंजी की हमें जरूरत होती है विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये पूरा विषय, पूरा संदर्भ क्या है, आप सरल भाषा में हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: धन्यवाद अमरीश जी। ऐसा है कि किसी भी देश के विकास के लिए पूंजी की जरूरत होती है। ब्रिक्स प्लस में जितने भी देश हैं सभी विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं, और इन देशों में विकास के लिए तरह तरह की परियोजनाएं, सड़क परियोजना, जलमार्ग परियोजना, एयरपोर्ट के तटीय परियोजनाएं, बिजली, पानी, कम्युनिकेशन, इन सब की जो परियोजनाएं होती हैं उनकी जरूरत होती है। और इस परियोजना के लिए, हर काम के लिए जैसे पूंजी की जरूरत होती है, वैसे ही इन सब परियोजनाओं के लिए जरूरत होती है। अब ये पूंजी कहाँ से जुटाई जाए, इसके तीन तरीके होते हैं। एक तो देश की सरकार के पास जो इनकम टैक्स से, जो कस्टम से, कनेक्शन से जो रेवेन्यू आती है उससे खर्चा किया जाए। दूसरा खर्चा किया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर के किया जाए। और तीसरा है कि प्राइवेट पार्टी से वित्त पोषण कराया जाए, चाहे वो पूरी तरह प्राइवेट हो, चाहे वो पीपीपी में हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो। अब देखिए, जो धनी सरकारें हैं या जो बड़ी सेंट्रलाइज सरकारें हैं जैसे चीन की हुई या रूस की या कहीं डिक्टेटरशिप की सरकार है, वो तो सरकार जो है वो पैसे पर बैठी रहती है, उसको जितना चाहे जिस हिसाब से चाहे खर्च करती है, अपने नागरिकों के भली भलाई ना हो उसमें डायरेक्टली, लेकिन फिर भी वो खर्च करती है, उसको दरकिनार करती है। उनकी बेसिक जरूरत हो जैसे स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, इन सबको दरकिनार करते हुए भी गरीब गरीब। लेकिन डेमोक्रेटिक सरकारें जो होती हैं, लोकतांत्रिक सरकारें, उनके सामने सिर्फ विकास परियोजनाएं नहीं होती बल्कि कई और चीजें होती हैं। एक तो सरकार का खर्चा, दूसरा उनके जो संस्थान हैं, उनकी संसद है, उनके जो सरकारी सभाएं हैं, सरकारी खर्चे हैं, उनके जो अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो उनके रेलवे वगैरह चल रहे हैं, उनके लोगों की तनख्वाहें वगैरह। तो विकासशील देशों के पास इतना पैसा नहीं होता सरकारों के पास कि वो स्वयं इसमें सारा कुछ कर सकें, इसलिए आपने देखा होगा कि उनका बजट हमेशा घाटे का बजट होता है। अब अगर उनके पास ये पैसा नहीं है तो वो या तो कुछ हद तक विश्व की संस्थाओं से, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से जुटाएंगे या कुछ उन्हें प्राइवेट पार्टनरशिप से जुटाएंगे। हमारे यहाँ अभी तक समस्या ये थी कि हमारे यहाँ पिछले 20-25 साल पहले तक तो प्राइवेट पार्टनरशिप की बात ही नहीं थी। प्राइवेट जो है वो ये माना जाता था कि प्राइवेट बिजनेस है, वो सिर्फ अपने भलाई के लिए काम करेगा और उससे किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन बाद में ये समझा जाने लगा कि बिजनेसमैन भले ही अपना प्रॉफिट या अपना लाभ हो, लेकिन अगर वो एक प्रोजेक्ट करता है तो उससे ट्रेजरी एम्प्लॉयमेंट भी होता है, उससे और भी तरह के फायदे होते हैं। अगर वो सड़क बनाता है तो सड़क बनाने का मतलब ये नहीं है सड़क बनाता है या सड़क है बस चलाता है, समझिए, तो बस चलाने वाला जो है वो सिर्फ बस से किराया वसूल करेगा, उसका फायदा तो होगा लेकिन उससे की मोबिलिटी बढ़ जाएगी लोगों में, लोग एक जगह दूसरी जगह जाएंगे, व्यापार बढ़ेगा, ये एक दूसरा फायदा होता है। तो अब इस चीज को समझा गया है।
0: इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आपने जिक्र किया बाद में ऐसा होने लगा, तो मैं समझता हूं कि जो आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई 1990 के दशक में, उसके बाद से जिस तरह से अर्थव्यवस्था भारत की और तमाम जो विकासशील राष्ट्र हैं उनकी खुली, तो ये जो निजी पूंजी का प्रवाह उसके साथ ही बढ़ा। अगर आप इसके बारे में और कोई जानकारी देना चाहें, और साथ ही जो ये निजी पूंजी जब आती है या जो पूंजीपति हैं वो अपना धन लगाते हैं, तो सरकार और निजी पूंजीपति के बीच में जो विकास के सहयोग है उसके क्या मुख्य ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें दोनों एक साथ आते हैं?
1: जो भी ऐसी विकास परियोजनाएं हो रही हैं उसका एक पहले प्रारूप एक खाका होता है कि ये सड़क ऐसे बनेगी या एयरपोर्ट ऐसे डेवलप होगा या रेलवे ट्रैक ऐसे डेवलप होगा या ये स्टेशन ऐसे डेवलप होगा या बिजली घर ऐसा डेवलप होगा। तो जो वो डेवलपमेंट होता है तो एक तो ये परियोजना का होता है कि जितना काम कहा गया है उतना होना चाहिए, उतने समय में होना चाहिए और उतनी गुणवत्ता के साथ होना चाहिए। ये पैरामीटर है। इसके साथ ही ये पैरामीटर है कि अगर आप वो कार्य कर रहे हैं तो काम में गुणवत्ता में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वर्कर्स जो है उनके हित को भी ध्यान में रखना चाहिए, उनके स्वास्थ्य पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज ये भी है कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल अब्रॉड नहीं होनी चाहिए इतनी। ठीक है, आप अगर बाहर से आ रहे हैं इन्वेस्ट करने तो ठीक है, आप उसका पैसा ले जा सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सारे का सारा पैसा वहां ले जाए और यहां पर इन्वेस्टमेंट लिए कुछ ना हो। ये भी इसमें पैरामीटर में होता है कि आपकी जितनी अर्निंग होगी, जितनी आपकी आय होगी, उसका इतना प्रतिशत आपको यहीं पे फिर से निवेश करना होगा। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके अंतर्गत सरकारें और व्यक्तिगत या कॉर्पोरेट समझौता करते हैं।
0: जी, और चूंकि ये हम बात कर रहे हैं जो ब्रिक्स के अभी मीटिंग हुई, जो बैठक हुई उसके संदर्भ में, तो अगर मैं ये जानना चाहूँ आपसे कि जो निजी क्षेत्र है, जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में ही निजी क्षेत्र सरकार के साथ सहयोग करके विकास की परियोजनाओं में भागीदारी करेगा, या जो ब्रिक्स के और देश है वहाँ के जो निजी पूंजी वाली संस्थाएं हैं, क्या उनके साथ भी आपस में किसी सहयोग की बात है?
1: हाँ देखिए, मेरे ख्याल से तो सहयोग द्विपक्षीय होगा, सिर्फ एक देश के लोगों के बीच में नहीं होगा, पूरे ग्रुप के बीच में होना चाहिए कि न सिर्फ भारत में सरकार और प्राइवेट निवेशक सहयोग करेंगे, या न सिर्फ भारत में सरकार और बाहर के प्राइवेट निवेशक करेंगे, बल्कि सरकारें और प्राइवेट निवेशक ब्रिक्स के समूह के एक दूसरे देशों में भी निवेश करेंगे।
0: जी, तो क्या इस तरह का भी कोई प्रस्ताव है कि ब्रिक्स के देश आपस में मिलकर कोई ऐसी बैंकिंग प्रणाली विकसित करें जिससे कि जिस भी देश को विकास के लिए धन की जरूरत है तो उस बैंक से उसको मुहैया कराया जा सके?
1: देखिए, 2012 में एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी जिसका अभी $100 अरब के करीब उसका कोष है, और उसकी स्थापना इसीलिए हुई थी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कि वो डेवलपमेंट या विकास की बातों में ब्रिक्स के सदस्यों के बीच में जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापित हुआ $100 अरब की, उससे ये परियोजनाएं ब्रिक्स के देशों में, एक देश में एक देश द्वारा दूसरे देश में की जाने वाली, या ब्रिक्स के देशों में से किसी द्वारा ब्रिक्स के बाहर के देशों में की जाने वाली कामों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसके साथ ही साथ अब ये भी है कि कुछ और चीजें की गई है, जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने बहुत क्रिटिकल रोल पैदा किया है, मल्टीलेटरल गारंटी मैकेनिज्म की बात ही कर रहा है। फिर एक और इम्पोर्टेंट एरिया जिसमें ब्रिक्स के एक ऑपरेशन में है कि डेवलपमेंट में लोकल करेंसी फाइनेंसिंग, कि आप ऐसा न करें कि अगर आप डेवलपमेंट के लिए पैसे दे रहे हैं तो उसको डॉलर में या युआन में दे, आप लोकल करेंसी में दे, ताकि लोकल करेंसी उस फ्लक्चुएशन से बची रहे जो फॉरेन करेंसी के साथ उसका होता है। तीसरा ये कि आप ग्रीन और सस्टेनेबल फाइनेंस करें, उस पर ज्यादा जोर दें, जो पर्यावरण को दूषित न करे जो प्रोजेक्ट, उस पर ज्यादा जोर दिया जाए। ये मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक है।
0: इसमें जो हमारी सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, किसी भी देश में जो सारे हमारे ब्रिक्स प्लस देश है, तो वो जो सेंट्रल बैंक है उनकी क्या भूमिका है?
1: देखिए, किसी भी देश की सेंट्रल बैंक की भूमिका ये होती है कि अगर उस देश में कोई प्रोजेक्ट कहीं से बाहर से इन्वेस्टमेंट से लाया जा रहा है तो वो इन्वेस्टर की टर्म्स एंड कंडीशंस पे इन्वेस्ट करने को तैयार है। कितने दिन में वो जेस्टेशन पीरियड होगा उस प्रोजेक्ट का, कितने दिन बाद उससे आपको पैसा मिलना या उसका उत्पादन करना शुरू होगा, कितने दिन बाद उसका पूरा पैसा जो है इन्वेस्टर का उसको मिल जाएगा। जैसे सड़कें बनती हैं, सड़कें बनती हैं तो उसमें यह होता है कि टोल टैक्स लिया जाता है, और प्राइवेट पार्टनरशिप है, प्राइवेट आदमी ने सड़कें बनाई, टोल टैक्स लिया, लेकिन वो हमेशा के लिए टोल टैक्स नहीं ले सकता, एक सर्टेन पीरियड तक के लिए टोल टैक्स ले सकता है। तो यहाँ विदेशी इन्वेस्टमेंट की बात आती है, वहां पर सेंट्रल बैंक यानी हमारे हिसाब से भारत के संदर्भ में ये रिजर्व बैंक करता है। तो वो रिजर्व बैंक ये सब चीजें देखेगा कि ये जो पैरामीटर जिनके आधार पर किया गया है, कोई प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है, वो उनके हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और इतना ही नहीं, इस मीटिंग के द्वारा जो वित्त मंत्रियों की है, इसमें एक चीज ये भी सुनिश्चित की जा रही है कि ब्रिक्स समूह के विभिन्न देशों के जो रिजर्व बैंक हैं, सेंट्रल बैंक हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, वो एक ऐसी यूनिफाइड पॉलिसी बनाए जो कि ब्रिक्स के सारे देशों में कम से कम लागू हो, ताकि किसी भी देश को दूसरे देश में जाकर कोई प्रोजेक्ट करने में या कुछ इन्वेस्ट करने में कोई समस्या का सामना न करना पड़े।
0: जब हम टेक्नोलॉजी विकास की बात करते हैं तो एक पूरे जैसे हम ढांचागत परिवर्तन की बात करते हैं, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, और जो कैपिटल

0: फर्नीचर है जो बड़ी पूंजी की जरूरत है, तो ऐसे जो क्षेत्र हैं वहां पर निजी पूंजी की निश्चित रूप से जरूरत पड़ती है। तो सड़क निर्माण के अलावा और मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र हैं जिनमें विकास के लिए हमें बड़ी पूंजी की जरूरत है?
1: देखिए, हमें सड़क निर्माण में बड़ी पूंजी चाहिए, हमें शिप बिल्डिंग में चाहिए, हमें बंदरगाहों के निर्माण में चाहिए, तटों के निर्माण में चाहिए, हमको सिविल एविएशन जहाज के निर्माण में चाहिए, जहाज के उत्पादन में चाहिए, हमको स्टील वगैरह के उत्पादन में चाहिए, हमको गैस पेट्रोल इसके लिए अपलाइन और डाउन इन दोनों में इसके इन्वेस्टमेंट के लिए हमें पैसा चाहिए। इसके साथ ही अब डिफेंस सेक्टर खुला तो डिफेंस के लिए भी हमें डिफेंस में कई चीजें बनाने के लिए पैसा चाहिए, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए चाहिए। तो देखिए अभी उसमें प्राइवेट सेक्टर आ रहा है धीरे धीरे, कई ऐसी चीजें हैं खनन के लिए हमें।
0: जी जी, खासतौर से अगर हम बात करें जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है वो आजकल की है, कोई भी हम विकास का काम करें, तो इन क्षेत्रों में किस तरह की और संभावनाएं दिखती है आपको निजी क्षेत्र की भागीदारी की?
1: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अपरिमित संभावनाएं हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आप डिजिटल पेमेंट एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हैं, आपने देखा अभी कितनी बार आ गई है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की
0: जी,
1: तो एक बार आप खोलिए रास्ता तो देखिए लोग आएंगे। और टेली कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके डिजिटल डेटा के प्रोटेक्शन में, जिसमें हम अभी काफी पीछे हैं, उसमें बड़ी पूंजी की जरूरत है। ऐसे कंप्यूटर्स, ऐसे सुपर कंप्यूटर्स बनाए, ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए जिससे कि हमारा डिजिटल डेटा बाहर न जा सके, वो डिजिटल डेटा यहाँ पर सुरक्षित।
0: जी तिवारी जी, अगर हम भारत की खास तौर से बात करें, भारत सरकार ने बहुत सारे इस तरह के कदम उठाए हैं जहाँ पर विकास की परियोजनाओं को निजी भागीदारी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। जैसे हम पीएम गति शक्ति की अगर बात करें, या हम जो इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करें, तो इस तरह के जो कदम भारत सरकार ने उठाए हैं इनके बारे में आप कुछ और जानकारी देना चाहेंगे?
1: इस क्षेत्र में भारत सरकार ने काफी कदम उठाए हैं, जैसे आपने कहा गति शक्ति योजना प्रधानमंत्री की है, वो इस मामले में काफी सफल रही है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट करने के मामले, जहां रोड है वहां ठीक है, जहां रेल है वहां तक ठीक, अगर नहीं है तो तीसरा मॉडल वाटरवेज अगर आप उससे भी शुरू करें। आपको ध्यान होगा कि शायद ये योजना है अभी पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हुई है कि कलकत्ता से और प्रयाग तक
0: जी
1: गंगा बड़ी हो जाती है तो
0: जलमार्ग
1: का विकास किया जाए। हम म्यांमार के लिए जलमार्ग का विकास कर रहे हैं, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कालाधान योजना, ये जो है सरकार काम कर रही है। लेकिन कई क्षेत्र है जिसमें हम उतनी तेजी से नहीं काम कर रहे हैं जितनी तेजी से काम करना चाहिए।
0: जैसे कि हम अगर जिक्र करें जो फ्रेट का जो सामान इधर से उधर ले जाया जाता है, उस क्षेत्र में भी आपको लगता है अभी और काफी संभावनाएं हैं पूंजी की?
1: हाँ देखिए, अभी जैसे फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ बनना ही ठीक नहीं है, बनने के साथ साथ आपको ये भी करना चाहिए कि जैसे अगर उस पर फ्रेट लेकर के कोई वहां जा रहा है तो जगह जगह पर उसकी चेकिंग की भी संभावना होनी चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि कहीं से फरिश की कोई वो ना हो, कहीं परेशानी हो, कोई इमरजेंसी हो, तो उसके लिए भी सहायता दी जाए।
0: त्रिपाठी जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे निजी निवेश और विकास के लिए ब्रिक्स देशों में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। और निजी सामाईन, अब सुनिए बज़्म-ए- मौसिकी प्रोग्राम के तहत उस्ताद यूनुस हुसैन खां का गाया ख्याल राग मनुहा केदार में।

0: और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा ए कायदा ए हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेंग होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बोश्किन ने नई दिल्ली में यह जानकारी दी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस अवसर पर स्नेहा नामक ई बुक भी जारी की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Ashish P. Abraham. The monsoon session of Parliament has concluded, with both houses being adjourned sine die yesterday. The session began on July 20 and saw a total of 19 sittings over 25 days. In all, 12 bills were passed by the Parliament, including the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill. In his concluding remarks, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan expressed concern over the repeated disruptions in the House. He said the House managed to fulfill its co-legislative duties by passing and returning 12 bills. Mr. Radhakrishnan informed that the House functioned for only 37 hours and 49 minutes.
2: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 start questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up.
1: Earlier, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 was passed by the Parliament, with the Rajya Sabha approving it yesterday. Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy moved the bill to further amend the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has accused the opposition of running away from discussions in Parliament when the government was ready for it. He said the conduct of opposition MPs is not good for democracy, especially for parliamentary democracy. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Rijiju said that Parliament is meant for debate, discussion and legislative business, but continuous sloganeering and protests had affected the functioning of the House in the monsoon session. Mr. Rijiju said that 12 bills were passed during the monsoon session, but only one of them was discussed in both houses. He stated that during this session, productivity stood at 19% in the Lok Sabha and 39% in the Rajya Sabha. Country's exports, including merchandise and services, registered a robust growth of 13.3% in July this year by reaching to $80.14 billion. The country's exports were $70.72 billion in the same month last year. According to the provisional data released by the Commerce Ministry, the export performance was led by merchandise shipments, which jumped over 19%.

0: 6% to over $44 billion last month from $36.98 billion in the same month last year. President Draupadi Murmu will address the nation on the eve of the 80th Independence Day today. The president's address will be broadcast at 7 p.m. on the entire national network of Akashwani. It will also be telecast on all channels of Doordarshan in Hindi, followed by the English version. The telecast of the address in Hindi and English on Doordarshan will be followed by its broadcast in regional languages on the regional channels of Doordarshan. Akashwani will broadcast the regional language versions of the address at 9:30 p.m. on its respective regional networks. Home Minister Amit Shah yesterday said that Tiranga stands for the sacred pride of every citizen and it reflects the might of country's unity. In a social media post, Mr. Shah urged the citizens to hoist the tricolour at their residence and unite with millions of others in the Har Ghar Tiranga movement. He also appealed everyone to upload their selfies along with tricolour at harghartiranga.com. In Jammu and Kashmir, a Tiranga rally was organised from District Sports Stadium to District Police Lines, Kathua. In Maharashtra, nearly 1,500 cadets from schools and colleges across Mumbai marched across the city's fort area. India emerged as the overall champions at the Commonwealth Fencing Championship by winning an impressive 35 medals after 4 days of competition held at Lagos in Nigeria. Indian contingent secured 13 gold, 8 silver and 14 bronze medals at the event across the under-23 and senior competitions. The performance also helped India win the Wilkinson Sword Trophy, awarded by the Commonwealth Fencing Federation to the country with the best overall results. The India Meteorological Department has issued a red warning predicting very heavy to extremely heavy rainfall over Chhattisgarh till today. Heavy to very heavy rainfall is also expected over Gangetic West Bengal, Himachal Pradesh, Jharkhand, Odisha and Uttarakhand for the next 3 to 4 days. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 1:10 और 10 सेकंड। ये समय होता है बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का। जी हाँ, बहुत ही प्यारा, लाजवाब, अनमोल कार्यक्रम होता है गीत सुनहरे। जी हाँ, गोल्डन एरा फिल्म संगीत, वाकई बहुत ही प्यारा गीत होता है इस कार्यक्रम में। एक से एक बेहतरीन रचनाएं होती हैं जो एक से एक दिग्गज गीतकार, संगीतकार, अदाकार, गायक, न जाने कितने जो लोग होते हैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, न जाने क्या सोच थी उन लोगों की, इतनी सुंदर बेहतरीन रचनाओं के साथ हमेशा आते थे। जी हाँ दोस्तों, और एक एक गीत भी लगभग 1 महीना 2 महीने 3 महीने 4 4 6 6 महीने लग जाते थे। तब जाकर न जाने कितनी बार संगीत को बदला जाता था, कितनी बार बोलों को दोबारा से बनाया जाता था। और फिर गायकी का जो प्रेशर था बिल्कुल अलग था, उसकी जो धुनें थी वाकई बहुत ही अनमोल हुआ करती थी। जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो जाएं तब तक उनको आनंद ही नहीं आता था। न जाने कितनी बार उनको बदलाव करना पड़ा। ये मेहनत है गोल्डन एरा की। जी हाँ, गीत सुनहरे, गोल्डन एरा फिल्म म्यूजिक, वाकई बहुत ही शानदार रचनाएं होती हैं। तो इसी कड़ी में आज कार्यक्रम गीत सुनहरे में आज मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। नाम तो सुना होगा, है ना? तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का सुंदर और बहुत ही खूबसूरत गीत।

सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए और दिन

जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत रचनाएं सुन रहे थे, कुछ अलग अंदाज में शानदार बेहतरीन रचना। साथियों, ये गीत वाकई बहुत ही प्यारा था, लाजवाब था, अनमोल था। जी हाँ, खबर किसी को नहीं वो किधर को देखते हैं। इससे पहले जो गीत चला था आशा भोसले की आवाज में, बेहतरीन रचना, और ये रचना वाकई अपने आप में बहुत ही मखमली खूबसूरत लाजवाब रचना थी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भाई बहन का खूबसूरत गीत। जी हाँ, फिल्म जो 1950 प्रदर्शित फिल्म रही, आशा भोसले और कोरस की आवाज में शानदार रचना। गीत सिप्पी फिल्म्स द्वारा और संगीत एन दत्ता का था। फिलहाल हम सुनवाते हैं एक और खूबसूरत गीत, और ये गीत आ रहा है बहुत ही प्यारा, गम की अंधेरी रात में। आइए सुनते हैं ये शानदार रचना।

0: झूठ का भरम खुला, झूठ का भरम खुला, सत्य का दिया जला, ज्योत ज्ञान की जगी बुरा भी बन गया भला,
1: ज्योत ज्ञान की जगी बुरा भी बन गया भला।
0: दोनों दोस्त मिल गए, दिल के फूल खिल गए,
1: दोनों दोस्त मिल गए, दिल के फूल खिल गए,
0: प्यार के जो तार बंद थे।

0: जी हाँ श्रोताओं, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। गीत सुनहरे के अंतर्गत शानदार रचनाएं। साथियों, गीत सुनहरे कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। समय 2 बजने को है और अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न हो गया है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चन्ने में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेयसोलोव नियांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में कल लाइबेरिया के नए दूतावास का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेरा ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नई दिल्ली में लाइबेरिया का स्थायी मिशन शुरू होना भारत लाइबेरिया संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वीं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब

0: partition. He said that the government is committed to continuously strengthening the nation's unity, integrity and social harmony while keeping the history in remembrance. Country's exports, including merchandise and services, registered a robust growth of 13.3% in July this year by reaching $80.14 billion. The country's exports were $70.72 billion in the same month last year. According to the provisional data released by the Commerce Ministry, the export performance was led by merchandise shipments, which jumped over 19.6% to over $44 billion last month from $36.98 billion in the same month last year. India emerged as the overall champions of the Commonwealth Fencing Championship by winning an impressive 35 medals after 4 days of competition held at Lagos in Nigeria. Indian contingent secured 13 gold, 8 silver and 14 bronze medals at the event across the under 23 and senior competitions. The performance also helped India win the Wilkinson Sword Trophy awarded by the Commonwealth Fencing Federation to the country with the best overall results. The India Meteorological Department has issued a red warning predicting very heavy to extremely heavy rainfall over Chhattisgarh till today. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 2:10 ये कार्यक्रम होता है, ये समय होता है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाजवाब। जय दोस्तों, कार्यक्रम गीत बहार फिल्म म्यूजिक ऑफ नॉन स्टॉप। जी हाँ, बिना रुके बिना किसी हडल के खूबसूरत कार्यक्रम होता है। तो आज गीत बहार में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। तो आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शानदार खूबसूरत गीत के साथ। साथियों, सर्व विदित है कि आज यानी कि कल यानी कि 14 तारीख आज है और 14 में ये समझ लीजिए कि पूर्व संध्या और स्वतंत्रता दिवस दो दिन ही मनाया जाता है और बहुत ही खूबसूरत होता है, देश की शान होती है स्वतंत्रता दिवस। या दोस्तों, वाकई बहुत अच्छा लगता है जब देश की बात आती है तो चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या चाहे वो सिख हो या ईसाई हो, किसी भी धर्म पंथ से हो, लेकिन जब एकजुटता की बात आती है तो सभी हिंदुस्तानी एकजुट होकर देश की रक्षा में तत्पर तैयार रहते हैं। और राष्ट्रीय पर्व है हमारा। जी हां, राष्ट्रीय पर्व सेलिब्रेट करते हैं हम, अपने देश को सम्मान दे रहे हैं झंडा फहराकर, पतंगे उड़ाकर और न जाने कितनी मिठाइयां खाकर देश को, जी हां, देश की आन बान शान बना रहे हैं। आन बान शान तो हमेशा हमेशा के लिए बनी हुई है, लेकिन जब त्योहार एक राष्ट्रीय पर्व है हमारा तो वाकई बहुत अच्छा लगता है ना, दिल खुश हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है हम सबका। तो आइए सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारे खूबसूरत गीत के साथ। जी हाँ दोस्तों, सरहद पर कुर्बान होने वाले जो साथी हैं, फौजी भाई हैं, सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं ऐसे जांबाज को, है ना। आइए सुनते हैं ये शानदार खूबसूरत रचना आज के कार्यक्रम गीत बहार की पहली बहुत ही खूबसूरत रचना के साथ। नमस्कार।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर और बेहतरीन खूबसूरत, जज्बातों से भरा शानदार खूबसूरत गीत, वाकई कमाल। आज सच में यदि हमारे सैनिक नहीं होते तो हम कहाँ होते। सैनिकों एक बार

से सैल्यूट करने का मन कर रहा है और सैल्यूट करना भी चाहिए। देश की रक्षा के लिए तन बन तन मन धन सब कुछ नछावर कर देते हैं हमारे जाबाज, है ना साथियों। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत। ये गीत वाकई बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है।

0: श्याम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
1: क्या कहती हो श्यामू की माँ?
0: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
1: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से, इस देश से।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ साथियों, कुछ गीत हमने प्ले किए हैं और देश की शान आन बान शान के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्या कहें हम, और बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीतों का जो सिलसिला चल रहा है। एक बार फिर से नमस्कार श्रोताओं, आदाब सत श्री अकाल, दिल से प्रणाम। आप सुन रहे हैं AIR News 24/7 चैनल। तो साथियों, इतना सुंदर और बहुत ही खूबसूरत जो दुनिया है इस संसार में, वाकई बहुत ही खूबसूरत है, लाजवाब है और सबसे प्यारा। ये तो हर देश में सभी का देश प्यारा होता है, लेकिन सबसे प्यारा देश हमें हमारा ही लगता है ना? या दोस्तों, वाकई अच्छा लगता है हमें भी कि जब हमारा देश तरक्की कर रहा है, ऊंचाइयों को छू रहा है, तो वाकई बहुत अच्छा लगता है ना? तो साथियों, एक और गीत आ रहा है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार खूबसूरत गीत है, और ये गीत वाकई बहुत ही शानदार लगता है हमें भी। देशभक्ति के साथ सराबोर खूबसूरत गीत आ रहा है, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा और बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, वाकई बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत।

0: जब उस सुबह की वतन की मिट्टी की खुशबू में कुछ एक अलग ही रंग एहसास होता है। तिरंगे की शान में करोड़ों दिलों की आस है, जिन वीरों ने हंसकर देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, आज उनकी कुर्बानियों को नमन करने का दिन है। तो आइए स्वतंत्रता के इस पावन पर्व पर हम संकल्प लें कि देश की एकता, अखंडता और सम्मान को सदैव सर्वोपरि रखें। हमारा तिरंगा यूं ही आसमान की बुलंदियों पर लहराता रहे, यही हर भारतीय के दिल की सच्ची प्रार्थना है।
1: आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे।

जी हाँ दोस्तों, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, वाकई बहुत ही जोशीला खूबसूरत गीत। आजादी सिर्फ एक अधिकार नहीं, यह अनगिनत बलिदानों से मिली अमूल्य विरासत है। तो आइए इसे केवल उत्सव की तरह ना मनाएं, जी हाँ दोस्तों, बल्कि अपने कर्म, ईमानदारी और जिम्मेदारी से देश को मजबूत बनाएं। हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, हम अगर आगे बढ़ेंगे तो भारत आगे बढ़ेगा। आओ मिलकर ऐसा भारत बनाएं जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सके। जी हाँ दोस्तों, वाकई अच्छा लगता है ना। जी हाँ, तिरंगा हमारी शान है, भारत हमारी पहचान है, वीरों की कुर्बानी हमारा अभिमान है और देश की तरक्की हमारा अरमान है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आपको और आपके परिवार को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। तो साथियों, एक और गीत सुना रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत गीत है और सभी को सराबोर होना है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। जी हाँ, आजादी का जश्न मनाते हुए शानदार खूबसूरत रचना।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बस दिल बाग बाग हो रहा है और कार्यक्रम करते हुए वाकई बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम। जी हाँ दोस्तों, एक शायरी है बड़ी प्यारी सी, सुंदर है, और ये न मिटने देंगे तिरंगे की शाम को, न मिटने देंगे तिरंगे की शान को, न भूलेंगे वीरों के बलिदान को, दिल में भारत होठों पर हिंदुस्तान रहे, हर जन में यही प्यारा वतन महान रहे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। वंदे मातरम, जय हिंद। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत, उससे पहले कुछ जज्बात। जी हां, आइए आज उस आजादी को सलाम करें जिसके लिए न जाने कितने वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन माताओं को जन्म नमन करें, उन माताओं को नमन करें जिन्होंने अपने लाल देश पर कुर्बान किए हों। उन क्रांतिकारियों को नमन करें जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता का सपना देखा, और उन सभी ज्ञात अज्ञात वीरों को श्रद्धांजलि दें जिनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत की हवा में सांस ले रहे हैं। आज तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं, यह हमारी आन बान शान और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। तो आइए प्रण लें और एकजुट देश को स्वच्छ, सशक्त, शिक्षित, समृद्ध, एकजुट बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत, भारत माता की जय, जय हिंद। तो सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम की गीत बहार कार्यक्रम की अंतिम बेहतरीन रचना।

0: जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही खूबसूरत गीतों का समावेश बनता हुआ शानदार खूबसूरत कार्यक्रम अब यानी कि गीत बहार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। साथियों 3 बजने को हैं, कुछ ही पलों में पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद का मानसून सत्र संपन्न हो गया है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सत्रों के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में लाइबेरिया के विदेश मंत्री सारा बियासोलोव न्यांते के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। यह दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा ए कायदा ए हिंद को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेंग होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाउशिन ने नई दिल्ली में यह जानकारी दी। राजस्व खुफिया निदेशालय ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर इलाके में एक अवैध ड्रग निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार निदेशालय की कार्रवाई में 30 किलोग्राम अवैध ड्रग बरामद की गई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष

आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 3:10 और ये समय होता है बहुत ही खूबसूरत यानी कि गीत और गजल का। जी हाँ, आप चाहें तो गीत सुन सकते हैं और आप चाहें तो गजल का आनंद भी उठा सकते हैं। या दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। तो आज शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही शानदार खूबसूरत गजल के साथ। ये गजल है बहुत ही प्यारी, लाजवाब, अनमोल रचना। मेरी तस्वीर में रंग और किसी का तो नहीं, मेरी तस्वीर में रंग और किसी का तो नहीं, ये जज्बात है, खूबसूरत अंदाज है। सजदा, एन ऑफरिंग ऑफ गजल्स, लता मंगेशकर की बेहतरीन खूबसूरत आवाज में शानदार गजल है। ये गजल 2005 की है। गीत, मेरी तस्वीर में रंग और किसी का तो नहीं। जी हां, गीतकार हैं मुजफ्फर वारसी और संगीत जगजीत सिंह साहब का। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत गजल के अंतर्गत एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत रचना, गजल।

बहुत ही शानदार खूबसूरत गजल अभी आप सुन रहे थे, ना खुद की खबर है ना खुद का पता है। वाकई बहुत ही शानदार बेहतरीन गजल अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन गजल की ओर। यह गजल है लता मंगेशकर की आवाज में, शानदार रचना, आंख से दूर ना हो। बहुत ही प्यारी बेहतरीन रचना है, सुनते हैं यह प्यारी सी गजल।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24/7। तो साथियों, एक और खूबसूरत गजल आ रही है, तो हो जाइए तैयार इस शानदार बेहतरीन गजल के साथ।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं गजल गजलों का कार्यक्रम। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत गजल, जो रचना है मिर्जा गालिब साहब की और संगीत दिया है और आवाज दी है निहारिका सिन्हा ने।

0: और इसी के साथ ये गजल गीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना। स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: पंडित आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी दिल्ली का ईआर लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। समय हुआ है 4:20 और 14 सेकेंड। कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं टीके रंगाचारी का गायन। राग है शंकरा भरणम।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीएनएम 810 किलो हर्ट्स पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 अगस्त 2026। सुबह के 4:54 और 7 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, आइए अब हम आपको आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में बता दें। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर कार्यक्रम होगा आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय रहेगा शोल्डर मूवमेंट यानी कि कंधे का मूवमेंट और ताड़ासन। प्रस्तुतकर्ता होंगी योग विशेषज्ञ डॉ हिमानी श्योखन। सुबह 5:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा स्वर रंजनी, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे योगेश शंकर का शहनाई पर बजाया गया राग नट भैरव।

सुबह 7:10 पर कार्यक्रम होगा संगीतिका, जिसमें आप सुनेंगे अमृता जोशी के भजन। 7:30 पर गीतों भरी गुड मॉर्निंग, फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम होगा फिल्मी गीतों का।

8:45 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत आप सुनेंगे लोकेश आनंद और पार्टी से शहनाई वादन, राग होगा बैरागी। 9:15 पर कार्यक्रम गांधी चर्चा के अंतर्गत वार्ता का विषय रहेगा सामाजिक कुरीतियों और उनके उन्मूलन पर गांधी जी के विचार। वार्ताकार होंगी शुभांगी पवार।

पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का समय रहेगा 9:30 और सुबह 10:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप थी पसंद। समास कार्यक्रम का समय रहेगा 11:10 और सुमंजरी का समय रहेगा 11:30। अभी आप कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5 बजने को है। कुछ ही पलों में अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।

शुक्ल जी वाहेगुरु, एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथमा भगवती सिमर का गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुरते अमरदास। राम दस हुई सहाय अर्जन हर गोविंद ना, सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइया जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधि आवे ताए, सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहिया दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया, चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया, जना नाम जपिया वंड छकिया। देग चलाई तेग वाही, देख के अंडठ कीता। तना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी।

केश दान रहत दान विवेक दान विसह दान परोसा दान दान सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा रखाप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ श्री नानकाना साहिब अते होर गुरुद्वारिया गुरु धामा दे जिना तो पंथ नो विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नु बख्शा हे निमानिया दे मान नेताणिया दे तान ने ओटियां दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास पुल चौक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिना जिना गुरमुखा प्रेमिया वालों करह प्रसाद भेटा कीता गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नो अपने दरों घरों सिखी सदक परोसा नाम दान बख्श

गुर बिना मर जाए, जो परती सोबर जान बार से, जो परती सोबर जान बार से, जो सिख गुर मिले।

ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ।